क्योंकि उद्गीत प्राणायाम को आयुष्मान इसलिए बताया क्योंकि आयुष्मान का अर्थ हमने बताया दीर्घ व लंबी आयु, और उद्गीत प्राणायाम श्वास से निर्मित प्राणायाम है, तो यानी श्वास से चलेंगी तो ही लंबा और दीर्घ आयु यानी स्वास्थ्य और कल्याणकारी होगा। तो साथ ही साथ हमने आज उद्गीत प्राणायाम के फायदे सावधानियां भी बताई। इसी तरीके से दोस्तों, हम सभी नित सवेरे आकर के योग की पाठशाला में हर एक दिन एक नए शब्द के साथ प्राणायाम कर रहे हैं, तो इसी उम्मीद इसी श्रृंखला में कल हम फिर से मिलेंगे एक नए शब्द और एक नए प्राणायाम के साथ में। लेकिन अभी प्राणायाम के बाद में हम 10 से 15 मिनट योग मेडिटेशन यानी कि ध्यान योग साथ में करेंगे, और इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे एक नए शब्द एक नए आसन प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योगशाला सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी आप लोगों के लिए अब हम लोग बनाते हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी योग को करने के लिए किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उसके बाद में हम लोगों ने ऑडियो बनाए जिसमें हम लोग सवेरे रोज सवेरे आपके लिए कुछ न कुछ नया भी लेकर के आते हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, उज्जयी, ऐसे कई प्राणायामों के बारे में हम लोगों ने कई बार आप लोगों को करते हुए और बताते हुए एक वीडियोस भी बनाए हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान भी दिया है। इसी उम्मीद के साथ में एक बार फिर से आज हम आपके साथ लेकर के आ रहे हैं अनुलोम विलोम के कई फायदे। अनुलोम विलोम करने के लिए आपको अभी थोड़े ही दिन पहले फिटसी का एक वीडियो आया था, जिसमें अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, क्या प्रक्रिया है, कैसे लाभ है, सब कुछ बताया गया था। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भी बहुत सारे मुख्य लाभ हैं, जिसमें सबसे पहला लाभ शारीरिक लाभ, आइए तो हम उसे बताते हैं। श्वसन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और श्वास लेने में आसानी होती है। शारीरिक लाभ हमें बहुत सारे वैसे अनुलोम विलोम के अंतर्गत बताए गए हैं, लेकिन यदि हम उसे पूर्ण रूप से इसका लाभ जाने तो ही हम कोई भी प्राणायाम ठीक से और आराम से कर सकते हैं। रक्त को शुद्ध करने के साथ साथ शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सही बनाए रखता है। हृदय को स्वस्थ रखने के साथ साथ रक्त संचार बेहतर करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित भी करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करता है, और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजें हैं जो कि हमें उसमें आरामदायक भी होता है। पाचन तंत्र को सुधारने के साथ साथ कब्ज, अपच जैसी समस्याएं भी कम करता है। तो ये तो हो गया शारीरिक लाभ, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं अब मानसिक लाभ। तनाव और चिंता को कम करता है, मन को शांत और स्थिरता बनाने रखने के लिए यह आसन प्राणायाम बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई और काम में ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन जिसे ज्यादा होता है उसे यह आसन कम करता है। मन में संतुलन और सकारात्मकता लाता है अनुलोम विलोम। मानसिक स्थितियों को ठीक करने के लिए यह प्राणायाम अपने आप में एक संपूर्ण आहार है, जिसे हम सभी को नित प्रतिदिन जरूर से करना चाहिए। आध्यात्मिक लाभ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आध्यात्मिक लाभ में हमें अनुलोम विलोम कैसे पूरा हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, आध्यात्मिक लाभ में नाड़ी शुद्धि, शरीर की ऊर्जा, नाड़ियां जैसे इंडा, पिघला और सुषुम्ना को संयुक्त करता है, ध्यान में मदद करता है। साधना और ध्यान के लिए मन का स्थिर रहना अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए आध्यात्मिक लाभ के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राण शक्ति संतुलित करता है, शरीर और मन में ऊर्जा का सही प्रभाव बनाए रखता है। इस आसन इस प्राणायाम को सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट शांत वातावरण में

नियमित रूप से करने से इसका लाभ और अधिक मिलता है। आइए अब हम बताने जा रहे हैं इसके फायदे। इसके फायदे जो अभी हमने आपको बताए, जैसे कि तीन फायदे बताए कि आपको शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक, ठीक वैसे ही अत्यधिक लाभ भी होते हैं। अतिरिक्त लाभ जैसे स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ ऐसे लाभ हैं जिसको हम आज आपको बताने जा रहे हैं। अनुलोम विलोम के फायदे वैसे तो बहुत सारे हैं। स्वास्थ्य से जुड़े हुए अभ्यास करने के साथ साथ पूरे शरीर और मन के लिए यह एक संजीवनी बूटी है। स्वास्थ्य से जुड़े लाभों में सबसे पहले आता है अस्थमा, एलर्जी और सर्दी जुकाम में राहत देता है। थायराइड और डायबिटीज जैसी बीमारियों में सहायक माना जाता है। हड्डियों और जोड़ों में ताकत लाता है। मोटापा नियंत्रित करने में यह सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म संतुलित करने में यह आसन, प्राणायाम जो भी अच्छे से करते हैं उन्हें इन सारी चीजों की दिक्कतें नहीं होती हैं। अच्छी नींद के लिए भी यह बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। अनिद्रा की समस्या को यह दूर करता है। मानसिक व तंत्रिका तंत्र के लिए यह लाभ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्मरण शक्ति और दिमागी क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ हमें डिप्रेशन और मानसिक दबाव भी कम करता है। तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है, जिससे सिरदर्द, माइग्रेन जैसी दिक्कतें कम होती हैं, और साथ ही साथ हमारे पूरे शरीर को मानसिक और तंत्रिका तंत्र के सारे लाभों को एक साथ एकत्रित कर देता है। सौंदर्य के हिसाब से सौंदर्य और दिनचर्या के लाभ, चेहरे पर चमक लाता है और त्वचा स्वस्थ बनाता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और समय से पहले सफेद होने से भी बचाता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने में यह मददगार होता है। अभी जैसे हमने आपको बताया आध्यात्मिक और ऊर्जा संबंधी लाभ, शरीर की ऊर्जा यानी कि प्राण का प्रभाव संतुलित करता है, मन को सकारात्मक और स्थिरता प्रदान करता है, क्रोध, ईर्ष्या, तनाव जैसी नकारात्मक ऊर्जा को यह आसन दूर करता है। रोजाना 10 से 15 मिनट तक नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आप ये महसूस करने लगेंगे कि यह अपने आप में कितना ज्यादा लाभप्रद माना गया है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले आसन के लाभ की ओर। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय गर्मियाँ प्रचंड रूप में आ गई हैं। कहा जाता है इस गर्मियों में हम अगर अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो अपने आप को किस तरीके से हम महफूज कर पाएंगे। साथ ही साथ ये भी मानना जरूरी है कि अगर हम इन गर्मियों में अपनी और अपने सभी की सुरक्षा करना भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। पानी का त्वचा के लिए कई तरह से उपयोग किया जाता है। नियमित रूप से पानी पीना त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आपकी स्किन के बारे में। हमारी त्वचा एक पतली सी झिल्ली की तरह होती है, जो कि जैसे कहते हैं ना कि अगर एक फूल को हम यूं ही तोड़ करके रख देते हैं तो वो अमूमन 1 से 2 दिन सही सलामत रहता है, लेकिन उसके बाद वो मुरझाने लगता है। उसकी पत्तियाँ अलग अलग होने लगती हैं, पत्तियों में सिलवट सी आने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि अंकुरित बीज भी बिना पानी के यूं ही खराब हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारी स्किन की जो पतली झिल्ली होती है वो भी पानी से निर्मित बनी होती है। पानी हमारी स्किन के लिए इतना उपयोगी होता है जैसे एक मछली जल में रहती है और अगर उसे बाहर निकाल दिया जाए तो वह मर जाती है। पानी हमारे शरीर के लिए ही नहीं जबकि हमारी स्किन के लिए, हमारी कोशिकाओं के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक दिन पानी ना पिए और उसके बाद अगर हम पानी को उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी स्किन में एक कालापन सा आने लगा है, एक मुरझाहट सी आने लगी है। त्वचा में एक निखार जो हमारा एक दिन पहले बना होता है ठीक बिल्कुल वैसे ही जर से नीचे हो जाता है। उसका कारण आपको पता है? क्योंकि पानी हमारे लिए स्किन में हाइड्रेट का काम करता है। जैसे
पौधों में, पत्तियों में एक पानी की अगर हम छिनकार भी कर देते हैं तो फिर से वो जीवित हो उठते हैं। ठीक वैसे ही हमारी स्किन में पानी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। आपने कभी देखा है कि जब हम पानी से अपना मुंह धुलते हैं तो हमारा चेहरा पहले से खिल उठता है। ठीक वैसे ही एक अगर पौधे की हम जांच पर रख करें तो मैं आपको परीक्षण बताती हूँ। अगर आपने एक पौधा यानी कि एक फूल आप कहीं से लेकर के आए हैं और आपको चाहिए कि यह सुबह तक मुरझाए नहीं, आपने एक गिलास लिया जिसमें वो डंठल सहित उस गिलास में डाल के आपने रखा। बचपन में ये परीक्षण हम लोगों ने बहुत किया है, लेकिन आज इस परीक्षण को हम अपनी त्वचा से तुलना करके बताते हैं। और दूसरे गिलास में सिर्फ और सिर्फ आपने वो फूल रख दिया है। सुबह उठते ही आपने यह परीक्षण देखा कि जिसमें जो डंडी पानी में पूरी रात थी वह ऊपर ही ऊपर उसका फूल खिला हुआ मिलता है, लेकिन जिस गिलास में पानी नहीं था वह फूल बिल्कुल मुरझाया हुआ रहता है। ठीक वैसे ही हमारी स्किन में यदि पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में नहीं होता है तो हमारी स्किन की सभी कोशिकाएं मृत होती जाती हैं। फिर हम उसके बाद जितनी भी कॉस्मेटिक की क्रीम लगा लें, महंगे महंगे फेशियल या कई चीजों का उपयोग क्यों ना कर लें, पानी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। आप सोच रहे होंगे कि आज योगिनी सप्ताह ने ये टॉपिक क्यों उठाया है, तो मैं आपको बता दूं कि अमूमन सभी को इसकी जरूरत पड़ती है। हम कहीं ना कहीं छुट्टियों में बाहर घूमने जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन के लिए मैं कहीं बाहर गई और पानी की कमी को महसूस किया। शाम होते होते मेरी स्किन पे वो कमी दिखने लगी। पानी, क्योंकि हम इधर उधर दौड़ धूप में घूमने फिरने में पानी की मात्रा हमने कम कर दी। शाम तक देखे तो हमारा चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। फिर हमने पानी पीना शुरू किया और उसके बाद में दूसरे दिन सुबह हमारा जैसा चेहरा था वैसा ही हो गया। फिर मैंने ये परीक्षण किया कि आपने देखा कि एक दिन आधे दिन यदि आपने पानी नहीं पिया है तो आपका चेहरा किस तरीके से मुरझा सकता है। चेहरे की कई कोशिकाएं होती हैं, कई नस नाड़ियां होती हैं, जिसमें हमें पानी को पहुंचाना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक वैसे ही सर्दियों में हम पानी की मात्रा को कम कर देते हैं। बहुत सारे लोगों की मात्रा वही बनी रहती है, लेकिन काफी लोग सर्दियों में पानी कम पीते हैं। लेकिन अगर हम गर्मियों में पूर्ण रूप से मात्रा पानी की बना लें तो हमें वही गर्मियों में पानी की मात्रा हमारे चेहरे के लिए, हमारी स्किन के लिए पर्याप्त हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने कंगारू और ऊंट के बारे में जानते होंगे, वह अपने अंदर पानी का एक स्टोर कर लेता है ताकि कई घंटों तक पैदल चलने तक उसे प्यास भी नहीं लगती है और वह पानी उसे थोड़ी थोड़ी देर में पर्याप्त होता रहता है। कंगारू के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि वह अपना बच्चा पेट के नीचे झिल्ली में हमेशा से बचाए रखता है, बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी, लेकिन वह बच्चा उसके पेट के निचले हिस्से में बिल्कुल महफूज रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमारी जो ये एक महफूज जगह है उसे वहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। स्किन और पानी का भी कुछ ऐसा ही तालमेल है। यदि स्किन को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पानी की प्रचुर मात्रा को हम अपने आप में बरकरार रख सकते हैं। तो आइए स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, जिससे त्वचा की लोच और चमक बढ़ती है। इसके अलावा पानी चेहरे पर होने वाले धब्बे, झुर्रियां, फाइन लाइंस को कम करने में मदद करता है। पानी पीने के लिए त्वचा के जो लाभ हैं, आइए हम उस पे भी बता देते हैं। हाइड्रेशन, सभी को पता है कि स्किन को हाइड्रेट करने के लिए गर्मियों में बहुत सारे ऐसे फल आते हैं जो हम खाते हैं और जिससे हमारी स्किन भी हाइड्रेट रहती है। कारण जानते हैं क्यों? बताती हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपने खीरा खाया उसमें भी पानी की प्रचुर मात्रा होती है, खरबूजा खाया उसमें भी।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आयु आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास रिलायंस ज्वेलर्स स्टेशन रोड गोंडा
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

सुबह सुबह इसी जगह होती है आपकी और मेरी सुबह। यस ऑफ कोर्स सुबह हो चुकी है और सुबह की मॉर्निंग वाला शो यानी गुड मॉर्निंग गुना में आपकी मॉर्निंग चौकार जी अदनान मौजूद है। तो भैया आज का मौसम भी बड़ा सुहावना है और ऐसा लगा नहीं था कि आज ऐसे मौसम जो है वो पलटी मारेगा। कहते हैं कि भाई मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। खैर तुम जरूर बदलते रहना सीजन के साथ साथ, क्योंकि भाई सीजन में अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वैसे आपका ख्याल मुझे बहुत ज्यादा रहता है, पता है कैसे यार? मुझे जब तक आपकी तरफ से ये श्योरिटी नहीं मिल जाती कि आप अच्छे हैं भले हैं, तब तक वाकई चैन नहीं आता। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो थॉट ला रहा हूँ, जो बातें बताने वाला हूँ, जो बतियाने वाला हूँ, किससे बतियाऊंगा अगर आप बीमार रहें। सो इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल सुबह का वक्त है और चाय हाथ में है, ऑब्वियस सी बात होगी। तो चलिए भाई, चाय अगर आ गई हाथ में तो मेरी बकवास भी अब शुरू होने वाली। लेकिन उससे पहले कुछ ढंग का हम करते हैं, आपको बताया कि भाई थॉट ऑफ द डे ले करके आते हैं। सो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है ये तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। उस पार वापस से हाजिर हो रहे हैं थॉट ऑफ द डे लेकर।

तो क्यों ना आज मैं आपको एक जादू बता दूं जो आप खुद भी कर सकते हैं और आपकी लाइफ में वो जादू हो भी जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सुबह सुबह हम लगता है मजाक करने के मूड में आ गए। नहीं नहीं, मजाक तो करते हैं लेकिन फिलहाल इस बात का सच में कोई मजाक नहीं। आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो किसी मैजिक से कम नहीं है। चलिए बताते हैं, पहले इस थॉट को सुनिए, खुद जान जाने वाले हैं कि भाई इसमें मैजिक क्या और कहाँ है। सो आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि शुरुआत करने के लिए खुद के बेहतर होने का इंतजार मत करिए। क्या? शुरुआत करने के लिए खुद के बेहतर होने का इंतजार मत करिए, शुरुआत करिए ताकि आप बेहतर बन सके। यस, सो ऑफ कोर्स कभी भी इंतजार बेहतर बनने का नहीं होता है, बल्कि खुद उस काम की शुरुआत करके हम बेहतर बन सकते हैं। तो इसलिए हम कई बार या शायद अक्सर ही उल्टा ही करते हैं। हम वेट करते हैं कि शायद चीजें बेहतर होंगी तो हम बेहतर कर पाएंगे, लेकिन दरअसल शुरुआत ही नहीं करते हैं। और जब जिस वक्त जिस लम्हा हमको इस बात का एहसास होता है कि शुरुआत करना ही बेहतर बनाना है, उस लम्हे के बाद हमारी लाइफ एकदम झकास हो जाती है, एकदम बदल सी जाती है। सो फिलहाल यही कुछ हाल है आज के थॉट ऑफ द डे का। जी हाँ, सो आज का थॉट ऑफ द डे यही बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप हो या मैं हूं, कोई भी हो, शुरुआत करिए ताकि हम चीजों को बेहतर बना सके। एंड ऐसे कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमने लाइफ में ऑफ कोर्स फील किए हैं, महसूस किया है कि हाँ सच में ऐसा होता है कि जब हम शुरुआत कर देते हैं तो चीजें बेहतर होती चली जाती, वो डर निकल जाता है यार, वो जो काहली होती ना वो चली जाती है। तो आज का दिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आज आप इस थॉट ऑफ द डे को लेकर चल रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं तो यकीन मानिए एक दिन जब बेहतर महसूस होगा तो आपको वापस से यही दिन याद आएगा कि भाई आरजे अदनान ने अपने मॉर्निंग वाले थॉट में बताया था कि हाँ शुरुआत करना बेहतर होता है। तो चलिए क्यों ना आज से आप और मैं भी मिलकर शुरुआत कर दे। सो फिलहाल थॉट ऑफ द डे मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। अब फिलहाल चलेंगे और वापस से आते हैं कुछ ही देर में आपके पास, आपके लिए बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। सुनते रहिए 89.6 FM कोना शहर की धड़कन।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 981 976, 9260 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Arjun Khan.

वैसे तो बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं। अच्छा, एक सवाल तो आपके मन में भी आता है कि यार ये आखिर किस शख्स ने होमवर्क का आविष्कार कर दिया। बचपन से होमवर्क के नाम पे कितना टॉर्चर सहा है, कसम से मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। इतना होमवर्क कराया गया है यार, मतलब कोई भी गलती हो फौरन होमवर्क दे दिया जाए, और एक होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था दूसरा का तीसरा होमवर्क लगा दिया जाता था, और इस तरह होमवर्क के पहाड़ बना दिए जाते थे। तो वैसे आज आपको हम पहली बार लाइफ में बताने वाले हैं कि आखिर होमवर्क का आविष्कार किसने किया है। आप भी जाहिर है अब सोच रहे होंगे कि किसने किया। अभी इसका जवाब सिर्फ मेरे पास है, और ये जवाब अब आप तक भी पहुंचने वाला है। बट ये इंटरेस्टिंग सवाल है ना कि आखिर होमवर्क का आविष्कार किसने किया। भाई बल्ब का आपको पता है, आपको टेलीफोन का पता है, और ना जाने क्या क्या चीजों के बारे में आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं आज तक पता था कि भाई होमवर्क का आविष्कार आखिर किसने किया है। तो चलिए हम बता दें कि जिस इंसान ने होमवर्क का आविष्कार किया था, दरअसल वो थे रोबर्टो नेवेलिस। जी हाँ, और ये एक इटालियन टीचर थे, यानी एक शिक्षक थे, और इन्होंने स्टूडेंट्स को सजा देने के लिए, जैसे कि हमारे टीचर ने भी करते थे, उनको सजा देने के लिए 1905 में जो है होमवर्क का आविष्कार किया, यानी होमवर्क जैसी व्यवस्था लागू की। और उसके बाद से आज तक, और मुझे लगता है ये दुनिया जब तक जारी रहने वाली तब तक इस टॉर्चर से बच्चे जो है अफेक्टेड होते रहेंगे। वैसे आप भी हुए होंगे, आपको भी अपना वो होमवर्क याद आया ना जो काफ़ी यूनिक हुआ करता था, और होमवर्क नहीं करते करते होमवर्क का पहाड़ बन जाया करता था। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप रिलेट ज़रूर कर रहे होंगे। लेकिन नाम याद रखिए, वो आपका और मेरा सबका दुश्मन था। नाम क्या था? रोबर्टो नेवेलिस।

आपके संग, तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

भैया, अगर आपको भी हमेशा से ये रोना रहता था कि यार हमने तो बता दिया अपना सीक्रेट और सामने वाले ने उसका गलत फायदा उठा लिया, या आप हमेशा परेशान रहते हैं कि यार हम कितना लोगों का भला चाहते हैं, मेरे ही साथ क्यों बुरा होता है, आखिर मैं ही क्यों, तो इस क्यों का जवाब आज मिलने वाला है और हम कुछ आपको एडवाइस करने वाले हैं। बस ज्यादा नहीं, दो से चार बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है लाइफ में आपको इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पता है क्या क्या करना होता है? कुछ साइकोलॉजीज होती है, अगर हम उसका ख्याल रखें तो शायद हमारे लिए चीजें बेहतर हो। जैसे खुद के बारे में क्या नहीं बताना है, सबसे पहली तो बात ये होती है कि साइकोलॉजी के मुताबिक हर बात पर हर किसी से शेयर नहीं करना होता है। यानी अगर आप हर बात हर किसी से शेयर कर रहे हैं तो आप रॉन्ग हैं। जी हाँ, सो अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ बातें निजी रखना आपकी पर्सनैलिटी और रिश्तों के लिए बेहतर होता है, क्योंकि इससे पर्सनैलिटी भी स्पॉइल होती है और रिश्ते भी आपके खराब होते हैं अगर आप हर बात हर जगह बताने लग जाते हैं तो। अगली बात आती है अपनी कमजोरियों के बारे में, यानी कि हमारी वीकनेस। सो अपनी इनसिक्योरिटीज और ट्रिगर पॉइंट हर किसी को शेयर करने से बचना होता है। तो इससे क्यों होता है? क्योंकि भैया जब बुरा वक्त आता है तो इसीलिए इसका फायदा उठा लिया जाता है। तो ऐसी वो चीजें जो आप बता दें कि भाई इस चीज से डर लगता है या ये चीजें हमको परेशान करती है, वो भी किसी ऐसे शख्स से कि कल कदार जिससे अगर दुश्मनी होती है, खटपट होता है, तो उसका फायदा उठा लेगा, तो ये हो जाएगा बड़ा मसला। इसलिए इसको भी आप हर किसी से ना बताएं। इसके बाद आती है बात अपने ड्रीम्स की, यानी कि अपने लक्ष्यों की। सो हमारे ड्रीम्स क्या है ये तो हम ही बेहतर जानते हैं, लेकिन अपने बड़े गोल्स और हमारे फ्यूचर के प्लान हर किसी को बताने से हमको बचना भी चाहिए। जी हाँ, अगर भाई हमारा गोल पूरा करने पर मिलने वाली तारीफ का एहसास पहले ही मिलने से मोटिवेशन जो है वो प्रभावित हो जाता है, और अगर किसी ने उसको बोल दिया अरे यार ये तुम कहाँ पड़े हो, तो पता चला आपके डायरेक्शन भी चेंज हो जाती। इसलिए जब तक उस लक्ष्यों को आप प्राप्त ना कर ले, आप हर किसी से ना बताएं। शायद आपके एक या दो शख्स ऐसा हो जिससे आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल फ्यूचर प्लान ज्यादा लोगों से तो आप बिल्कुल भी ना बताएं। इसके अलावा पैसों की बातों को भी निजी रखना जरूरी होता है। जी हाँ, सो बैंक में बैलेंस कितना है या आपके ऊपर कर्ज कितना है, अचानक मिले पैसों की जानकारी भी दूसरों से शेयर नहीं करनी चाहिए कि भैया हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है और हम मुझे अब इतने पैसे मिल चुके हैं, क्योंकि आपकी फिनेंशियल कंडीशन को जो है वो निजी रखने से अनचाही जलन और गलतफहमियों से बचाया जा सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है फैमिली प्रॉब्लम्स बताना। जी हाँ, सो घर के झगड़े, परिवार की परेशानियां और जो हमारे अपने प्राइवेट दुख होते हैं वो हर किसी से शेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। सो अपनी निजी ज़िंदगी की कुछ बातें अपने तक रखना ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा शिकायतें और अच्छे काम भी। जी हाँ, सो लगातार दूसरों की शिकायत करने से लोग आपके बारे में गलत धारणा बना सकते हैं और दूरी भी बनाने लगते हैं। अगर दान या मदद जैसे अच्छे काम का बार बार बखान करने से बचना चाहिए, अगर आप करते हैं तो करिए, लेकिन उसका बखान ना करिए। सो मुझे लगता है ये अगर इन बातों को आपने ध्यान में रख लिया तो कसम से आप कहेंगे कि बाबा आरजे अदनान की जो बातें हैं ना वो बहुत काम की थी। थैंक यू।

इस वक्त पूरे भारत में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। और अगर हम बात करें मुंबई की, तो ऑफ कोर्स मुंबई का तो बहुत फेमस होता है गणेश उत्सव। वैसे एक शहर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जहां पर आपको उत्सव के बाद भी सफाई मिलने वाली है। अक्सर हमसे ये गलतियां हो जाती, चाहे जो भी त्यौहार हो, कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही के चलते हम अपने ही शहर को काफ़ी ज़्यादा गंदा कर देते हैं, बस इसलिए कि हम त्यौहार तो मनाते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमारे हाथ में कुछ भी ऐसा वेस्ट है जो सही नहीं है, जिसको फेंकना है, उसको कहीं भी फेंक के चल देते हैं। और ये गलती किसी और की नहीं बल्कि हमारी खुद की होती है। लेकिन एक ऐसे शहर के बारे में आपको हम बताने वाले हैं जहां पर गणेश उत्सव के बाद कूड़े का ढेर बिल्कुल भी नहीं लगता, प्लास्टिक या पेपर भी नहीं, बल्कि 25,000 से ज्यादा लोग प्रसाद के लिए सिर्फ 400 स्टील के ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। है ना सोचने वाली बात। तो चलिए बताते हैं असल में बात क्या है। दरअसल गणेश उत्सव में हजारों लोग जुटे, प्रसाद बटे, शरबत पनका और छाछ परोसी जाए, तो आम तौर पर इसके साथ ढेर सारे डिस्पोजेबल कप्स और प्लेट्स भी कचरे में चले जाते हैं। लेकिन कर्नाटक की बात करें और वहां के मूड बिदड़ी की, तो गणेश उत्सव के बाद भी साफ सफाई नजर आती है, सड़क किनारे कूड़े के ढेर नहीं लगते। पर सवाल उठता है ये कैसे। सो यहाँ गणेश उत्सव में 25,000 से ज्यादा लोगों को 400 रीयूजेबल स्टील टम्बलर्स में छाछ, काशाया और पनका परोसा जाता है और पनका परोसा भी गया। सो खाने के लिए भी कई जगहों पर डिस्पोजेबल प्लेट्स की जगह स्टील प्लेट्स की इस्तेमाल किया गया। और 2025 में ऑन कैटी गणेश उत्सव के दौरान 800 स्टील प्लेट्स और 300 स्टील टम्बलर्स के जरिए करीब 4,250 लोगों को प्रसाद और करीब 1,100 लोगों को नाश्ता भी कराया गया। सो बिना सिंगल यूज प्लास्टिक या फिर पेपर प्लेट्स और कप्स के। जी हाँ, और यहाँ कोई एक साल से ये कोशिश नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से पब्लिक इवेंट्स को जीरो वेस्ट बनाने की दिशा में जो है वो मूड बिदरी टाउन म्युनिसिपैलिटी जो है वो काम कर रही है। और साथ ही उत्सव और इवेंट्स के दौरान वेट और ड्राई वेस्ट के लिए अलग अलग व्यवस्था भी की जाती है। सो इस पहल के पीछे एक खूबसूरत सोच है। त्यौहार मनाने के लिए परंपरा छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन चीजों को छोड़ना होगा जो उत्सव खत्म होते ही कचरा बन जाती है। सो मूड बिदरी के लोग यही दिखा रहे हैं कि जब प्रशासन, आयोजक, वॉलेंटियर्स और आम लोग साथ आएं तो बड़ा उत्सव भी धरती के लिए थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि सस्टेनेबल सेलिब्रेशन का मतलब खुशियां कम करना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि कचरे को कम करना होता है। सो इस बार क्या आप भी इसके लिए तैयार हैं?

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

तो भैया आप वापस से आ गए हैं ब्रेक के बाद और आपको बताने वाले हैं यूपीआई से जुड़े एक नए नियम के बारे में। जी हाँ, फिलहाल 2000 रुपए तक यूपीआई पर जीरो फीस और उससे ऊपर के ट्रांसफर का नियम जो है वो बदल गया है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले हमने कहा था कि ये जो नियम है अभी बनने वाला है, सो फाइनली अब ये नियम बन चुका है। क्या है इसके पूरे में, आइए आपको पूरी अपडेट देते हैं। सो अभी क्या है कि 2000 तक की यूपीआई पेमेंट पर अब बैंक या पेमेंट कंपनी किसी भी तरह का शुल्क नहीं वसूल सकेगी। जी हाँ, यानी रोज़मर्रा के छोटे डिजिटल भुगतान पहले की तरह ही बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के किए जा सकेंगे। सो रुपे डेबिट कार्ड से 2000 रुपए तक का भुगतान भी पूरी तरह से शुल्क मुक्त रहेगा। सरकार ने इसे जो है ऑफिशियल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम के रूप में अधिसूचित भी किया है। सो बैंक और पेमेंट ऑपरेटर ग्राहक से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कोई चार्ज नहीं ले सकेंगे। ये नियम भुगतान करने वाले और भुगतान प्राप्त करने वाले दोनों पर लागू होगा। सो यूपीआई पर चार्ज लगने की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने जो है ये सिचुएशन साफ कर दी है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के बदलाव के बाद उठ रही आशंकाओं को दूर करने के लिए ये क्लियरेंस जारी किया गया है। सो आम लोगों के P2P UPI पेमेंट जो है वो मुफ्त रहेंगे, जबकि मर्चेंट्स पर भी कोई व्यापक MDR लागू नहीं होगा। और फ्यूचर में MDR लगाया गया तो ये कुछ खास कैटेगरीज और तय सीमा से ज़्यादा रकम वाले ट्रांजैक्शंस तक सीमित रहने की बात भी फिलहाल कही गई है। जी हाँ, सो आई होप कि आपको ये जानकारी आज फाइनली मिल गई है UPI के बारे में। तो अब आप भी भैया 2000 रुपए तक तो दिल खोल करके शॉपिंग करते रहिए।

0: टिकट टिकट टिकट ए भैया टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ
1: टिकट
0: ये तो पुराना टिकट है।
1: अरे तो रेलगाड़ी कौन सी शोरूम से निकलवा के लाए हो?
2: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

सो अक्सर हम अपने इस मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में रियल हीरोज के बारे में बताते हैं, और आज के रियल हीरो के बारे में जानकर के सच में आप हैरान होने वाले हैं। देखिए, हमेशा हम किसी ऐसे शख्स की बात बताते हैं जो सच में अपनी लाइफ में या इस समाज के लिए कुछ बहुत बेहतर करते हैं। सो आपको बता दें, पानी में डूबा जब पूरा गांव, तो साहिब ने नाव को ही बना दिया क्लासरूम।

0: कोचिंग चलाने वाले जो टीचर है मोहम्मद साहिब ने हार मानने के बजाय एक नाव को ही अस्थाई क्लासरूम यानी पाठशाला बना दिया, ताकि बच्चे का भविष्य जो है वो और उसकी स्किल्स का डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल भी ना रुके। सो ये नाव की कक्षा कम पानी वाले शांत एरिया में चलाई जा रही है, जहां पेरेंट्स की पूरी सहमति है। शिक्षक खुद बच्चों को सुरक्षित नाव से लाते ले जाते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में किसी भी तरह का डर या जोखिम नहीं रहता है। इसे सुनने के बाद मुझे भी ख्याल आ रहा है कि काश को मेरा भी कोई ऐसा ट्यूशन होता जो नाव पे हमारे टीचर पढ़ाते, लेकिन फिर याद आता है कि यार शहर भी तो डूब जाता। खैर ठीक ही था, लेकिन फिलहाल जो मोहम्मद साहिब कर रहे हैं वो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, और ये है हमारे आज के रियल हीरो। क्या ख्याल है आपका इनके बारे में?
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

तो भैया आपको हम आपके लिए सतर्क नहीं करें तो क्या करें। इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन इतनी बड़ी बन जाती है कि आप भी सोचकर हैरान होने वाले हैं मेरी तरह। अब आपको कुछ अपने ऐसी बात बताने वाले हैं जो किचन में हो रही चीज़ें भी हमारे कैंसर की वजह बन रही है। जी हाँ, हमारे ऑफकोर्स किचन में ही मौजूद है लेकिन कैंसर कॉज बन रही है। सो पहली बात तो है प्लास्टिक की पानी की बॉटल। जी हाँ, इसके इस्तेमाल को ना कहना होगा क्योंकि प्लास्टिक से जो है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक केमिकल्स पानी में मिल सकते हैं और गर्म पानी रखने से ये केमिकल और तेज़ी से रिलीज होते हैं। फिलहाल ऑप्शन फिर क्या है, अगर मान लीजिए हम प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल ना करें तो फिर क्या करें? कांच की या स्टील्स की बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये 100% सुरक्षित और केमिकल फ्री होती है, पानी को रखती है शुद्ध और ताज़ा और पर्यावरण के लिए भी बेहतर होती है। दूसरा है रिफाइंड ऑयल, जो कि कैंसर के लिए एक वजह बन सकता है। जी हाँ, सो रिफाइंड तेल में केमिकल्स और ट्रांसफैट होता है, यह हार्ट डिजीज, मोटापा और कई बीमारियों की वजह बन सकता है। ज्यादा गर्म करने पर इसमें हानिकारक टॉक्सिन्स भी बनते हैं। तो फिर इसकी जगह क्या करें? भाई इसकी जगह आप मक्खन और घी का इस्तेमाल करें। जी हाँ, सो भाई प्राकृतिक और शुद्ध वसा से भरपूर होती है, दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है और बॉडी को एनर्जी देती है, पचने में आसान और बॉडी के लिए बहुत ही पोषक होती है। यानी मक्खन और घी का इस्तेमाल हमारे लिए बेहतर होगा। इसके अलावा अब देखते हैं फैशन है टेफ्लॉन पैन का, जो काले काले पैन होते हैं, सो ये नुकसानदायक होते हैं। जी हाँ, अगर खरोच पड़ा नॉनस्टिक पैन आप यूज कर रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए ये खतरनाक है। सो खरोच से कोटिंग निकल करके खाने में मिल सकती है, इससे हानिकारक केमिकल्स यानी PTFE और PFOA बॉडी में जा सकते हैं। लंबे वक्त तक इस्तेमाल करने से बड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। यानी खरोच दिखे तो नॉनस्टिक पैन तुरंत आपको बदलना होगा। फिर इस्तेमाल क्या करना है? स्टेनलेस स्टील पैन, जी हाँ, जो कि सेहतमंद एक अच्छा ऑप्शन है और लंबे वक्त तक सेफ भी रहता है। सो 100% सुरक्षित है और केमिकल फ्री है, मजबूत और टिकाऊ है और लंबे वक्त तक चलता भी है, खाने को शुद्ध और पौष्टिक भी रखता है, साफ करना इसको होता है आसान और दाग भी ये नहीं पकड़ता है। इसके अलावा एक कॉमन चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हमको बड़ा फैशन से करते हैं, हमको लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो है एल्यूमिनियम फॉयल। जी हाँ, एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल नहीं करना होता है। एल्यूमिनियम बॉडी में जम करके टॉक्सिन्स बढ़ा सकता है, ज़्यादा मात्रा में लेने से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का खतरा भी बढ़ सकता है। गर्म खाने को सीधे फॉयल में रखने या पकाने से हानिकारक रसायन भोजन में भी मिल सकते हैं। सो छोटी आदतें जो है वो सेहत को फायदा भी पहुंचा सकती हैं और बड़ा नुकसान। और अगर मान लीजिए कि एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर क्या ऑप्शन है? अगला ऑप्शन हमारे पास आता है फूड पेपर का। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सुरक्षित और केमिकल फ्री होते हैं, गर्म खाने को रखने और पैक करने के लिए सेफ होते हैं, पर्यावरण के लिए भी बेहतर होते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। फायदा होता है कि भाई ये हमारे स्वस्थ और सुरक्षित एक विकल्प होता है, खाने का टेस्ट और उसकी क्वालिटी भी ऐसी ही बनी रहती है, लंबे वक्त तक खाना इसमें ताज़ा रहता है और इको फ्रेंडली और टिकाऊ विकल्प के रूप में भी ये जाना जाता है। सो मुझे लगता है कि अगर इन खास कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला। वैसे ये सारी बातें आपको आज कैसी लगी मॉर्निंग शो में हमको बता सकते हैं आप।

0: एक बात जो मुझे लगा था आप कहनी चाहिए, वैसे तो काफ़ी अलग लगी। अभी तक हमने क्या सुना था, एडिसन जो थे वो बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते थे, लेकिन आज हम भारत की एक ऐसी बेटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंटरनेट के लिए रोज़ वो पहाड़ों पर चढ़ी और बिना कोचिंग के नीट जैसा इतना बड़ा पेपर को क्रैक कर लिया। जी हाँ, सो किसान हैं इनके फादर और इनकी बेटियों का जज्बा बताता है कि पक्के इरादों के आगे हर मुश्किल जो है वो छोटी होती है। सो बात क्या है, दरअसल बात यह है कि ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली दो बहनें यज्ञ सेनी और दिव्य सेनी खतुआ ने इस बात को बिल्कुल सच साबित कर दिया है। और फादर चूंकि किसान हैं, माँ आंगनवाड़ी में काम करती हैं, इसलिए इन बहनों के पास महंगी कोचिंग जाने के पैसे नहीं थे। सो इनके गांव में मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता था, लेकिन इन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। ऑनलाइन पढ़ाई करने और नेटवर्क की तलाश में दोनों बहनें हर दिन गांव के पास एक पहाड़ी पर चढ़ती थीं। वहां जहां भी नेटवर्क मिलता था वहां वहीं पत्थरों पर बैठकर घंटों पढ़ाई करती थीं, बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ अपनी लगन, सेल्फ स्टडी और इंटरनेट के सहारे। इन दोनों बहनों ने देश की सबसे मुश्किल परीक्षा जो कि नीट कहलाती है उसको पास कर लिया। यज्ञ सेनी और दिव्य सेनी की ये कहानी दरअसल हमको बताती है कि अगर कुछ करने की सच में जिद है तो रिसोर्सेस की कमी आपको कभी भी रोक नहीं सकती। क्या आपने भी कुछ ऐसा करने का सोचा है?
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपकी समता गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद एक बार एक और नया एपिसोड हम सभी मिलकर ला रहे हैं, जिसमें फिर से बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों की माला को पिरोया गया है, जिसमें श्रीमती किरण पांडे जी की मधुर मधुर आवाज में है और उनका साथ देने आ रही हैं जिमी जी, श्वेता जी और समता। आज का यानी कि नया एपिसोड हमारा गांव की गूंज का विषय है नैहर। नैहर का मतलब होता है कि जब अपनी बेटी जो होती है वो अपनी माँ के घर जाती है। तो आइए हम सभी गीतों के साथ एक बार फिर से आनंद उठाते हैं गांव की गूंज का ये नया एपिसोड। अरे वाह, सब आ गए पर किरण दीदी नहीं आई। वो तो टाइम पर आ जाती है, आज कहाँ रह गई? जिमी जरा फोन लगा के पूछो तो।
7: ठीक है, पूछती हूँ संता जी। अरे रुको रुको, हम जानते हैं किरण दीदी कहाँ है। वह रूट कर नैहर चली गई है।
8: ये नैहर कहाँ है, कौन सी जगह है ये?
6: अरे बुद्धू, नैहर का मतलब मायका अपनी मम्मी का घर होता है।
7: जीजा जी आजकल बाजार में समोसे बहुत खाने लगे हैं। किरण दीदी बस इसी बात से नैहर चली गई है।
8: मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। चलो चलो, हम लोग भी चलते हैं उनके गांव।
6: हाँ हाँ चलो, शीतल ठंडी हवा, पेड़ों की छाव का आनंद लेने। यहाँ तो एसी में भी गर्मी लग रही है।
7: भैया किरण दीदी नहीं है पर उनका लोकगीत।

0: किरण दीदी, कहाँ हो?
1: घर पर तो नहीं है।
0: अरे बगिया से गाने की आवाज आ रही है, उधर चलते हैं।
2: देखो कितने लोग हैं, रेनू भाभी भी आई है दिल्ली से।
3: समता, नेहा बुआ भी आई है, यह तो मुंबई रहती है, वहाँ से इतनी गर्मी में आई है।
0: पहले गाना सुन लेते हैं, फिर बताएंगे कि हम लोग आ गए हैं।

नेहा बुआ, आपको याद है रेनू भाभी हम लोगों के लिए हमरी गुलाबी चुनरिया खूब गाती थी और आज ही कितना गुस्सा होती थी ना, आपको याद है?

0: अरे तुम लोग कब आए और कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं?
1: अरे हम वो हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं।
2: हम लोग रूठी दीदी को मनाने चले आए।
0: ये है हमारी गांव की गूंज की टीम, समता, श्वेता, जिम्मी। नमस्ते नमस्ते।
3: यहाँ आप मस्ती कर रही हैं और बेचारे जीजा जी सूख कर काटा होए जा रहे हैं आपकी याद में। किरण दीदी वह गाना पहली पठौनी ससुर मोरे आए सबको सुना दीजिए ना।

0: ट्राई क्यूर रेनु भाभी, लो सिकंजी पियो और ताजा खोया खाओ।
1: किरण दीदी, ये सारे बच्चे कितने शौक से शिकंजी पी रहे हैं, जबकि रहते मुंबई और दिल्ली में हैं।
2: डिम्पी, सौम्या, गोलू सब इतने खुश हैं। सुबह सुबह झील में जाकर तैरते हैं, गिल्ली डंडा खेलना सीखा इन्होंने, और आंधी में दौड़ दौड़ कर अमिया बटोरा है। शहरों में तो खुली जगह के लिए हम लोग तरस जाते हैं।
0: नेहा बुआ बता रही है कि दादी को सांस की तकलीफ है, रोज सुबह शाम इनहेलर लेना पड़ता है, पर जब से यहाँ आई है एक बार भी उन्होंने इनहेलर यूज नहीं किया है।
3: बच्चा पार्टी ने हमको भी अमिया खाने को दी, लो तुम लोग भी खा लो। पर प्लीज प्लीज प्लीज किरण दी, बगिया माँ छैया अपार हो गाना सुना दीजिए ना।

0: लो देखो, रूठी दीदी को मनाने जीजा जी भी आ गए, पर किरण दीदी ऐसे थोड़ी ही जाएंगी।
1: अरे क्यों तंग कर रहे हो इनको?
2: लो जी, हम तो आपका साइड ले रहे थे और आप हैं कि आपने पाला ही बदल दिया।
1: शर्त तो माननी पड़ेगी, पर पहले पानी तो पूछ लो। लीजिए, शिकंजी पीजिए।

0: क्या बात, आप सॉरी बोलिए जीजा जी को और कहिए दीदी की हर बात मानेंगे हम।
1: किरण दीदी की ननद रानी अरुणी भी आई है भाभी को मनाने।
2: ननद रानी बहुत दिनों बाद आई है। किरण दीदी, ननद जी के लिए कुछ गाना हो जाए।

0: यह क्या खुसुर खुसुर हो रही है, क्या खिचड़ी पक रही है?
1: अरे दीदी कान छोड़िए, बताते हैं। आप सबको गांव घूमने का बहुत मन था ना, अरुणी को कच्ची अमियां खाना था और जीजा जी को तो खेत के मुलायम भुट्टे।
2: हमको गन्ने खाने का और जिमी को बरे। अरे वो देखो दादी बरे ले आई।
3: सॉरी किरण दीदी, हम सब ने मिलकर प्लान बनाया था, पर यहाँ आकर रेनू भाभी और नेहा बुआ सीधे मिल लिए।
2: दीदी गुस्सा मत होइए, तो एक बात बोले, जीजा जी बता रहे थे कि जब आप शादी के बाद आई है ना, तब से दो गाने आप बहुत सुनाती थी, तो प्लीज वो गाने आज सुना दीजिए।

0: जिमी, देख देख देख अरुणी, तुम भी आओ, देखो कैसे तालाब में भैंस और बच्चे एक साथ नहा रहे हैं।
1: किरण दीदी, अब तो मुस्कुरा दो, अरुणी बोल रही है, जो गाना है वो सुना दीजिए।

0: चलो चलो रात हो रही है, तुम सबकी तो शहर पहुँच कर खबर लेंगे और आप और अरुणी को तो खाना ही नहीं देंगे। चलिए बताते हैं।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
5: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
6: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
7: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
8: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
9: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: उपलब्ध है, पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई, वक्त हो चुका है 12, यानी आपके अपने शो स्वास्थ्य संगनी का। जी हाँ, स्वास्थ्य संगनी, क्योंकि आज है दिन शनिवार और शनिवार के दिन हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। और आजकल तो भाई मैंने एक अलग ही बीड़ा अपने सर पे उठा रखा है, वो ये है कि भाई आने वाली जनरेशन को हेल्थी बनाना है और उन्हें सभी बीमारियों से मुक्त रखना है। अब देखिए, कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो इस धरती पे आने के बाद होती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती हैं। और ये बीमारियां ऐसी हैं जो कभी भी ज़िंदगी में वो ठीक नहीं होती, चाहे उसका कितना भी इलाज करा दिया जाए। हाँ, थोड़ा सा सुधार हो सकता है कि वो समाज में रहने लायक हो जाए, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक कभी नहीं होता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजीज़ की जो बॉडी के अंदर जब बच्चे होते हैं, यानी कि माँ के गर्भ में जब होते हैं, तभी उन्हें वो प्रॉब्लम हो जाती है। वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ है, जिसकी वजह से बच्चे और माँ और उसके घर वाले तीनों लोगों को ज़िंदगी भर सफ़र करना पड़ता है। अब इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं, कुछ हमारी वजह से, कुछ जेनेटिक और कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। वो क्या हैं, कैसे हैं, वो सब समझेंगे। लेकिन भाई, सबसे पहले हम आपका हाल चाल पूछेंगे। भाई कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए, चलते हैं हम आज के विषय पे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं फिटल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पे। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में यही होता है कि जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में डेवलप हो रहा होता है, तो उसी दौरान उसके ब्रेन का डेवलपमेंट किसी वजह से ठीक तरीके से नहीं हो पाता। ये प्रॉब्लम बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो उसकी थिंकिंग, बिहेवियर, लर्निंग या मूवमेंट में डिफ़िकल्टीज दिखने लग जाती हैं। इसीलिए इसे सिर्फ एक मेडिकल इशू ही नहीं, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट डालने वाली कंडीशन माना गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि ये डिसऑर्डर किसी एक कारण से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जेनेटिक्स ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या सिर्फ एनवायरमेंट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि असल में ये, अगर हम बात करें, तो असल में ये कई फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर जीन्स में कोई म्यूटेशन है, या फिर अगर हम बात करें कि साथ में माँ का जो प्रेगनेंसी का जो वक्त होता है, जिस वक्त बच्चा उसी गर्भ में होता है, उस दौरान प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, या उसे कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव भरे एनवायरमेंट में वो रह रही हो, तो ये सारे ही फैक्टर मिलके बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन पर असर डालते हैं और इसी वजह से उन्हें ये डिसऑर्डर हो जाता है। इसी तरह के किसी तरीके के हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे अल्कोहल, ड्रग्स या फिर रेडिएशन का एक्सपोजर भी ब्रेन डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। इसका मतलब ये साफ है कि ये पूरी प्रोसेस बहुत ही सेंसिटिव होती है और छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत बड़े इम्पैक्ट डालती है। अब देखिए, ये तो समझना बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं उस पर असर डालती है कि आप जो न्यूट्रिशन ले, जो खाना खा रहे हैं वही उसको असर करेगा, बल्कि वो कैसे एनवायरनमेंट पे रह रही हैं, कैसा उनके साथ बिहेव हो रहा है, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या वो ठीक महसूस कर रही हैं या नहीं, क्या हो सकता है वो डाइट साफ अच्छी ले रही हों, साफ़ सुथरी ले रही हों, उनके अगल बगल जो है साफ़ सफाई है, लेकिन फिर भी उनको स्ट्रेस हो रखा है, तनाव ज़्यादा हो रखा है, जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग पे गहरा असर पड़ता है। अब ये तो हम समझेंगे कि भाई कौन से स्टेज पे प्रेगनेंसी की कितनी डेवलपमेंट होती है और क्या क्या चीज़ें असर करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम बात इंडिया की करें तो कहीं ना कहीं इंडिया में घरेलू प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं। जब कोई माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसके आसपास कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है होने लगता है और जिसका असर सीधे सीधे बच्चे के दिमाग में पड़ता है। अब अगर हम समझें कि ब्रेन डेवलप कैसे करता है, तो ये कोई एक बार में होने वाली चीज़ नहीं है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसमें कई सारे स्टेज इन्वॉल्व होते हैं और हर स्टेज में अपना एक अलग रोल होता है। शुरुआत में जब प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक होता है तब बेबी का ब्रेन बेसिकली ज़ीरो लेवल पर बनना शुरू हो जाता है। उस टाइम पर उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बनने लगता है, जो आगे चलकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, ये आपको समझने की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि ब्रेन का जो असर होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग, जो आप मानसिक प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग के इम्पैक्ट पे नहीं होती, बल्कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, या फिर अगर हम आपको सरल भाषा में बताएं तो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, उससे भी इसका बहुत गहरा कनेक्शन होता है। काफ़ी बार तो अगर आपकी स्पाइंस पे, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी पे कोई चोट लगी हो तो भी आपके दिमाग पे वो बहुत गहरा असर डालता है। इस स्टेज पर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका असर सीवियर हो सकता है, क्योंकि ये एक फाउंडेशन है। इसके बाद अगली स्टेज में ब्रेन जो है, जो ब्रेन सेल हैं यानी हमारे न्यूरॉन्स, वो भी बनने लगते हैं। ये न्यूरॉन बहुत ही बड़ी संख्या में बनते हैं और यही फ्यूचर में हमारी थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन, बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर किसी कारण ये न्यूरॉन्स कम बनते हैं तो ठीक से डेवलप नहीं होता है, तो बच्चे की जो मेंटल कैपेसिटी है उस पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी ये बहुत ज़्यादा असर डालता है। इसके बाद दोस्तों, न्यूरॉन्स को अपनी सही जगह पर जाना होता है, क्योंकि ब्रेन का हर एरिया एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, और अगर ये न्यूरॉन्स सही जगह पे और हर जगह पे ना पहुँचे तो बच्चे को कोई सेंस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर कोई सेंस ऑर्गन की भी कमी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कोई बच्चा एक सेंस को महसूस ही नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की मान लीजिए उसकी स्किन काम नहीं कर रही, क्योंकि स्किन भी एक टाइप की सेंस ऑर्गन में ही काउंट होता है। अगर वो किसी चीज़ को छू रहा है, महसूस कर रहा है, तो उसको वो पहचान ही नहीं पाएगा कि वो कैसी सेंसेशन है। आखिर में सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्ट होना और एक पूरा नेटवर्क बनाना। इसे आप ब्रेन की वायरिंग से कह सकते हैं, कि जैसे हम कोई घर बनवाते हैं या फिर वायरिंग कराते हैं, तो अगर कोई भी एक वायर गलत हो जाए तो भाई शॉर्ट सर्किट होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। बस बिल्कुल इसी तरीके से इस स्टेज में भी हमारे ब्रेन की वायरिंग होती है। यही कनेक्शन डिसाइड करते हैं कि बच्चा कैसे सोचेगा, कैसे सीखेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, और अगर ये कनेक्शन ठीक से नहीं बनते हैं तो आगे चलकर बिहेवियरल डिसऑर्डर जैसे ऑटिज़म या फिर अटेंशन प्रॉब्लम भी सामने आ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ब्रेन डेवलपमेंट के कई सारी स्टेज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इन स्टेजेस को हम भी डीपली समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग ओवरऑल समझेंगे कि क्या होता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी स्टेज पर कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, हार्मफुल सब्सटेंस का एक्सपोजर, या फिर कोई ऐसा एक्सटर्नल कॉज हो सकता है जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी में एक गहरा इफ़ेक्ट नज़र आता है जो कि बाद में चल के एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम उनको दे सकता है। यही रीज़न है कि प्रेगनेंसी को इतना क्रिटिकल पीरियड माना गया है, और माँ की हेल्थ, इस दौरान जो माँ की हेल्थ होती है, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट का सीधा असर उसके बच्चे पर भी पड़ता है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इन डिसऑर्डर की शुरुआत तो गर्भ में ही हो जाती है, लेकिन इसके सिम्टम अक्सर बाद में दिखाई देते हैं, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो गया हो या फिर कुछ साल बाद। जैसे कुछ बच्चे शुरू में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी लर्निंग स्पीड कम हो जाती है, या सोशल इंटरेक्शन में डिफ़िकल्टी होती है, या अटेंशन इशू डेवलप हो जाता है। इसीलिए कई बार पेरेंट्स को लेट में पता चलता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, जब बच्चा उनकी गर्भ में ही था। अगर ओवरऑल समझे तो फेटल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बेसिकली उन कंडीशंस को कहा जाता है जब गर्भ में ब्रेन डेवलपमेंट के दौरान डिस्टर्बेंस हो जाती है और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से आगे चल के उनके इंटेलिजेंस, बिहेवियर, सोशल स्किल, इमोशन सब पे असर डालता है। अब अगर हम बात करें, देखिए हमारे भारत में ना जब तक कोई चीज़ हमारे सर पे नहीं आ जाती ना, जब तक वो बड़ी मुसीबत को हम समझ नहीं लेते हैं, तब तक हम उसके लिए जागरूक कभी होते ही नहीं हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भारत में न्यूरो डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसको हम NDD के नाम से भी जानते हैं, इसकी संख्या बहुत ही बड़ी है। अगर हम बात करें तो बच्चों में इसकी जो व्यापकता है वो 2 से 9 वर्ष की आयु में लगभग हर 8 में से 1 बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है। इसके बाद अगर हम जन्मजात अक्षमता की बात करें तो भारत में जो है राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 7.74 मिलियन, जिसे हम 77 लाख कहेंगे, उसको उन लोगों को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी भी है। इसका अगर हम प्रमुख विकार जो इसके अंदर आते हैं, जिसमें ADHD होता है, ऑटिज़म होता है, तो ऑटिज़म के लगभग 12%, ADHD के 10% और भी बौद्धिक अक्षमता जिसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं उसके 6% और बोलने की देरी जिसे हम स्पीच डिले कहते हैं उसमें 4% बच्चे शामिल होते हैं। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई ये कितनी ज़्यादा बड़ी संख्या है। और अगर हम जेंडर बेसिस पे डिवाइड करें तो लड़कों में ये 40% है और लड़कियों में ये 25% ये विकार पाए गए हैं। अब आप देख लीजिए कि हमारे भारत में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कितनी बड़ी संख्या है। जब एक गर्भ में एक बच्चा रहता है तो माँ बाप को काफ़ी सारी उम्मीदें रहती हैं, काफ़ी सारे सपने होते हैं, इवन घर वालों को भी बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन जब आप उनका सही से ध्यान नहीं रखेंगे, आप खिला पिला रहे हैं लेकिन उनको स्ट्रेस भरे माहौल में रखेंगे, काफ़ी सारे इन्फेक्शन होने के डर रहते हैं, कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, क्या स्ट्रेस का असर होता है, ये सब पे हम जिक्र करेंगे। लेकिन भाई जब आपको डॉक्टर बोलते हैं कि कंप्लीट रेस्ट चाहिए, एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखें, लड़ाई झगड़ा इनके पास ना हो, एक अच्छी अच्छी चीज़ें सुने समझें, तो उसका एक सीधा कारण ये भी होता है कि बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो सही से हो सके। अदरवाइज़ आगे चल के न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ फैलना बहुत ही ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी संक्रमण के हो या फिर छूने से फैलती है, बल्कि ये ध्यान ना रखने, गर्भ में ध्यान ना रखने के भी कारण हो सकती है। और कई लोगों को ये बीमारी जेनेटिक भी होती है, लेकिन ये जेनेटिक वाला कॉज बहुत कम होता है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इसको कैसे बच सकते हैं, कैसे आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको इन डिजीज़ यानी NDD न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से बचा सकते हैं, इन सब पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेल दोस्तों, ब्रेक पे तो मैं जा रही हूँ, लेकिन आपसे एक सवाल पूछते जा रही हूँ कि आपको क्या इसके बारे में पता था, और अगर पता था तो आपको क्या पता है। हो सकता है कि कुछ चीज़ मुझे ना पता हो, आपको पता हो, या हो सकता है कि कुछ चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो जो आप पूछ सकते हैं हमारे साथ। तो जल्दी से आइए चैट बॉक्स में, अपना हालचाल बताइए, और साथ ही साथ अगर आपके अगल बगल कोई भी ऐसे लेडी है जो प्रेग्नेंट है तो उनको और उनके घर वालों को आज का शो तो ज़रूर सुनाइए, क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ये सब तो जान लेते हैं कि भाई प्रेगनेंसी में क्या क्या क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों का बचाव करना चाहिए, क्या क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, लेकिन जो चीज़ बहुत ही साइलेंटली असर करती है, जो कि हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर हम कहें कि NDD यानी कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं, इन सब पे हमारी कभी हम लोग नज़र डालते ही नहीं है। और इसका असर कब पड़ता है, जब बच्चे ने जन्म ले लिया है, 2-4 साल हो गए हैं, या फिर काफ़ी बार जब बच्चा बड़ा हो गया है 15 से 20 साल का, उसके बाद इसके असर दिखाई देते हैं। तो ऐसा ना हो कि आगे चल के आपको कोई कष्ट हो या आपके बच्चे को कोई कष्ट हो, तो पहले ही जागरूक होना, समझदार होना और सतर्क होना बेहद ज़रूरी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको सुनते रहना है अपना शो स्वास्थ्य संगिनी।
4: अरे सुना
5: क्या,
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
5: वाओ,
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
1: स्वागत है श्रोताओं और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अदनान। आपके अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि नवजात शिशुओं की सुरक्षा। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे पैदा होते ही अचानक बीमार पड़ जाते हैं और परिवार जो है वो घबरा जाता है। कुछ लोग

0: जरूरत भी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा भाभी, सही जानकारी हो तो परिवार बच्चे की जान बचा सकता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे SNCU पर। यानी SNCU ये है क्या और क्यों जरूरी है? शायद ये हमारे श्रोताओं को नहीं पता, लेकिन ये आज हमारी टीकन भाभी जरूर बताएंगी।
0: बिल्कुल भैया, SNCU का पूरा नाम है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। ये एक खास यूनिट है जो जिला अस्पताल या बड़े मेडिकल सेंटर में होता है। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर और नर्स, खास मशीनें और बच्चों की निगरानी की सुविधा होती है। ये यूनिट उन बच्चों के लिए है जो समय से पहले पैदा हों और कम वजन के हों, सांस नहीं ले पा रहे हों, पीलिया, संक्रमण, दौरा या तेज बुखार से ग्रसित हों, दूध ना पी पा रहे हों या बहुत ज़्यादा ठंड या गर्म हों। SNCU को ऐसे समझो जैसे नवजात बच्चों की ICU, जहां हर बच्चा विशेषज्ञों की निगरानी में सुरक्षित रहता है।
1: अच्छा, मतलब गांव के लोग जिसे नाजुक बच्चा कहते हैं, वही बच्चा SNCU में ले जाना चाहिए?
0: हाँ बिल्कुल, और नाजुक का मतलब सिर्फ छोटा होना नहीं होता है। कई बार बच्चा बिल्कुल ठीक लगता है पर लक्षण अंदर ही अंदर बढ़ रहे होते हैं, यही सबसे खतरनाक बात है।
1: तो टीकन भाभी, ये तो परिवार को जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए। अब जरा इन लक्षणों के बारे में बताइए।
0: बहुत जरूरी है। मैं साफ साफ बात बता देती हूँ कि नवजात में मैं जो बताने जा रही हूँ उनमें से किसी भी एक लक्षण को हल्के में मत लेना, तुरंत SNCU ले जाए। जैसे दूध ना पीना या बहुत कम पीना, बच्चा बहुत सुस्त, हाथ पांव ढीले हो जाए उसके, उसकी सांस तेज चली हो, मतलब 60 से ज़्यादा प्रति मिनट, सांस लेने में मुश्किल, छाती का धसना, लगातार रोने लगे या उल्टी बहुत ही ज़्यादा हो और सोना भी उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, दौरा, फिट्स, शरीर बहुत गर्म या बहुत ठंडा पड़ जाए, नाभि में पस आने लगे, लालिमा धाली नाभि या फिर उससे बदबू आने लगे, गंभीर पीलिया हो जाए, खासकर 24 घंटे के भीतर बार बार उल्टी, दूध वापस आना, मतलब जब हम दूध का सेवन कराएं बच्चों को और वो तुरंत ही उस दूध को बाहर फेंक दें।
1: बिल्कुल, तो भाई एक बात याद रखना, नवजात में देरी का मतलब खतरा, एक मिनट भी इंतजार मत करना। बिल्कुल श्रोताओ, इसे दिल में बांध लीजिए कि खतरे का एक भी लक्षण मतलब सीधा SNCU। सो टीकन भाभी, जब परिवार SNCU पहुंचता है तो वहाँ क्या क्या होता है?
0: अरे आरजे भैया, SNCU तो पूरा वैज्ञानिक और सुरक्षित इलाज का केंद्र है। मैं एक एक सेवा बताती हूँ। जैसे पहला है वार्मर, इंक्यूबेटर नवजात अपना तापमान नहीं संभाल पाता, वार्मर में शरीर गर्म रखा जाता है। दूसरा है ऑक्सीजन या CPAP, अगर बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो तो CPAP से फेफड़ों में मदद मिलती है। तीसरा है दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन फैलने ना पाए इसलिए तुरंत दवा दी जाती है। फिर है फोटोथेरेपी, पीलिया के लिए सुरक्षित नीली रोशनी वाली थेरेपी। कई बार होता है कि हम घर पे ही बल्ब लगा के भी ये थेरेपी देने लगते हैं, लेकिन श्रोताओं ध्यान रखिए, पहले परामर्श फिर कोई थेरेपी। पांचवा है शुगर या फ्लूइड मैनेजमेंट, लो शुगर नवजात में बहुत खतरनाक होता है, इसकी लगातार निगरानी की जाती है। छठवां है फीडिंग सपोर्ट, अगर बच्चा खुद नहीं पी पा रहा तो नली यानी एनजी ट्यूब से माँ का दूध दिया जाता है। नेक्स्ट है कंगारू मदर केयर यानी KMC, माँ या पिता बच्चे को सीने से चिपकाते हैं और इससे बच्चा जल्दी ठीक होता है। अगला है निरंतर निगरानी, हार्ट रेट, ऑक्सीजन, तापमान, वजन, हर 1-2 घंटे में इन सभी की जांच होती है। फिर अगला है परिवार को सलाह देना कि कैसे दूध पिलाना है, कैसे साफ सफाई रखनी है और कब वापस आना है। और आखिरी और दसवां है फॉलोअप यानी डिस्चार्ज के बाद कब दिखाना है, अभी समय भी बताया जाता है।
1: वाह क्या बात है, इतना सब कुछ एक ही जगह, लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा।

0: बिल्कुल भैया, और सबसे खास बात ये है कि ये सारी सेवाएं पूरी तरह निशुल्क यानी मुफ्त हैं।
1: मुफ्त?
0: जी
1: सच में?
0: बिल्कुल।
1: लोग तो समझते हैं अस्पताल में बहुत खर्च होगा।
0: नहीं जी, सरकार ने नवजात के लिए इलाज को मुफ्त रखा है। इसमें शामिल है भर्ती, दवाइयाँ, फोटोथेरेपी, वार्मर, CPAP टेस्ट, दूध पिलाने की सलाह और 108 एम्बुलेंस की सुविधा। गरीबी और पैसों की वजह से कोई इलाज ना रुके, ये सरकार का एकदम साफ साफ संदेश है।
1: तो भाभी, अस्पताल तो करेगा ही, लेकिन बात ये आती है कि परिवार आखिर क्या करे?
0: परिवार तो आरजी भैया बहुत कुछ करता है। समय पर अस्पताल ले जाएं और डॉक्टर की दवा बीच में ना रुके, KMC जरूर करें, साफ सफाई, हाथ धोकर ही बच्चे को छूना, केवल माँ का दूध, 6 महीने तक कुछ और नहीं, और फॉलो अप की तारीख कभी ना छोड़ें।
1: सही बात है, घर की जिम्मेदारी घर वालों की।
0: हाँ अर्जे भैया, और प्रीटर्म और लो बर्थ वेट बच्चों पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को जल्दी ठंड पकड़ती है और इन्फेक्शन जल्दी लगता है, बार बार दूध चाहिए होता है, वजन धीरे धीरे बढ़ता है। तो KMC यानी कंगारू मदर केयर ऐसे बच्चों के लिए वरदान है।
1: तो भाभी, कई बार बच्चे इसलिए भी बीमार होते हैं क्योंकि गर्भावस्था में समस्याएं आती थी, क्यों?
0: बिल्कुल, और इसलिए गर्भवती महिलाओं को ये जरूर करवाना चाहिए, जैसे 4 ANC चेकअप, IFA की गोलियां, TT और TD वैक्सीनेशन, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच, और संस्थागत प्रसव। अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा SNCU जाने से बच सकता है।
1: और अगर बच्चा बीमार हो जाए तो?
0: तो आरजे भैया सीधे 108 पर फोन करो, एम्बुलेंस आती है, ऑक्सीजन, ट्रेंड स्टाफ, स्ट्रेचर और गर्माहट देने के सामान सबके साथ होते हैं, और वो भी सब कुछ एकदम मुफ्त होता है। बच्चा जब SNCU से ठीक होकर आता है तब भी सतर्कता बहुत जरूरी होती है, सिर्फ स्तनपान या दवा समय पर, या फिर ठंड, भीड़, संक्रमण से बचाना, साफ पानी और साफ सफाई, कोई भी खतरे का लक्षण दिखे तो तुरंत वापस जाना होता है।
1: मतलब इलाज सिर्फ SNCU तक नहीं, घर पर भी जिम्मेदारी उतनी ही है।
0: समुदाय मिलकर बहुत कुछ बदल सकता है, जैसे गर्भवती महिलाओं को ANC के लिए प्रेरित करें, संस्थागत प्रसव बढ़वाएं और नवजात के खतरे के लक्षण सबको सिखाएं, नाभि पर तेल घी कुछ ना लगाएं और इसकी सलाह भी दें, स्वच्छता बढ़ाएं। जब सोच बदलती है तो आरजे भैया पूरा गांव स्वस्थ होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नवजात बच्चा जब बहुत नाजुक होता है, बीमारी अचानक बढ़ सकती है, इसलिए समय पर इलाज जीवन बचाता है। SNCU आपकी सरकारी सुविधा है, इसे जानिए, पहचानिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत पहुंचिए। आपका एक कदम बच्चे की पूरी जिंदगी बचा सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद टीकन भाभी और सभी श्रोताओं को। आज आपने एक रक्षक जानकारी सुनी, इसे याद रखिए और अपने गांव में फैलाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और रेडियो से जुड़े रहिए।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशन है 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड
7: amenities, excellent infrastructure, smart class and digital class support, convenience facilities, scout guide, events, project and educational tour.
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
11: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी दोस्त आयुषी लेके एक बहुत ही प्यारा सा एपिसोड स्वास्थ्य संगनी का। जी हाँ, स्वास्थ्य संगनी, क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार को हम बात करते हैं आपके हेल्थ की, आपके अपनों की हेल्थ की, और बचाते हैं फ्यूचर जनरेशन को किसी बड़ी बीमारी से। क्योंकि देखिए, हम सब जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक हम शायद अपनी जनरेशन आने वाली जो है, जिस पे हमारा भविष्य, जिस पे हमारे इंडिया का भविष्य टिका है, उसे हम शायद ना बचा पाए। इसीलिए भाई, जागरूकता पहली सीढ़ी है हमें हमारी ज़िंदगी को अच्छी करने के लिए। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं फेटल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की, लेकिन अभी तक हमने बात की बिल्कुल ऊपर की, यानी ये होता क्या है, लेकिन भाई किस स्टेज में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें असर डालती हैं, ये तो अभी तक हमने समझा ही नहीं और जाना ही नहीं। तो चलिए चलते हैं इस विषय पे कि भाई आखिर हर स्टेज में क्या होता है। देखिए, जब एक बेबी माँ के गर्भ में होता है तो ना उसका जो ब्रेन होता है वो अचानक से रेडी नहीं हो जाता। ये एक बहुत लंबा और डेलिकेट प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे कई स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है। हर स्टेज इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर उस समय पे थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए ना, तो उसका असर उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी पे पड़ेगा और उनके घर वालों को और उस बच्चे को, दोनों को अच्छे से सफ़र करना पड़ सकता है। तो ज़रूरी है कि हम अभी से समझ जाएं कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है इस बड़ी बीमारी से बचने के लिए। देखिए, सबसे पहले जो स्टेज आती है वो तो हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। ये प्रेगनेंसी के बिल्कुल शुरुआती हफ्तों में होती है। लगभग पहले के 2 से 3 महीने के अंदर इस टाइम पर बेबी का जो बॉडी अभी बहुत ही बेसिक लेवल पे होता है और उसी दौरान एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे न्यूरल ट्यूब कहा जाता है। आप इसे ऐसे समझो कि जैसे स्टार्टिंग का कोई ब्लूप्रिंट है, इसको हम ब्लूप्रिंट की तरह ही समझेंगे, जैसे जैसे आगे चलकर पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है। अब यहाँ से सबसे क्रिटिकल चीज़ें ये होती है कि न्यूरल ट्यूब सही तरीके से बंद हो जाए। अगर ये प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ तो बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कुछ केसेस में स्पाइनल कॉर्ड बाहर ही रह जाती है या ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब इतनी अर्ली स्टेज में हो जाता है कि कई बार माँ को पता ही नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी कमी से ये डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे ही ये बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसका अगला स्टेज शुरू होता है न्यूरल प्रोलाइफोरेशन। ये स्टेज थोड़ा माइल्ड प्रेगनेंसी के आसपास ये स्टेज थोड़ा सा मिड प्रेगनेंसी के आसपास होता है और इसमें ब्रेन सेल यानी कि न्यूरॉन बनना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ इमेजिन करिए कि एक खाली जगह है और उसमें बहुत तेज़ी से लाखों करोड़ों सेल बन रहे हैं, और ये सेल आगे चलकर सोचने, समझने, महसूस करने और कुछ कंट्रोल करने वाले होते हैं। लेकिन अगर इस स्टेज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे माँ को कोई इन्फेक्शन हो गया या सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो न्यूरॉन्स उतने नहीं बन पाते हैं जितने बनने चाहिए। इसका सीधा असर ब्रेन की साइज और कैपेसिटी पे पड़ता है। ऐसे केसेस में बच्चे का जो सिर होता है वो छोटा रह जाता है, जिसे हम माइक्रोसेलेफिली कहते हैं, और इसका मतलब सिर्फ छोटा हेड नहीं होता बल्कि ब्रेन की फंक्शनिंग भी लिमिटेड हो जाती है। जब न्यूरॉन्स बन गए हैं तो कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। अब आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज जो है न्यूरोनल माइग्रेशन। इसमें न्यूरॉन्स अपनी सही जगह पर उनको जाना होता है। आप इसे ऐसे समझो कि जैसे स्कूल में एडमिशन लेते समय बच्चे को उसकी सही क्लास अलॉट होती है ना, बस बिल्कुल उसी तरीके से ये भी स्टेज होता है। इसमें न्यूरॉन्स को सही जगह भेजा जाता है जहाँ उनका काम होता है। अगर कोई स्टूडेंट जैसे गलत क्लास में चला गया तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी, और सेम अगर कोई न्यूरॉन गलत जगह पर चला गया तो वहाँ भी कई सारी दिक्कतें होने लग जाएंगी। ठीक वैसे ही अगर न्यूरॉन्स अपनी सही जगह तक नहीं पहुंचते हैं तो ये रास्ते में ही कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है या फिर थोड़ा सा बिगड़ जाता है। कुछ केसेस में ब्रेन स्मूथ रह जाता है, कुछ केसेस में ये फोल्ड नहीं हो पाता। कई जगह कई बार क्या होता है, जबकि नॉर्मली ब्रेन के जो फोल्ड्स होते हैं वो उसकी कैपेसिटी बढ़ने लग जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कई क्षेत्र में जिसे हम कह सकते हैं कि लाइक वो ऑटिज़म वाले जो लोग होते हैं ये उनमें ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी किसी की चीज़ की बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनको जैसे जो ऑटिज़म वाले लोग होते हैं उनका कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कोई एक सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, चाहे वो कोई चीज़ को महसूस बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो सुनाई देने लगती है कि अगर छोटी सी भी आवाज़ हो जो नॉर्मली नहीं सुनाई दे सकती है वो भी उन्हें सुनाई दे जाती है। और इसका इफ़ेक्ट बहुत सीरियस होता है, जैसे कि सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीजेरियर, या फिर हम कहें तो डेवलपमेंट में भी डिले हो सकता है। अब आखिरी स्टेज आती है जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रेगनेंसी के लेट फेज में और बर्थ के बाद भी कंटिन्यू हो सकती है। इस स्टेज में आप ब्रेन की वायरिंग स्टेज इसको समझो, यहाँ न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते हैं, साइनैप्स बनते हैं और इसका पूरा नेटवर्क रेडी हो जाता है, और यही कनेक्शन डिसाइड करते हैं कि बच्चा कैसे सोचेगा, कैसे सीखेगा, कैसे बिहेव करेगा और कैसे दूसरों से इंटरैक्ट करेगा। अगर यहाँ कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए, जैसे कि माँ बहुत स्ट्रेस ले रही है, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है उनके लिए, या कोई हार्मफुल सब्सटेंस का एक्सपोजर हो रहा है, तो ये कनेक्शन सही से डेवलप नहीं हो पाता है और यही आगे चल के डिसऑर्डर जैसे ऑटिज़म, ADHD, लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब बच्चा फिजिकली तो ठीक दिखेगा, बिल्कुल सही, हाथ पैर सब कुछ सही है, लेकिन बिहेवियर, अटेंशन, सोशल इंटरेक्शन में इशूज़ आ सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि अगर ये सारे स्टेज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक स्टेज में कि अब भाई तीसरा स्टेज चला लग गया है तो अब हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, बल्कि आपको पूरे के पूरे 9 महीने आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेज ख़त्म हुई है और फिर दूसरी शुरू हो गई, बल्कि ये एक ओवरलैप भी कभी कभी कर सकती है, यानी कि कोई फंक्शनिंग पहले स्टेज में ही शुरू हो गई हो, कोई डेवलपमेंट बाद में स्टार्ट हो रही हो, तो ये एक चेन की तरह काम करती है। इसीलिए आपको थ्रू आउट द पीरियड आपको उनका ध्यान रखना ही रखना है। अगर शुरुआत में ही न्यूरल ट्यूब में प्रॉब्लम आ गई तो आगे न्यूरॉन्स बनने और कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी को इतना सेंसिटिव पीरियड माना जाता है, और इसीलिए डॉक्टर आपको कहते हैं कि अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, खुश रहें, स्ट्रेस फ्री हों, जिससे कि बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो सही हो जाए। और एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि इन डिसऑर्डर की शुरुआत तो गर्भ में ही हो जाती है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं जैसे वो कई सालों बाद दिखाई देते हैं। जैसे ऑटिज़म के जो साइन होते हैं वो 2 से 3 साल की उम्र में दिखाई देते हैं। ADHD स्कूल जाने के बाद नोटिसेबल होता है, लेकिन इनसे जुड़े जो प्रीनेटल डेवलपमेंट होती हैं, जो इसकी जड़ें होती हैं, वो प्रीनेटल डेवलपमेंट में ही होती हैं। तो ओवरऑल एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो फेटल ब्रेन डेवलपमेंट एक बहुत ही केयरफुली कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस है। इस पहले एक स्ट्रक्चर बनता है, फिर एक सेल बनता है, फिर वो सही जगह जाते हैं और आखिर में आपस में जुड़कर एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं। और इन चारों स्टेप्स में किसी भी एक स्टेप में अगर डिस्टर्बेंस आई तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब भाई प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली, स्टेजेस डिस्कस कर ली, अब बात रह गई कि आखिर इससे बचें कैसे, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है और हम कभी इसको नोटिस करते ही नहीं हैं। तो क्या हम कौन कौन से प्रिकॉशंस अपना सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए, और आखिर में ये कैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जैसे ये डिसऑर्डर के रीजंस कौन कौन से हैं, कि किस वजह से हो, सिर्फ स्ट्रेस ही है या फिर और कुछ। देखिए स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर तो है ही है, बल्कि मैटरनल इन्फेक्शन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जेनेटिक फैक्टर है इसके पीछे, मैटरनल स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर है, और कई सारे ऐसे जो हार्मफुल केमिकल हैं या सब्सटेंस हैं जो माँ कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से उनके दिमाग पे यानी उनके बच्चे के दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर आता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, मैटरनल इम्यून एक्टिवेशन, अननोन कॉज भी इसमें काफ़ी सारे होते हैं जो शायद हम जिस पे ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप जिधर भी एक गर्भवती महिला रह रही है, एक प्रेग्नेंट लेडी रह रही है, उधर का एनवायरनमेंट बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। इसीलिए काफ़ी बार डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर कोई घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो माँ को किसी ऐसी जगह रखें, चाहे उनके मायके भेज दें, ऐसी जगह ले जाएं अगर आप ले जा सकते हैं जहाँ पे वो स्ट्रेस फ्री रह सकें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। लेकिन अब हम जानेंगे कि भाई इससे हम बचाव कैसे करें, क्या क्या चीज़ें हम अपना सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस होते हैं जिससे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और एक अच्छे भविष्य की ओर अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। वो चीज़ समझेंगे हम लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना है हमारे साथ अपने प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में।
12: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
13: मतलब?
12: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
14: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
15: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो गैनेस्ले 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज़्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमज़ोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया आपका हार्दिक स्वागत है।
16: बहुत बहुत धन्यवाद आरजे आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को, आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
15: भैया बिल्कुल सही कहा आपने, आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
16: देखिए NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो, या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए, या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
15: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
16: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
15: अच्छा।
16: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
15: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
16: बहुत सारी,
15: जैसे?
16: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ।
15: जी।
16: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं। कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
0: और बाकी?
16: अरे बताता हूँ। दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना। सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना। अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना। शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना। इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, एनबीएसयू का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते तो एनबीएसयू माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है। जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है। और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों केएमसी कर सकते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। और इसके अलावा भी कुछ है?
16: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। एनबीएसयू में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है। और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल। यदि बच्चा गंभीर हो, एनबीएसयू पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर एसएनसीयू को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
0: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत एनबीएसयू ले जाना चाहिए।
16: देखिए आकांक्षा जी, नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता। वो तो बस संकेत देता है।
0: जी
16: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे तो सीधा एनबीएसयू। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो आरजे दीदी
0: जी।
16: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर एनबीएसयू दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
0: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा एनबीएसयू से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
16: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है। और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे। सिर, हाथ, पैर ढककर रखे। केएमसी यानी माँ की छाती से चिपकाकर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल, ना घी, ना हल्दी। बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं। और डॉक्टर जो तारीख दे, फॉलो अप जरूर कराए, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े तो तुरंत वापस NBSU।
0: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है।
16: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
0: और भैया, हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों?
16: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
0: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
16: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
0: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानस्ली 89.6 FM के साथ। नमस्कार।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है? स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी। और आज हम बात कर रहे हैं बच्चे की डेवलपमेंट यानी कि न्यूरल डेवलपमेंट की बात। अब भाई आज हम बात हमने अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो आज हमने डिस्कस किया फेटल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं कि भाई आखिर इससे बचा कैसे जाए। देखिए, ये डिसऑर्डर पूरी तरह से अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका रिस्क काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है अगर प्रेगनेंसी के दौरान सही केयर ली जाए तो। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रॉपर न्यूट्रिशन। देखिए, अगर जो माँ खाती है वही बच्चे की ब्रेन का बिल्डिंग मटेरियल बनता है, इसीलिए डाइट में आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और स्पेशली फॉलिक एसिड का होना बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड तो ब्रेन की शुरुआती डेवलपमेंट के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स इसे प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले से ही आपको बताने लगते हैं और इसके लिए आपको डाइट भी बताते हैं। अगर डाइट बैलेंस होगी तो बेबी का जो ब्रेन है वो हेल्दी रहेगा और सही तरीके से डेवलप होगा। इसके साथ ही साथ डॉक्टर्स के पास आपको जाके रेगुलर चेकअप भी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार प्रॉब्लम्स अंदर ही अंदर डेवलप हो रही होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। अल्ट्रासाउंड और टेस्ट के थ्रू अर्ली स्टेज पर ही इश्यूज डिटेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस दिखती है तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट और उसे मैनेज किया जा सकता है। अब एक ऐसी चीज़ जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर माँ लगातार टेंशन, एंजाइटी, इमोशनल प्रेशर में रहती है तो उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। जितना ही आप फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं उतना ही मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन, म्यूज़िक, मेडिटेशन या फिर और साथ ही साथ फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। फिर आता है इन्फेक्शन से बचाव। प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, इसीलिए हाइजीन मेंटेन करना, बाहर से अनसेफ फूड ना खाना, अननेसेसरी एक्सपोजर से बचना, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना करना जिससे बच्चे को इन्फेक्शन हो। कुछ इन्फेक्शन बेबी के ब्रेन को डायरेक्टली अफेक्ट करने लगते हैं, इसीलिए अगर बुखार है या फिर कोई इन्फेक्शन है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ और वो है हार्मफुल सब्सटेंस से दूरी। अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स या किसी भी तरह की टॉक्सिक केमिकल्स या फिर नशीले पदार्थ से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इवन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके घर में है और आप स्मोकिंग या फिर अल्कोहल या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो आपको भी उन चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पैसिव स्मोकिंग की वजह से उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब्सटेंस सीधे बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट को डैमेज करते हैं और यहाँ तक कि पैसिव स्मोकिंग, जो कि दूसरों के स्मोक करना भी उनके लिए हार्मफुल हो जाता है। इसके अलावा सेफ़ एनवायरनमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। जितना पॉसिबल हो पॉल्यूशन, केमिकल और रेडिएशन से आपको दूर रहना चाहिए। आजकल अर्बन एरियाज़ में तो पॉल्यूशन एक बहुत ही बड़ा और रिस्क वाला फैक्टर बन चुका है, इसीलिए क्लीन एनवायरनमेंट में रहना और अननेसेसरी एक्सपोजर को अवॉइड करना ही बेटर होता है। एक और सटल लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हार्मोनल बैलेंस और ओवरऑल हेल्थ। अगर माँ को थायराइड या फिर कोई हेल्थ इश्यूज है तो उसे कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्मोन्स भी ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस। जितना ज़्यादा माँ और फैमिली को नॉलेज होगी उतनी ही बेहतर केयर वो बच्चे की कर पाएंगे। कई बार छोटे छोटे प्रिकॉशंस हमें बड़े बड़े रिस्क से बचा देते हैं। तो दोस्तों ये थी चीज़ें जो हम करके इन जो है NDD यानी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से अपने बच्चों को बचा सकते हैं, जो कि हम कहीं ना कहीं देखिए इसको ये एक ऐसी बीमारी होती है जो अगर एक बार हो जाए और बच्चे ने जन्म ले लिया तो भाई वो तह उम्र इससे झेलेगा, इससे परेशान रहेगा और इससे कोई भी डॉक्टर आपको पूरी तरीके से निकाल नहीं सकता। याद रहे कि अगर कोई भी ऐसी मेंटल प्रॉब्लम है जो जेनेटिक्स है, यानी कि जेनेटिक है और माँ के गर्भ से शुरू हुई है, तो वो ठीक करना इम्पॉसिबल होता है। उसको कंट्रोल किया जा सकता है, थोड़ा बहुत कम कर किया जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरीके से ख़त्म करना इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए बेहतर यही है कि आप बच्चे का ध्यान तब से ही रखना स्टार्ट कर दें जब से वो गर्भ में हो, क्योंकि उधर जब उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। फिलहाल ये था हमारा आज का शो स्वास्थ्य संगिनी। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, आपने सीखा होगा, और सबसे बड़ी बात कि भाई इन चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे आपसे फिर एक नए एपिसोड में लेके आपके स्वास्थ्य और आपके अपनों के स्वास्थ्य की बातें। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान और हमें इजाजत दीजिए, लेते हैं आपसे विदा।
2: हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें। अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी, हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी, जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर ले और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
3: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
4: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट द्वारा समर्थित

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। सभी श्रोताओं को हमारी सेहत की श्रृंखला सेहत सही लाभकई के नए एपिसोड में हम स्वागत करते हैं और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। दोस्तों, अब पोषण माह की बात हो रही है और एनीमिया जैसे संगीन मुद्दों पर चर्चा ना हो ऐसा हम होने नहीं दे सकते, जिसके लिए इस एपिसोड में हम लाए हैं सेहतिया भैया को और साथ एक पोषण विशेषज्ञ को जो कि हमें बताएंगे बहुत सारी बातें सेहत को लेकर, जिसका मुख्य विषय होगा एनीमिया। सेहतिया भैया, कल मैंने ना एक पत्रिका में रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे काफी चिंतित कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NFHS 5 2019-21 के अनुसार हमारे देश में एनीमिया 6 महीने से 5 साल तक की उम्र के 67.1% बच्चों में पाया गया है। पढ़कर काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ मुझे, लेकिन इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये बात समझ में नहीं आई।
3: जी हाँ, और ये सच्चाई या परेशान करने वाले आंकड़े यहीं तक सीमित नहीं हैं। आपको पता है 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में 59% से भी ज्यादा लड़कियां एनीमिक हैं, यानी हर 10 में से 6 लड़कियां। और गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनमें 52% यानी आधी से ज्यादा महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं।
1: ओहो, और 5 से 9 साल के बच्चों का क्या, क्या उनके लिए कोई जानकारी है आपके पास?
3: NFHS में इस उम्र के बच्चों का डाटा सीमित है, लेकिन अलग अलग अध्ययनों के अनुसार इस आयु वर्ग के लगभग 23.5% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हो सकते हैं।
1: मतलब ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हम अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा है, लेकिन क्या पुरुष भी एनीमिया से प्रभावित होते हैं?
3: जी हाँ, ऐसे पुरुष जिनकी उम्र 15 से 49 वर्ष के बीच में है, इनमें 25% पुरुष और किशोर लड़कों में लगभग 31% भी एनीमिक पाए गए हैं, यानी यह एक पूरे समाज की समस्या है।
1: तो क्या आपके पास केवल बिहार में ही एनीमिया के आंकड़े हैं?
3: जी हाँ, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 70.4% बच्चे जिनकी उम्र 6 से 59 महीने है और 63.6% गैर गर्भवती महिलाएं और 63.1% गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं। कुल मिलाकर 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में यह दर 63.5% है। किशोरियों में जिनकी उम्र 15 से 19 साल है यह और भी ज्यादा खतरनाक है और इसकी प्रतिशतता लगभग 65.7% है। पुरुषों में भी 30.8%, यानी जिन पुरुषों की उम्र 15 से 49 साल है उनमें 30.8% है और 35.6% ऐसे पुरुषों में है जिनकी उम्र 15 से 19 साल है।
1: यानी ये एनीमिक है?
3: बिल्कुल सर,
1: बिल्कुल। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो क्या स्थिति है?
3: यहाँ भी स्थिति चिंताजनक है। 67.5% 50.6% गैर गर्भवती महिलाएं और 45.9% गर्भवती महिलाएं एनेमिक हैं। 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में यह 50.4%, किशोरियों में 52.9% और पुरुषों में 22.2% और 28.9% ऐसे पुरुषों में जिनकी उम्र 15 से 19 साल है।
1: सेहतिया भैया, हमारी दोस्त प्रियंका अभी जल्द ही एनीमिया को लेकर के डॉक्टर अमर निधि से मिली थी, सो क्यों ना हम एक एक्सपर्ट के दृष्टिकोण से भी जान लें?
3: अरे नेकी, और वो भी पूछ, बिल्कुल सुनते हैं डॉक्टर अमर निधि का एनीमिया पर क्या कहना है।
4: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV/AIDS और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
5: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
4: हमारा पहला सवाल है कि एनीमिया की समस्या काफ़ी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
5: ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं।
4: क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है?
5: अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें, इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
4: जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
5: जी हाँ, बिल्कुल। अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
4: तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
5: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं, इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
4: तो मैम, मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
5: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
6: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है।
5: ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
4: तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि एनीमिया, मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निशुल्क जांच कहाँ होती है? तो इसके बाद
5: इसको मैं दो भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या PHC या आंगनवाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है तो उसको बार बार आशा और आंगनवाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं। घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है, वो सबसे नज़दीकी सब सेंटर, PHC, CHC या ज़िला अस्पताल में जाएं, तो वहाँ हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं, उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
4: जी, तो मैम, जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज़्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है? कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके होता है?
5: जी हाँ, बिल्कुल होता है। ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियाँ, स्वास्थ्य की जाँच और सलाह दी जाती है।
6: मैम, एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं, उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
5: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
4: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
5: आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है, लेकिन ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते। इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा, यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, मोमोज, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को, ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें, इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
4: एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं, और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में?
5: आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं, 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो जो भी माँ बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक ज़रूरी बात है कि स्वयं से इसको लेकर इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती, इसको किसी ना किसी जांच के बाद ही, और जो भी हमारे जो चाहे वो डॉक्टर हों या चाहे वो हमारे

0: पूछते हैं कि आखिर उनकी भतीजी आरती दीदी को क्या हुआ था। मुझे पता लगा था कि उनको काफी खून की कमी थी और उनके प्रसव में काफी दिक्कत भी हुई थी।
1: हाँ भैया अदनान, क्या ही बताऊं, तुम्हें तो पता है कि आरती कितनी खाने पीने की शौकीन थी। मोमोज हो या चाउमीन, मिठाई हो या सूखे चने, हर चीज काफी शौक से खाती थी। पर इतने चटोरेपन का क्या ही फायदा होता जब वो उसका खाना पौष्टिक ना होता।
0: क्यों भैया, वो तो काफी हेल्दी थी, फिर उनको आखिर किस चीज की दिक्कत हुई?
1: यही चाउमीन और मोमोज खा खा करके उसको लगता था उसका सारा पोषण पूरा हो रहा है, पर गर्भावस्था में ज्यादा नमकीन और तेल वाली चीज खा खा करके उसका ब्लड प्रेशर अलग बढ़ा, ऊपर से एनीमिया यानी खून की कमी। छठे महीने में डॉक्टर ने तो सख्ती से कह दिया था कि अब अगर पोषण का ध्यान नहीं दिया तो प्रसव के समय काफी दिक्कत हो जाएगी।
0: हाँ तो आपकी भतीजी है ना, समझदार तो होंगी, ख्याल तो रखी लिया होगा, ख्याल तो रखी लिया होगा।
1: इसी चीज का तो दुख है, मेरी भतीजी होने के बावजूद डॉक्टर की बातों को अनसुनी करके लापरवाही करती रही और प्रसव के समय कितनी दिक्कतें आई यह बस या तो डॉक्टर साहब जानते हैं या आरती।
0: पर फिर भी बताएं तो ऐसा आखिर हो क्या गया?
1: होना क्या था, प्रसव के समय जहां खून की मात्रा अधिकतम होनी चाहिए उसको जब भी कमी थी, धर्मवीर भैया और मुझे एक एक यूनिट खून देना पड़ा, तब जाके उसकी बेटी का जन्म हो पाया। पर सिर्फ आरती पर असर नहीं पड़ा, अब उस आने वाली नन्ही सी जान भी काफी दुबली पतली खून की कमी से ग्रसित है।
0: हाय, ये तो काफी चिंताजनक मामला हो गया। तो अब कैसी है आरती दीदी?
1: अब तो काफी बेहतर है, हमारा जमाई काफी समझदार है, उसने डॉक्टर से सलाह ली और जिस तरह से डॉक्टर ने खाने पीने का बोला था वैसे वैसे ध्यान रख रहा है। अब चाहे सप्लीमेंट देना हो या टाइम टाइम से पौष्टिक आहार या दवाएं, सब कुछ खुद संभाल रहा है ताकि आरती की हालत सही रहे और उसकी नन्ही परी की भी।
0: ये तो अच्छी बात है काफी। आरती दीदी को सोचना चाहिए था कि पोषण की कमी सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहेगी, हमारी गुड़िया भी झेल सकती है। अच्छा सिहतिया भैया, तो क्या कोई सरकारी रुझान है इस पर?
1: अरे सरकार बहुत सक्रिय है, पोषण अभियान और अनीमिया मुक्त भारत, पोषण पखवाड़ा, सुपोषित पंचायत जैसी योजनाएं चला रही है, जहां आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से IFA की गोलियां दी जाती हैं और पोषण पर सलाह भी दी जाती है।
0: मुझे याद है भैया, भारत सरकार ने 2018 में एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB अभियान शुरू किया था और इसका उद्देश्य जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर एनीमिया को कम करना है।
1: बिल्कुल भैया, इस अभियान के प्रमुख घटक हैं आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, नियमित डीवॉर्मिंग, व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान, आयरन युक्त भोजन का सेवन बढ़ाना, डिजिटल तरीकों से एनीमिया परीक्षण और उपचार, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव के बाद देरी से कार्ड क्लैपिंग सुनिश्चित करना। इस अभियान का लक्ष्य हर साल एनीमिया की दर को 3% तक कम करना है।
0: सेहतिया भैया, ये योजना तो बहुत ही व्यवस्थित योजना है, और भी क्या कोई कार्यक्रम है?
1: हाँ अदनान जी, और भी कई योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि RKSK। इसमें खास ध्यान किशोर लड़के लड़कियों पर है, खासकर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों पर। इसमें WIFS यानी हफ्ते में एक बार आयरन की गोली, पोषण शिक्षा और परामर्श शामिल है। ऐसे ही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि RBSK बच्चों में 30 बीमारियों की पहचान और इलाज का कार्यक्रम है, जिसमें एनीमिया भी शामिल है, स्कूल और आंगनबाड़ी के जरिए किया जाता है। ऐसे ही स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम यानी कि SHWP ये स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा देता है, जिसमें एनीमिया की जानकारी भी शामिल है। ICDS आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों और माताओं को पोषण मिलता है, जिसमें फोर्टिफाइड खाना और

0: एक होम राशन भी शामिल है। ऐसे ही पोषण अभियान पोषण 2.0 ये पोषण को लेकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी योजनाओं को जोड़ा गया है और रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। ऐसे ही पीएम पोषण योजना ये स्कूल के बच्चों को पौष्टिक मिड डे मील देती है जिससे एनीमिया और अन्य कमियों को रोका जा सके।
1: शुक्रिया भैया, आपने तो इतनी सरलता से और फिर भी इतनी गहराई से ये सब जानकारी दे दिया। सो दोस्तों, अब बात करते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की। ये सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। यहाँ कई और सुविधाओं के साथ अगर हम सिर्फ एनीमिया की बात करें तो आपको कई सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे मुफ्त हीमोग्लोबिन परीक्षण और एनीमिया उपचार, IFA गोलियों का वितरण भी होता है, पोषण संबंधी परामर्श और आयरन युक्त भोजन की जानकारी भी यहीं से मिल जाती है। और तो और इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के तहत गंभीर मामलों में कैशलेस इलाज भी उपलब्ध कराया जाता है।
0: मैं तो महिलाओं से कहना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा और खुशहाल रहेगा। आप खुद सोचिए कि एक माँ अगर थकी होगी तो बच्चे की देखभाल कैसे करेगी। खेत में काम करने वाली महिला अगर चक्कर खाकर गिर जाए तो फसल कैसे काटेगी। अपना ध्यान आपको खुद ही रखना है।
1: बिल्कुल सही कहा भैया। तो श्रोताओं, सुना आपने, संतुलित भोजन, नियमित रूप से आयरन व फोलिक एसिड की गोलियां, समय समय पर कीड़ा मारने की दवा, किसी भी संक्रमण का इलाज और कोई भी एनीमिया के लक्षण दिखाई देने पर स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह मानना ही आपको एनीमिया के दुष्परिणामों से बचा सकेगा।
0: बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है और इसकी शुरुआत होती है सही खून से।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम फिर आएंगे सेहत से जुड़ी नई जानकारी और सुझावों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खून बढ़ाइए, आपका स्वास्थ्य ही आपकी ताकत है। तो साफ है कि जानकारी, जागरूकता और सही इलाज से एनीमिया को हराया जा सकता है।
0: बिल्कुल अदनान जी, और इस लड़ाई में हम सबका साथ जरूरी है, घर में, स्कूल में, पंचायत में और पूरे समाज में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। सो बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया सिंह जी भैया। और दोस्तों, सेहत से जुड़ी ऐसी ही जरूरी बातों के लिए सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
1: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे
1: ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
2: तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

नमस्कार सस्काल दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद प्यारा और पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली विद आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका। और बिल्कुल हो गया है टाइम जो कि आपकी घड़ी में, और आ गए हैं हम आपको एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनाने के बाद में। और आज ये जो पहले और बाद वाली है ना, कि आप सोच रहे होंगे कि अंशिका जी जो है वो अकेली क्यों आई हैं। सो अकेले नहीं आई हूँ मैं, अकेले बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। चलिए एक काम करते हैं कि पहले हम एक प्यारा सा अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं और उस सॉन्ग के उस पार आते हैं आपसे बातें करने के लिए। तो आइए सुनते हैं इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को, मिलती हूँ इस सॉन्ग के उस पार आपकी अपनी वाली आरजे और हमारी प्यारी सी आरजे समता के साथ। तब तक के लिए सुने और इन्जॉय करें। स्टे ट्यून्ड।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
4: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
3: थोड़ी देर हो गई, देर ना हो जाए वाला गाना सुन रही थी ना, इसीलिए देर हो गई थोड़ी सी, तो माफी चाहती हूँ। बट देर आए दुरुस्त आए ऐसा कहा जाता है। बाकी तो अंशिका ने वेलकम आपका कर ही दिया हो गया होगा और शुभ दोपहर बोल दिया
4: अभी नहीं।
3: चलो तो एक साथ एक ही फ्रेम में बोल देते हैं भाई दोनों, क्या
4: शुभ दोपहरिया।
3: आइए फटाफट पोयम की ओर चलते हैं बिना देर लगाए हुए। आज रास्ता वास्ता नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने पहले से ही आपको रास्ता दे दिया है, यानी कि हम लोग बातें शातें शुरू हो चुकी हैं क्योंकि दो गाने आपने सुन लिए आज भाई बैठे बैठे। तो आइए सीधे चलते हैं बुजुर्गों के ऊपर प्यार सम्मान और उनके जीवन को महत्व को दर्शाती हुई ये प्यारी सी पोयम। ठीक है अंशिका?
4: जी मैम।
3: घर की मजबूत नींव है बुजुर्ग, अनुभवों का खुला आसमान है बुजुर्ग, उनकी झुरियों में छिपा है कल का सच, हमारे जीवन का सबसे अनमोल वरदान है बुजुर्ग। सिर पर उनका हाथ रहे तो डर कैसा, आशीर्वाद मिले उनका तो फिर गम कैसा, उनकी डांट में भी छुपा होता है लाड, उनके बिना घर का आंगन लगे सूना जैसा। वक्त की धूप वो साया बनकर चलते हैं, वक्त की धूप में वो साया बनकर चलते हैं, गिरते हुए कदमों को वो संभालना सिखाते हैं, भले ही कमजोर हो जाती है उनकी काया पर वो हर मुश्किल से लड़ना सिखाते हैं। मत छोड़ना कभी अकेले उन्हें, उम्र के उस मोड़ पर उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है इस जमीन पर।
4: वाह
3: आहा रुको, हंसते रहे वो हमेशा अपने बच्चों के साथ, यही जन्नत का नजारा है हमारे इस घर में। तो इस प्यारी सी पोयम के साथ में आज का शो शुरू करेंगे जो कि हमारे बुजुर्गों के लिए यानी सीनियर सिटीजंस के लिए।
4: बिल्कुल।
3: तो कुछ कहना है अंशिका?
4: कहना ये है कि आज मैं आपको जो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ अभी बताने वाली हूँ वो आज कुछ डिपेंड ऑन सिचुएशन है, यानी कि कहते हैं ना जैसी सिचुएशन होती है वैसी फीलिंग्स आती हैं, फिर वैसी बातें शुरू हो जाती
3: हैं, वैसा गुस्सा भी आता है,
4: और किसी की क्लास भी लग सकती है। तो आज रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कुछ ऐसा ही बताऊंगी जो सिचुएशन से ही डिपेंडेंट है कि कभी भी किसी भी बात को लेकर के हमें बेवजह किसी से उलझना नहीं चाहिए,
3: क्योंकि नारी तो कमजोर नहीं शक्ति का नाम ही नारी है।
4: जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी।
3: एक्चुअली मैंने एक अपनी वो लगाई हुई थी क्या नाम है
4: रील
3: लगाई हुई थी उसपे अपनी स्टेटस पे, उसपे था बड़ी सी अच्छी सी म्यूजिक थी पीछे, उसपे लगाया हुआ था कि सबको अभी माफ करते चलो, सबको अभी माफ करते चलो जब तक तुम गोली न खरीद लो।
4: मतलब
3: जब तक तुम बंदूक न खरीद लो।
4: आई अंडरस्टैंड मैम, वो तो गोली से ही मैं समझ गई थी।
3: ठीक है, तो मैंने स्टेटस लगाया था, मुझे बहुत लोगों का इसमें कमेंट आया था। भाई लिसनर्स आप बताएं मेरा स्टेटस अच्छा था कि नहीं। सबको माफ करते चलो, सबको माफ करते चलो जब तक तुम बंदूक न खरीदो।
4: तब तक, सिर्फ तभी तक।
3: हाँ जी तभी तक,
4: और वरना तो फिर
3: वरना तो बस ठाए ठाए
4: ठाए ठाए
3: दुनिया की ठाए ठाए,
4: और फिर ठाए ठाए में कुछ लोग ठाए ठाए हो जाते हैं।
3: तो चले रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
4: जी बिल्कुल। तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ वाकई यही है कि हमें बेकार की बातों में न उलझते हुए सीधे अपने काम की तरफ जाना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि काम से सिर्फ यहाँ मतलब आपके कार्यस्थल से नहीं है, काम से मतलब कई बार होता है कि हम बेवजह की चीजों में उलझ जाते हैं। मान लीजिए मैम कोई दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ भी बात कर रहे हो, हम बीच में तुरंत अपनी राय देने लगते हैं, अरे ये ऐसे नहीं ऐसे होता, तो उससे क्या मतलब है? उन्होंने आपकी राय मांगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा, आप क्यों बीच में गए, आपने क्यों अपनी बात रखी? कहते हैं कि बात भी तब रखनी चाहिए जब आपसे पूछा जाए या आपसे कहा जाए कि आप भी बताइए, तब वो राय दी जाती है तो उसकी वैल्यू होती है। हमें कभी भी दो लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, वो जैसी भी बात कर रहे हैं जो भी बात कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए ताकि वो चीज ज्यादा फैले नहीं। ये बात
3: ठीक है, हो गया
4: हो गया,
3: ज्ञान बात ली
4: बात ली।
3: अब एक गाने की बारी आती है।
4: हाँ।
3: हेलो लिसनर्स, जिसमें से आशु जी आ गई हैं, हरिचंद सविता जी आ गए हैं और हरिचंद सविता ही आए हैं एंड आशु जी आई हैं एंड आप सभी का स्वागत है। एंड जल्दी से हमारे सभी फीमेल दोस्त सभी लोग जो हैं जल्दी से आ जाइए क्योंकि आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
4: सुन सहेली। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं। स्टेडियम

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88408123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
2: गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता, यानी मैं हूँ आपकी RJ समता
5: और मैं हूँ RJ अंशिका।
4: तो चलिए भाई फटाफट शुरू करते हैं आज की जो कि मेन टॉपिक हमारा है कि बड़े बुजुर्गों में सांस की प्रॉब्लम ज्यादातर पाई जाती है, क्यों अंशिका?
5: बिल्कुल मैम।
4: तो जैसे मतलब स्टार्टिंग पीरियड क्या होता है, जैसे सीढ़ी चढ़ना, दौड़ना, या फिर हाँ खैर बुजुर्ग तो दौड़ते नहीं है लेकिन अगर तेज तेज चलते हैं तो भी उनकी सांस फूलने लगती है, लेकिन और क्या कारण है ये जानेंगे और निवारण मैं बताऊंगी आपको।
5: बिल्कुल, तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले ये कहाँ से शुरू होती है। अगर आपके फेफड़ों में हवा जो है उसका ऑक्सीजन जो है उसका आवागमन ठीक से नहीं होता है तो
4: ऑक्सीजन लेवल
5: ठीक से नहीं होता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
4: जी।
5: जैसे कि अभी मैम ने आपको बताया कि सीढ़ियां चढ़ने से और तेज तेज चलने से क्या होता है, जैसे हांफने लगते हैं, सांस जो है वो फूलने लगती है, ये होता है। इसके कुछ लक्षण भी होते हैं जो धीरे धीरे हमें दिखाई देते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि लगातार कफ जमना।
4: ओके।
5: जैसे मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम है, वायरल है, तो कफ जम रहा है आपको, गले में कफ हो रही है, तो वो आम बात है, सभी को होती है। लेकिन किसी किसी को आपने देखा होगा कि गले में खराश और गले में कफ हमेशा रहती है, वो हमेशा शिकायत करते हैं कि मेरे गले में कफ हो जाती है, मुझे खराश होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक लक्षण है कि आपको धीरे धीरे सांस की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो रही है। और आपके सीने में हमेशा जैसे भारीपन लगना और जकड़न जैसा महसूस होना, अचानक पानी पी लेने पर कभी सीने में दर्द शुरू हो जाना, ये सारे लक्षण कहीं ना कहीं होते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको सांस की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। आइए अब बात करते हैं कि सबसे मेन कारण जो एक आता है वो ये आता है कि कहीं ना कहीं पैसिव स्मोकिंग, यानी कि मान लीजिए आप जैसे स्मोक नहीं भी करते हैं लेकिन उस माहौल में आप रहते हैं कि कोई स्मोक करता है और उसका जो धुआं होता है वो हम भी हील करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी सांसों में भी जाता है। तो कहीं ना कहीं पैसिव स्मोकिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा और सबसे मेन कारण है जिसकी वजह से हमें सांस की प्रॉब्लम हो जाती है।
4: जी।
5: दूसरा होता है प्रदूषण। प्रदूषण यानी कि प्रदूषण तो नॉर्मल है क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो हवा में मौजूद जो भी मिट्टी होती है, धूल होती है, बैक्टीरिया होती है, धुआं होता है, वो आप अपनी सांसों में लेते हैं, यानी कि हम हील करते हैं जिसकी वजह से हमें सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। और घर के बड़े बुजुर्गों में ये ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से ही थोड़ी वीक हो चुकी होती है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि बढ़ती उम्र में जो पावर है बॉडी की वो कम हो जाती है, इस वजह से उन्हें ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरा होता है कि अगर किसी को पहले से ही अस्थमा है, अगर आप इन्हेलर का यूज़ करते हैं और आपको पहले से अस्थमा है तो इसका मतलब है कि आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ज़्यादा एहतियात रखनी
4: की ज़रूरत है। Exactly। और कहा जाता है कि जब सांस की प्रॉब्लम शुरू होती है तो घर में भी डस्ट का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कहते हैं ना कि जब घर में कहते हैं वो झाड़ू लग रही है या फिर आपके रूम में काफ़ी कुछ, जैसे फैन के बाद में भी जैसे लगता है कि डस्ट उड़ रही है, ठीक है, और या फिर डस्टिंग के दौरान, जैसे बहुत से घरों में मैंने देखा है कि लोग ना रूम में बैठे ही रहते हैं और चादर को ऐसे मतलब झाड़ने लगते हैं लोग,
5: जी मैम,
4: ब्लैंकेट को झाड़ने लगते हैं, तो जिन्होंने भी अगर ये प्रॉब्लम होती है तो उनके सामने ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए।
5: बिल्कुल, तो आइए अब बात करते हैं कि ये तो हो गई लक्षण और इसके कुछ कारण, लेकिन धीरे धीरे कई बार ये बीमारी तब भी ज्यादा बढ़ जाती है जब आप इसे इग्नोर करते हैं, इसलिए कभी भी इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए।
4: बिल्कुल,
5: जैसे हमें लक्षण महसूस हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमें दिखाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, अरे छोड़ो ना ठीक हो जाएगा, नॉर्मल एलर्जी है, नॉर्मल इन्फेक्शन है, लेकिन वो धीरे धीरे आपके इग्नोर करते करते ही बढ़ जाती है।
4: ओके,
5: इसीलिए जरूरी है कि हम ध्यान दें। जैसे कुछ बातें होती हैं कि कई बार होता है ना कि जब आप, जैसे ठंडी चीजों से दूर रहना चाहिए, जिस किसी को भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो उन्हें ठंडी चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम ठंडी चीजों को लेते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जिन्हें भी अस्थमा होता है या सांस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है,
4: हाँ,
5: उनकी ठंड में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
4: हाँ, हाँ, हाँ, ये भी मैंने सुना है, हमारे यहाँ भी एक है रिलेटिव, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली,
5: जी मैम, और ठंड में ज्यादा क्यों बढ़ जाती है उसका भी कारण होता है। आपने देखा होगा कि आइसक्रीम, हम अब तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ गर्मियों में आइसक्रीम खाई जाती है, अब तो हम पूरे टाइम खाते हैं, ठंड भी है, अगर हमें लगता है नीड लगती है तो हम खा लेते हैं, उसकी वजह से भी आपको नुकसान होता है। दूसरी चीज होती है कि तेल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्पेशली सरसों का, जिन्हें की ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ज्यादा।
4: मैं अंशिका की बात को ये रोकूंगी, सॉरी अंशिका, लेकिन मैं एक बार बताऊंगी कि एक ना सनफ्लावर का ऑयल आता है, सनफ्लावर ऑयल,
5: जी मैम,
4: तो मुझे लग रहा है कि वो इन जो कि हार्ट पेशेंट, जो क्या कहते हैं, पेशेंट होते हैं या फिर जिनको सांस की, दमा की प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये ऑयल यूज करना चाहिए अपने खाने में।
5: बिल्कुल सही कहा,
4: सनफ्लावर वाला होता है ना ऑयल, वो यूज करना चाहिए।
5: बिल्कुल, और इसी के साथ बहुत ज्यादा फैटी चीजें नहीं खानी,
4: हाँ,
5: चाहिए। अगर आपको सांस की कोई भी मतलब प्रॉब्लम है, नॉर्मल भी सांस फूलती है बहुत ज्यादा, जैसे कि इसमें एक चीज ये होती है कि लोग कहते हैं अरे दो चार सीढ़ी चढ़े हैं तो सांस तो फूलेगी,
4: हाँ,
5: लेकिन ऐसा नहीं। मान लीजिए आप एक बार उतरे और एक बार आप मतलब सीढ़ियां चढ़े और आपकी सांस लगातार 5 मिनट तक फूल ही रही है,
4: हाँ,
5: तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉब्लम है। और तली हुई चीजें जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे कि फेफड़ों को और ज्यादा तकलीफ होती है और सांस की बीमारी बढ़ती है। इसलिए तली हुई चीजों अवॉइड करनी चाहिए, बाहर की ठंडी चीजें अवॉइड करनी चाहिए और बर्फ के टुकड़े अवॉइड करने चाहिए।
4: ओके,
5: मैंने बहुत
4: पानी नहीं पीना चाहिए,
5: बहुत लोगों को मैंने देखा है कोल्ड ड्रिंक में

0: और बढ़ती उम्र में ये ज्यादा परेशान करती है।
1: मेरी भी उम्र बढ़ रही है।
0: ऐसा किसने कहा? किसने कही इतनी जो है ऐसी बात?
1: ऐसी प्यारी सी बात
0: नहीं, प्यारी सी बात,
1: ऐसी गंभीर बात,
0: ऐसी गंभीर बात, ऐसी
1: कुछ लोग
0: थोड़ी गुस्सा दिलाने
1: कुछ लोग तो मेरी जिंदगी में टॉक्सिक लोग हैं ना, जो मुझे बार बार याद दिलाते रहते हैं, आज समता अब आप बड़ी हो गई हैं, आपकी एज इतनी है, ये है वो है,
0: ऐसी चीजें कौन याद दिलाता है?
1: तो ठीक है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एज बड़ी हो रही है, यानी कि मैं किसी की, जब लोग मुझे कहते हैं तुम्हें पता ही है।
0: आई नो
1: यस। तो चलिए यहाँ एक लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आऊंगी मैं इसका निवारण यानी इसके प्रिकॉशन बताने।
0: तो आइए लिसनर्स, चलते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
5: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
0: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं निवारण और बचाव, यानी कि प्रिकॉशन और मैनेजमेंट, क्योंकि वो ऐसी चीज है जैसे कोई भी अगर डिजीज होती है तो आप जब तक आप उसका प्रिकॉशन नहीं करेंगे तब तक वो बढ़ती जाती है, आई थिंक
5: ठीक नहीं होती है, इसलिए प्रिकॉशन करना जरूरी। मैम आपको देख के स्माइल आ गई।
0: नहीं, तुम किसी और बात पे हंसी हो।
5: नहीं वैसे, अच्छा नहीं हंसूंगी।
0: अच्छा हम सोचे
5: नहीं, वो नहीं था मैम, कुछ और सोचे तो हंसी।
0: सांप तो नहीं था तुम्हारे पैर के पास?
5: ये हंसने वाली बात होगी, अगर मेरे पैर के नीचे सांप होता
0: तो मैं गुदगुदी कर रहा हूँ।
5: नारे नहीं, मुझे सांप के साथ।
0: छिपकली के ऊपर पैर रखा है?
5: रखा है, मतलब गलती से पड़ गया, रखा नहीं है,
0: पूरी बॉडी में हो गया।
5: हाँ ये तो होता है।
0: और सांप के ऊपर?
5: नहीं सांप के ऊपर नहीं रखा।
0: हाथ?
5: नहीं भी, वो भी नहीं रखा।
0: मैंने रखा है, मैंने तो प्यार किया है उसको।
5: आप हैं मैम।
0: हाँ मैं तुम्हें
5: और हम हैं।
0: नहीं मैं सांपों से खेल चुकी हूँ एक्चुअली, तो मुझे, मैं खतरों से खेल चुकी हूँ, खेल रही हूँ, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है ऐसा। खैर कम टू द पॉइंट, गर्मी बहुत है, जल्दी जल्दी हम आपसे बात करेंगे कि फेफड़ों को नुकसान हो सकता है, कि बहुत ज्यादा हो सकता है और उसे पूरी तरह ठीक तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन बीमारी को आगे बढ़ने से उसे रोका जा सकता है। प्रीति जी एंड गीता जी, शुभ दोपहरिया।
5: शुभ दोपहरिया प्रीति जी और गीता जी।
0: ये क्या था?
5: मतलब मैंने भी विश कर दिया, वरना वो कहती कि
0: मैम गर्मी में ऐसे
5: तो और कैसे।
0: चलो बड़े
5: बड़े
0: धुएं से दूरी बनाए। तुम सिगरेट तो नहीं पीती हो ना?
5: नहीं।
0: तंबाकू?
5: कुछ भी नहीं।
0: ठीक है, तो तुमको धुएं से दूरी बनानी है।
5: हाँ।
0: बीड़ी सिगरेट तुरंत बंद कर देना। घर में अगर चूल्हा जलता है तो उसकी जगह पर गैस स्टोव का इस्तेमाल करना और वेंटिलेशन अच्छा रखना अपने घर का, ठीक है
5: जी?
0: तो फिर दमे की प्रॉब्लम
5: नहीं होगी।
0: और मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में चूल्हा जलता है तो जिनको भी सांस की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए वो ज्यादा से ज्यादा हानिकारक होता है। एंड दूसरा है कि पल्स ऑक्सीमीटर एंड मेडिकल चेकअप, हर घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए जो समय समय पर ऑक्सीजन लेवल को चेक करता रहे। डॉक्टर की सलाह पर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी, यानी कि PFT जरूर कराते रहना चाहिए। और उसके बाद में दवाइयां और इनहेलर तो आपके पास होने ही चाहिए, यानी कि इनहेलर पंप नियमित रूप से उसका सेवन करते रहना चाहिए, ताकि फेफड़ों की जो नलियां होती है वो तुरंत उन्हें खोल देते हैं और उन्हें साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, ये रहा मेरा पाठ, क्योंकि प्राणायाम आपकी श्वास की गति को, यानी मध्यम से तीव्र, तीव्र से मध्यम गति को बहुत ही आसानी से कर सकता है। नाक से सांस लेकर मुंह को सिकोड़ कर धीरे धीरे सांस को छोड़ना, ये एक इसमें पल्स लिफ्ट फीडिंग ही कहा जाता है, लिफ्टिंग इसको कहा जाता है। एंड टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन जो है वो जरूर से करना चाहिए। बुजुर्गों को हर साल फ्लू वैक्सीनेशन जरूर करना चाहिए, जिसमें डॉक्टर की सलाह पर इमोनिया का टीका भी जरूर लगवाना चाहिए। तो ये कुछ मेरी तरफ से प्रिकॉशन है आप सभी के लिए।
5: बिल्कुल मैम ने अभी जो भी आपको प्रिकॉशंस बताए वो सारे आप करें और अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हम समझते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कई बार बहुत बड़ा वाला इफ़ेक्ट आपके ऊपर छोड़ जाती
0: है। साथ ही साथ में मुझे लगता है अंशिका कि अगर हम घर में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम इस्तेमाल तो करते हैं पर हमें उसका पता नहीं होता है कि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो
5: जी मैम,
0: बाद में पता चलता है कि अरे यार ये तो हम लोग करते रहे और जिसके कारण से इसका
5: साइड इफेक्ट हो गया।
0: तो ऐसा कई बार हुआ है कि हम कुछ चीजों का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हमें उसका सही रूप में पता नहीं चलता है। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर जिनके घर में जो मैंने अभी भी चीजें बताई हैं वो चीजें अगर हैं तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें, जो नहीं है उनको आप लेना शुरू कर दें।
5: बिल्कुल, तो आइए चलिए इन्हीं बातों के साथ चलते हैं लिसनर्स और एक प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं और इस सॉन्ग के उस पार आते हैं लेकर के और भी कुछ बातें। तब तक के लिए सुने और एंजॉय करें। स्टे ट्यून्ड।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
2: गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता, यानी मैं हूँ आपकी आज समता
5: और मैं हूँ RJ अंशिका।
4: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के सीनियर सिटीजन्स को छोड़ करके, यानी कि उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं हमारे कुछ घर के दूसरे सीनियर सिटीजन्स को।
5: दूसरे सीनियर सिटीजन
4: नहीं समझी। दूसरा सीनियर सिटीजन हमारा होता है घर का नन्ना मुन्ना पौधा, जो काफी सालों से हमारे घर में रह करके हमारी देखभाल करता है और हम उसकी देखभाल करते हैं।
5: तो आपने वो
4: कंपैरिजन बिटवीन हमारे जो कि घर के बड़े बुजुर्ग और हमारे पौधे घर के बड़े बुजुर्ग।
5: ओके, यानी कि मैम ने दो बड़े बुजुर्गों को मिला दिया,
4: मिला दिया
5: घर के दो बड़े बुजुर्ग,
4: घर के दो बड़े बुजुर्ग।
5: तो एक पर तो हमने बात कर ली,
4: हाँ, अब हम दूसरे पे बात
5: करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी ने वो सॉन्ग सुना होगा ना, जो है ऋतिक रोशन की मूवी का, आई थिंक कहो ना प्यार का है वो भी,
4: हाँ।
5: कि चूड़ी बिंदी कंगन ये सब पुराने हैं और ताजा ताजा कली खिली है,
4: हम उसके दीवार।
5: हाँ,
4: तो
5: आज कुछ उसी से रिलेटेड है क्योंकि आज हम कलियों की बात करने वाले हैं।
4: अच्छा, हम तो खुश हो गए थे कि ये गाना मेरे लिए है।
5: आपके लिए भी हो सकता
4: नहीं,
5: है
4: कैसे हो सकता है, हम तो बड़े बुजुर्ग है ना, तो मेरे लिए ताजा ताजा कली कैसे खिली।
5: ये तो सोच पर डिपेंड करता है।
4: हाँ, हम सोच लिए हैं क्योंकि ना आगे
5: मैम ने सोच भी लिया।
4: हाँ
5: चलिए, खैर आगे ये कि कई बार आपने देखा होगा कि पौधों में जब कलियां निकलती हैं,
4: हाँ जी,
5: तो वो कलियां टूट जाती हैं,
4: हाँ।
5: मतलब उसमें जो है फूल नहीं निकल पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पौधों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कलियां निकलेंगी तो ही उनसे फूल निकलेंगे।
4: महेंद्र जी प्रणाम, एंड अरविंद जी मनका, अरविंद फ्रॉम मनकापुर जो है वो भी प्रणाम लिख रहे हैं, तो आप दोनों को प्रणाम।
5: तो आइए बात करते हैं कि क्यों ऐसे होता है। तो सबसे पहले ये तब होता है जब मिट्टी में पोटेशियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है।
4: okay.
5: ये दोनों बहुत जरूरी खाद
4: है। अंशिका, मैं आपको रोक रही हूँ अभी
5: जी
4: एक बात के लिए कि मैं ना अभी एक छोटा सा टिप, लेकिन बहुत ही उपयोगी टिप मैं सभी को देने वाली हूँ तुलसी को लेकर के
5: जी।
4: तो मुझे जरूर से रिमाइंड कराना प्लीज।
5: ओके,
4: देखते हैं रिमाइंड कराती हूँ कि नहीं
5: कराती हूँ। तो मैं आपको अभी बता रही थी कि किस तरीके से जो एक हरा भरा पौधा होता है,
4: हाँ।
5: उसमें फास्फोरस की और पोटेशियम की बहुत जरूरत होती,
4: हाँ।
5: है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि क्या हम फास्फोरस और पोटेशियम लेकर के आए और फिर डालें, ऐसा नहीं करना है आपको। घर की जो चीजें आप यूज कर जो चीजें आप यूज करते हैं उसी में होता है, जैसे कि चाय पत्ती बहुत लोग डालते हैं खाद,
4: हाँ।
5: खाद में,
4: हाँ।
5: तो उसमें होता है, आप अगर चाय पत्ती डाल रहे हैं तो इन दोनों ही चीजों की कमी पूरी होती है। एक कारण होता है कि पानी का संतुलन नहीं होता। हम हमेशा आपको बताते हैं कि पौधों में पानी का संतुलन जो है वो बहुत जरूरी होता है।
4: कुछ लोग क्या करते हैं ना कि सुबह उठे जल दिया, हम भी ऐसे करते थे, अब
5: जी
4: करते हैं, अब मतलब पढ़ पढ़ के याद समझ में आ गया और घर में सबको समझा दिया है हमने। पानी उठाएंगे, भगवान जी को तो जल चढ़ाते ही हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, और उसके बाद में पौधों के लिए अलग से लोटे और बाल्टी में पानी लिया और पूरा मतलब इतनी तेज तेज से पानी उसके ऊपर गिराते जाते हैं जैसे लगता है कि क्या ही बताएं। तो भाई ऐसा ना किया करें क्योंकि उसमें भी जान बसती है, और पानी उतना ही दें जितने आपके जो पौधों की जो जड़ें हैं वो सूखी ना रहें। ज्यादा पानी डालने से जड़ें कमजोर हो जाती हैं और जड़ें सड़ने लगती हैं।
5: राइट, बिल्कुल सही कहा मैम ने,
4: हमेशा कहते हैं
5: मैम, हमेशा सही कहती हैं, राइट। तो आइए अब बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में, जो कि ये है कि कई बार धूप की कमी से भी पौधे खराब हो जाते हैं और उनमें कलियां नहीं आती हैं और जो फूल होते हैं वो जल्दी टूटने लगते हैं, यानी बड़े नहीं होते हैं। अब आप सोचेंगे कि धूप की कमी, तो चलो माना कि हाँ धूप दिखानी चाहिए, तो कितना टाइम? तो मैं आपको बता दूं कि सुबह की जो गुनगुनी धूप होती है वो हमें पौधों को जरूर देनी चाहिए।
4: एग्जैक्टली, जो फ्रेश धूप होती है ना सबसे, तो वो थोड़ी सी हल्की होती है और हल्की गुनगुनी होती है। कंपैरिजन जो दोपहर की धूप होती है वो बहुत ही ज्यादा। का बाहर का मौसम बड़ा अच्छा है आज, देखो सुबह इतनी तेज धूप थी ना
5: जी,
4: और अभी जैसे बादल बना है।
5: अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, मतलब मौसम बहुत प्यारा है।
4: हाँ,
5: बारिश हो जाती तो और भी अच्छा।
4: इसमें थोड़ा सा दोलन गुनगुना दूं,
5: नेकी और पूछ पूछ।
4: मौसम है आशिकाना, ये दिल भी दीवाना। क्या हो गया,
5: गाइए मैम आप। अच्छा,
4: गंदा वाला मुंह बनाई तो मैंने।
5: अरे क्या करें, कुछ ऐसी चीजें होती है, तत्व अच्छा। होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं।
4: भाई आप लोग कॉल क्यों करते हैं, जबकि आपको पता है कि 3 बजे से हमारा शो, आपका कॉलर ट्यून गोंडा शुरू होता है, तो अभी आप क्यों कॉल करते हैं? प्लीज ऐसा ना किया, देखिए इतना अच्छा गाना गा रहे थे हम और फिर मैं चुप हो गई। अब मैं नहीं गाऊंगी, चलो
5: अब आप गाइए।
4: नहीं अब नहीं गाएंगे, अब तुम बताओ मुझे आगे पौधों के लिए।
5: अच्छा खासा वो फिर वो जाता है,
4: माहौल बना हुआ था।
5: हाँ
4: कोई बात नहीं, चलो कल गा देंगे।
5: अरे मैम तो हमारी जब गा देंगे ना तब
4: सैटरडे गा देंगे, सैटरडे।
5: हाँ एक सॉन्ग रोज, मतलब हर सैटरडे।
4: हाँ हो गया। चलो कंटिन्यू करें अपने टॉपिक को।
5: और ये वाला जो पॉइंट हमारा है ये है कि कीड़े जब ज्यादा पौधों में लग जाते हैं तब भी ये होता है, इसलिए कीड़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नीम के पानी का छिड़काव आप समय समय पर अपने पौधों में करते रहिए।
4: एक ऑप्शन हम भी बताएं, आप चावल बनाते हैं घर में ना, आपके घर में भी पौधे होंगे अंशिका
5: जी मैम,
4: आप चावल बनाते हैं, चावल को पहले आप भिगो के रखते हैं थोड़ी देर के लिए।
5: हाँ।
4: हम लोग सब लोग भिगो के रखते हैं उसको, धुल मतलब धुलना नहीं, केवल जैसे आपने अपने किसी भी कंटेनर से चावल को निकाला और उसको भिगो के रख दिया, भिगो के मतलब हम तो उसको भिगो के बनाते हैं क्योंकि फिर चावल बिल्कुल व्हाइट व्हाइट बनते हैं। तो क्या करते हैं कि आधा घंटा पहले हम लोग चावल को भिगो देते हैं, उसके बाद हाथ से उस चावल को उसी पानी में मसल देते हैं अच्छे से, मतलब साफ करने के लिए
5: जी।
4: अब वो पानी जो मटमैला हो जाता है ना, वो पानी आप फेंके नहीं, ये पानी दो चीजों में इस्तेमाल होता है। वो पानी आपको पौधों में डालना है, पौधों की ग्रोथ होती है और बहुत ही अच्छे पौधे जैसे पत्तियां निकलती हैं। दूसरा, अगर आपने ये पानी आपने अपने इन पानी से अपने बाल धुल लिए ना, तो आपके बाल भी जो झड़ते हैं ना, वो आपके बाल नहीं झड़ेंगे, रेशमी और मुलायम होंगे।
5: वाह, मतलब एक कहते हैं ना एक तीर से दो शिकार, तो हाँ। कुछ ऐसा ही है कि एक चीज है पर उसके दो फायदे।
4: और आपने वो पानी वैसे भी फालतू वेस्ट फेंकने ही मतलब फेंक ही देना है, तो आप डायरेक्टली आप सिंक में ना फेंकते हुए अगर आपने पौधों में डाल दिया, तो वो पानी जो होता है ना वो आपके पौधों के लिए बहुत अच्छा एक खाद का काम करेगा।
5: बिल्कुल। और सबसे लास्ट जो हमारे पास है वो ये है कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जब मौसम बदल रहा हो तो पौधों पर उसका कैसा असर हो रहा है ये आपको वॉच करते रहना चाहिए। तो आइए इसी के साथ लिसनर्स चलते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग हम सुन लेते हैं।
4: छोटू सा सुनेंगे, छोटू सा गाना, क्योंकि उसके बाद हमारे पास है मोरल स्टोरी, तो बहुत ही छोटे से गाने में आएंगे और अगर नहीं हुआ तो हम उस गाने को स्किप भी कर देंगे क्योंकि हमारा टाइम जो वो पूरा फुल हो चुका है एंड और बस हम यू गए यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी कि मैं हूँ आपकी आरजे समता और मेरे साथ है अंशिका। तो फटाफट आज की मॉरल स्टोरी पढ़ देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अभी टाइम बढ़ रहा है ना, कॉल्स आने शुरू हो जाती है जो कि आप बिल्कुल नहीं सुनते हमारी बात को। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की मॉरल स्टोरी।
4: आज की स्टोरी जो हम आपको बताने वाले हैं वो है रामचंद्रन जी की, जिन्होंने 72 साल की उम्र में लॉ की पढ़ाई शुरू की। 72 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू करने का ये जो नया एक जज्बा था
3: 72 इयर्स में।
4: यस मैम।
3: ओह माय गॉड।
4: 72 साल की उम्र में क्या हुआ कि उनकी पत्नी की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो अकेले रह गए और उनकी लॉ की जो डिग्री थी वो छूट चुकी थी, उनकी पढ़ाई छूट चुकी थी बहुत टाइम पहले। किन्हीं कारणों से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा खालीपन सा लगता था। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि अब वो कुछ कर सकते हैं, तब उन्होंने अपनी पढ़ाई वापस शुरू की। वो बताते हैं कि लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और लॉ की पढ़ाई को पूरा किया। और आज वो बेसहारा लोगों का केस, मतलब वो जो अपना केस कोई भी अफोर्ड,
3: जिनके पास पैसा नहीं होता है,
4: जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनके केसेस लड़ते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं।
3: वाह, मतलब ये होता है कि जैसे कहते हैं ना कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, वैसे पढ़ाई की भी कोई उम्र नहीं होती है और पैसा कमाने की भी कोई उम्र नहीं। तो तीनों पर से फिर आ गया।
4: यस मैम।
3: प्यार, पैसा और पढ़ाई।
4: पढ़ाई।
3: तो भाई आप लोगों से भी यही निवेदन है कि अगर आप लोगों को भी जुनून है पैसा कमाने का, पढ़ाई करने का या फिर प्यार करने का, तो आप इन चीजों को बिल्कुल अपनाएं। और आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे ब्यूटीफुल से डे को, यानी कि कल है फ्राइडे एंड फ्राइडे के दिन हम लेकर के आते हैं बहुत सारी अच्छी चीजों को। तब तक के लिए हम लोग को दें इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब?
4: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
8: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
7: सच में? क्या खास है वहाँ?
8: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
7: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
8: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
7: और फोटोग्राफी वगैरह?
8: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
7: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
8: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
7: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
9: आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा कॉलिंग वाला प्रोग्राम जिसका नाम है कॉलर ट्यून गोंडा और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो कैसे हैं आप सब? फटाफट से बताएं अपना हाल चाल, कैसे हैं, क्या हाल है आप सभी के? और अभी तक अगर मैं चैट बॉक्स की तरफ चलूं तो सिर्फ और सिर्फ रिजु जी ही आए हैं। फटाफट से आप सभी से कहना चाहेंगे कि जो भी हमें सुन रहे हैं वो फटाफट से आए, कॉल करें और अपनी फरमाइश को हम तक ज़रूर से पहुँचाएँ। और इसी के साथ जो हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, उन सभी का स्वागत स्वागत स्वागत तहे दिल से स्वागत करती है आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए लिसनर्स, अब चलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे शो की और चलते हैं सबसे पहली वाली फरमाइश की तरफ। तो सबसे पहली फरमाइश जो कि आज कॉलर ट्यून गोंडा में है वो है देवी प्रसाद जी की। तो आइए सुनते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को और इस सॉन्ग के उस पार मिलती हूँ आपसे। सो सुने और इन्जॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून।
10: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले।

तबले पे जब थाप जमके पड़ेगी, तबले पे जब थाप जमके पड़ेगी, सारे मोहल्ले की धड़कन बढ़ेगी।

आपने जो सॉन्ग सुना वो था देवी प्रसाद जी का। और आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है अगली फरमाइश हमारी है बाबू अंसारी जी की। तो आइए सुनते हैं बाबू अंसारी जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए आप सभी रेडी रहिएगा लिसनर्स, क्योंकि आज है पहेलियों वाला दिन थर्सडे, यानी कि हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पहेलियाँ भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं बाबू अंसारी जी के सॉन्ग को।

गाना दीवाना मैं तेरे लिए, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी बाबू अंसारी जी ने। अब आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ और सुनते हैं अगला सॉन्ग जो कि है रिजू जी का। तो आइए सुनते हैं रिजू जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए सुने इन्जॉय करें और बने रहे अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। और हाँ, कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें, नंबर है 6393316429। तो आइए सुनते हैं रिजू जी के सॉन्ग को।

सॉन्ग के बाद में आइए, अब हाँ बारी है हमारी अगली फरमाइश की, आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली फरमाइश जो कि है, आइए देखते हैं किसकी है। सो हमारी अगली फरमाइश है दीपक जी की, तो आइए सुनते हैं दीपक जी के सॉन्ग को। और दीपक जी के सॉन्ग के बाद आप सभी तैयार रहिएगा क्योंकि मैं आप सभी को आज की पहली पहेली बताने वाली हूँ, देखते हैं कि कौन उसका आंसर दे पाता है। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो कि फरमाइश है दीपक जी की।

साहिबा, ओ साहिबा, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी दीपक जी ने। तो इससे पहले कि हम हमारी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ें, आइए लिसनर्स चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से लिसनर्स हमारे जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले बाबू बनारसी जी, रिजू जी, पप्पू जी जो कि हमें गोंडा से सुनते हैं, अरविंद मौर्या फ्रॉम मनकापुर लिख रहे हैं, हेलो आरजे मैम कैसे हो आप, मैं बहुत अच्छी हूँ अरविंद जी, आप कैसे हैं। और इसी के साथ लिखा जा रहा है हैप्पी विश्वकर्मा डे, जो कि पप्पू जी ने लिखा है, हैप्पी विश्वकर्मा डे आपको भी। और इसी के साथ चल रही है मस्ती बहुत सारी, मुझे ऐसे लग रहा है। तो आइए अब चलते हैं, इसी मस्ती में जुड़ जाते हैं और आपको आपकी पहेली हम पहेली बता देते हैं। तो आज की आपकी जो सबसे पहली पहेली है वो क्या है, ये आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जितना आप मुझे आगे बढ़ाते हैं उतना ही आप पीछे छोड़ते जाते हैं, बताओ मैं कौन हूँ।

लगता है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है रमेश कुमार जी की। तो आइए सुनते हैं रमेश कुमार जी के सॉन्ग को, और अभी तक मुझे मेरी पहेली का जवाब जो है वो नहीं मिला है, तो फटाफट से लिसनर्स कम ऑन, सोचिए सोचिए और फटाफट पहेली का जवाब चैट बॉक्स में दीजिए। और अरविंद जी आपको मैं बता दूं कि परछाई इसका आंसर नहीं है, तो सोचें सोचें सोचें, थोड़ा सा और सोचने की कोशिश करें और इसका जवाब ज़रूर दें। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है रमेश कुमार जी की।

बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और आइए वो लाल दुपट्टे वाली, तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं सीधा चैट बॉक्स में, क्योंकि हमें हमारी पहेली का जवाब मिल चुका है जो कि अरविंद फ्रॉम मनकापुर, कदम के निशान। बिल्कुल सही जवाब है अरविंद जी। और इसी के साथ धर्मेंद्र मोहन जी जो कि हमें आवाज़ विकास से सुनते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाजिया अंसारी जी, रोशनी रावत जी, और ओके, तो इतने ही लिसनर्स हैं हमारे साथ। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ जो कि है अरविंद जी का। तो आइए सुनते हैं अरविंद मौर्या जी के सॉन्ग को। स्टे ट्यून्ड।

प्यार किया क्यों दिल दिया, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी अरविंद जी की। अब आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो कि है धर्मेंद्र मोहन जी की। तो आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ इस सॉन्ग के उस पार आप सभी को अगली पहेली के साथ और देखते हैं कि कौन दे पाता है हमारी अगली पहेली का जवाब। तो आप सभी अगली पहेली का इंतजार करें और सुने ये प्यारा सा सॉन्ग जो कि है धर्मेंद्र मोहन जी का।

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग ऐसा जख्म दिया है। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश किसकी होने वाली है। तो हमारी अगली फरमाइश होने वाली है मिश्रा ऑप्टिकल जी की, लेकिन उससे पहले बारी है आपकी अगली पहेली की। तो आपको मैं अगली पहेली बता देती हूँ, जो कि आपकी अगली पहेली है, मुझे छूने से तुम टूट सकते हो, मुझे छूने से तुम टूट सकते हो, लेकिन अगर मुझे थाम कर रखो तो मैं तुम्हें दुनिया की हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता हूँ। मुझे छूने से तुम टूट सकते हो, लेकिन अगर मुझे थाम कर रखो तो मैं तुम्हें दुनिया की हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता हूँ। तो आप सभी को बताना है इस पहेली का जवाब, और देखते हैं कि इस बार हमारी इस पहेली का जवाब हमारे कौन से लिसनर देते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है मिश्रा ऑप्टिकल जी की। आइए सुनते हैं मिश्रा ऑप्टिकल जी के सॉन्ग को।

का राजा बन गया तू मेरे दिल की रानी, दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी मिश्रा ऑप्टिकल जी ने। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो की है सुरेश कुमार जी की, तो आइए सुनते हैं सुरेश कुमार जी के सॉन्ग को।

भूल तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी सुरेश जी ने। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है आदर्श सोनी जी की। तो आइए सुनते हैं आदर्श जी के सॉन्ग को।

अभी आपने जो सॉन्ग सुना उसकी फरमाइश की थी, और मुझे लगता है कि इस गाने की फरमाइश जो की थी वो की थी आदर्श जी ने। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है जूही जी की। तो आइए सुनते हैं जूही जी के सॉन्ग को, और इसी के साथ में महेंद्र जी आ चुके हैं जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, नमस्ते आरजे अंशिका मैम, नमस्ते, कैसे हैं आप महेंद्र जी। और चलिए अब मुझे लगता है कि मैंने जो पहेली बताई थी वो मुझे फिर से बता देनी चाहिए, तो आप सभी ध्यान से पहेली सुने कि मुझे छूने से तुम टूट सकते हो, मुझे छूने से तुम टूट सकते हो, लेकिन अगर मुझे थामे रखो तो मैं तुम्हें दुनिया की हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता हूँ। मुझे छूने से तुम टूट सकते हो, लेकिन अगर मुझे थाम कर रखो तो मैं तुम्हें दुनिया की हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता हूँ। ये है आपकी पहेली, और देखते हैं कि हमारे कौन से लिसनर इसका जवाब देते हैं। तब तक के लिए आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है जूही जी की। आइए सुन लेते हैं जूही जी के सॉन्ग को।

सफर मिल गया, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी जूही जी की। और आइए इससे पहले कि हम हमारी अगली फरमाइश की तरफ बढ़े, चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारी पहेली का जो आंसर है वो किसने किसने दिया है। तो अरविंद फ्रॉम मनकापुर लिख रहे हैं मिरर हो सकता है, बिल्कुल नहीं अरविंद जी, मिरर नहीं है। महेंद्र जी भी लिख रहे हैं शीशा या फिर कसम, तो मैं बता दूँ शीशा और कसम भी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि है उम्मीद। इसका आंसर है उम्मीद और हौसला, यानी कि अगर मुझे तुम छूने से मैं टूट सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे थाम कर रखो तो मैं तुम्हें दुनिया पूरी हर मुश्किल से जिता सकती हूँ, जो कि होती है आपकी उम्मीद और आपका हौसला, जिसका अगर आप हाथ थाम कर रखें तो वो आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई इज़ द बेस्ट ट्राई, तो मैं आपको अगली पहेली जल्द ही बताऊँगी, लेकिन उससे पहले आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है हानिया खान जी की। तो आइए सुन लेते हैं हानिया खान जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ इस सॉन्ग के उस पार अगली पहेली के साथ। आप सभी रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा।

0: जचते हैं देखो,
1: बिल्कुल जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, छोटे छोटे भाइयों के, छोटे भाइयों के बड़े भैया। तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है महेंद्र जी की। तो आइए सुन लेते हैं महेंद्र जी के सॉन्ग को, और इस सॉन्ग के साथ ही मैं आपकी अगली पहेली लेकर भी हाजिर हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आपकी अगली पहेली है, मैं वैसी ही दिखती हूँ जैसे आप मुझे देखते हैं, मैं वैसी ही दिखती हूँ जैसे आप मुझे देखते हैं, पर अगर आप मुझे दूसरों से बांटोगे तो मैं आपके पास दोगुनी होकर वापस आऊँगी। मैं वैसी ही दिखती हूँ जैसे आप मुझे देखते हैं, पर अगर आप मुझे दूसरों से बांटोगे तो मैं आपके पास दोगुनी होकर वापस आऊँगी। ये है आपकी लास्ट वाली पहेली। तो देखते हैं कि कौन इसका जवाब दे पाता है, हमारा कौन सा लिसनर। तब तक के लिए आइए सुनते हैं महेंद्र जी के सॉन्ग को। आप सभी बने रहिए आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम क्वालिटी उन गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

ना आए सजना तेरे बिना, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि जुदाई मूवी का, जिसकी फरमाइश की थी महेंद्र जी ने। तो आइए अब चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन से लिसनर हैं जिन्होंने हमारी पहेली का आंसर दे दिया है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि महेंद्र जी ने, जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, उन्होंने एक पहेली भेजी थी कि मैम एक पहेली मेरे पास भी है, बिना पैरों के चलता हूँ, बिना पंख के उड़ता हूँ, मेरी आवाज़ नहीं है फिर भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, बताओ कौन हूँ मैं। तो भाई आप सभी इसका आंसर ज़रूर दीजिए। और इसी के साथ धर्मेंद्र मोहन जी जो कि हमें आवाज़ विकास से सुनते हैं, नाजिया अंसारी जी, अरविंद जी और विकास तिवारी जी, अगेन नाजिया अंसारी जी हैं हमारे साथ। और इसी के साथ में जो आंसर है वो भेजा है नाजिया अंसारी जी ने, सबसे पहले पढ़ाई। नहीं नाजिया जी, पढ़ाई नहीं है। और इसी के साथ महेंद्र जी ने भेजा है धोखा या खुशी। तो मैं बता दूं महेंद्र जी की इस पहेली का आंसर है खुशी। और इसी के साथ गीता श्रीवास्तव जी भी आ चुकी हैं। हेलो गीता जी, कैसे हैं आप, जो कि लिख रही हैं कि परछाई इसका आंसर हो सकता है। सॉरी गीता जी, इसका आंसर परछाई नहीं है। और इसी के साथ में हमारे साथ आप सभी ही जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं महेंद्र जी, थैंक यू सो मच मैम, यू वेलकम महेंद्र जी। तो आइए अब इसी के साथ हमारा जो टाइम है वो भी होने वाला है, लेकिन जाते जाते हम आपको हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली फरमाइश सुना देते हैं, जो कि है शुभम जी की। शुभम जी का सॉन्ग है नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

सकता कि तेरी याद ना आए। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसी प्यारे से सॉन्ग के लिए आज के लिए मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए लिसनर्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और रेडियो ज्ञानसली 89.6 FM को सुनते रहिए। और थैंक यू सो मच आप सभी का क्वालिटी उन गोंडा में मेरे साथ बने रहने के लिए। बाय बाय।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9286 9816 9 81 9 76। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: हेलो एवरीवन, वक्त हो चला है शाम होने का। शाम मतलब आज का हमारा थर्सडे स्पेशल, आपका अपना खेत खलियान शो, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की। और आज हमारे बीच बतौर एक्सपर्ट मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह जी और हमारे को होस्ट इरफान शाह जी। पहले तो हम वेलकम करेंगे इन दोनों का, नमस्कार दोस्तों।
2: तो हमारे श्रोताओं को नमस्कार, हमारा
3: नमस्कार मैम, और श्रोताओं को भी नमस्कार।
2: तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोधूली, और गोधूली कार्यक्रम में आज हम लोग बातचीत करेंगे खेत खलिहान, यानी खेत खलिहान कार्यक्रम हर बृहस्पतिवार को हम लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं, क्योंकि किसी दिन हमारे साथ साइंटिस्ट होते हैं, तो किसी दिन हमारे साथ किसान होते हैं, तो किसी दिन हमारे साथ विद्यार्थी होते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ PhD स्कॉलर हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि एक PhD स्कॉलर हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि सर आप अपने बारे में बताएं, और कहां से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, और आप इस क्षेत्र में कैसे आए, आप अपने बारे में कुछ बताएं।
3: सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और हमारे किसान भाइयों को नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सिंह, पिताजी का नाम श्री लाल साहब सिंह, ग्राम ऑफिस भिटौरा मनकापुर का रहने वाला हूँ। मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो मेरी BSc की जो मेरी शिक्षा है वो आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय से हुई है, जो कि कुमारगंज अयोध्या में है। मेरी MSc की भी पढ़ाई आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय से ही हुई है, और मैं अभी PhD शोध छात्र हूँ, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से कर रहा हूँ।
2: तो आपने सर ये बताया अपनी पढ़ाई लिखाई की जर्नी की, अब आप ये बताइए कि इसको ही क्यों आपने चुना, और क्षेत्र था?
3: शुरू से ही पापा जी हैं या बाबा थे, सब लोग घर से शुरू से ही खेती करते हैं। फार्मर बैकग्राउंड हमारा, मतलब जो बैकग्राउंड हमारा है वो खेती ही है, इसलिए कृषि में थोड़ा रुचि था, इसलिए हमने कृषि विषय चुना।
2: मतलब कहने का मतलब है कि फैमिली जो हमारी थी वो कृषि से जुड़ी थी, और हमें कृषि में ही मतलब आना पड़ा। और कोई चीज़ होता है, छोटा बड़ा काम नहीं होता है, बस उसको करने के लिए हमारे पास हौसला होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है। अब सर आज हम लोग जो बात करेंगे वो कद्दू वर्गीय फसलों का प्रबंधन एवं उत्पादन बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जो हमारे यहाँ गोंडा में अवध में जो है सब्जी की भी खेती होती है, गन्ने की भी खेती होती है, धान की और गन्ना की। तो हम जानना चाहेंगे कि कद्दू वर्गीय फसलों से उसका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन क्या है, इस विषय पर जानकारी दें सर।
3: सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को नमस्कार कहता हूँ, और नारी ज्ञान स्थली का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे और आपके माध्यम से किसान भाइयों के बीच यथासंभव सही बातें पहुँचाने का काम कर रहा है। आज आप सभी ने विषय बहुत अच्छा चुना है, कद्दू वर्गीय फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आज हम ये देखेंगे कि उत्पादन में हम क्या क्या चीज़ें सुधार कर सकते हैं, और क्या क्या प्रबंधन करके हम अपने फसल उत्पादन को और बेहतर कर सकते हैं।
2: कद्दू वर्गीय फसलों की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं?
3: कद्दू वर्गीय फसलों की प्रमुख प्रजातियां जैसे कद्दू हो गया, लौकी, खीरा, परवल, तुरई, नुआ, करेला, पेठा, तरबूज, खरबूज आदि फसलें इसमें कद्दू वर्गीय फसलों में लगाई जाती हैं।
2: आपने कहा कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, अब अगर किसान भाई अगर इसकी बुआई कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, और खेत की तैयारी जो है वो कैसे करें?
3: किसान भाइयों को सबसे पहले तो अपना जो खेत की तैयारी करें वही शुरुआती दिशा और दशा होती है खेती की। तो मिट्टी का जो PH मान होता है वो लगभग 6 से 7.5 तक होना चाहिए। PH मान का मतलब ये हुआ कि एक PH पैरामीटर है, 0 से 14 तक इसकी एक स्केल होती है, जो कि मिट्टी की जांच जब कराएंगे तो पता चलती है। अगर 7 से नीचे है तो मिट्टी हमारी अम्लीय होती है, और अगर PH 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होती है। दूसरी चीज़ है कि जल निकास एकदम से अच्छी रखें अपने खेत से, जल भराव ना होने पाए, और जैविक पदार्थों का खेत में उर्वरता अच्छी होनी चाहिए। खेत की तैयारी के लिए क्या है, गहरी जुताई करें, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करें, और 20 से 25 जुताई के साथ ही 20 से 25 टन गोबर की खाद डालें और कतार एवं पंक्ति में बुआई करें ताकि लता फैलने में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो सारी लताएं जब आपस में मिल जाएंगी फैल के तो उससे उत्पादन पे बहुत प्रभाव पड़ेगा।
2: जी, मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमें सही से और समय पे बुआई करना है। आप जानना चाहेंगे कि कद्दू वर्गीय फसलों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है?
3: सैंडी सॉइल होती है हमारी, जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, ये सबसे अच्छी मिट्टी होती है कद्दू वर्गियों के लिए, ताकि इसकी जड़ें, जैसे कोई भी फसल है, जितनी अच्छी उसके जड़ का ग्रोथ होगा उतनी अच्छी फसल का ही भी ग्रोथ होगा और उतना ही अच्छा हमारा उत्पादन होगा।
2: जी, उससे जानना चाहेंगे कि इन फसलों की बुआई का जो समय है वो समय क्या है और किस समय में हमारे किसान भाई बहन इसकी बुआई करें कि जिससे उनको अच्छा उत्पादन मिले और अच्छी फसल उनका जो है वो अच्छा हो सके।
3: देखिए, कद्दू वर्गीय फसल जो गर्मी गर्म मौसम की फसलें होती हैं, इनको हम जनवरी के लास्ट से और फरवरी माह के अंत तक बुआई कर देना चाहिए ताकि हमें मार्च और अप्रैल में, इससे अप्रैल तक मतलब फल मिल जाएं। और जो हमारी वर्षा मौसम होती है ये जून और जुलाई में, इसकी हमें जब भी वर्षा मौसम हमारा आएगा जून और जुलाई में, इसकी हमें स्विंग कर देनी चाहिए।
2: जी, अब सर अगर बुआई कर रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
3: जैसे बुआई कर रहे हैं आप तो सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि आपकी जो मिट्टी है उसमें भू परिष्करण जो क्रिया होती है वो बहुत अच्छी से की जानी चाहिए। जो आप गोबर का खाद डाले हैं वो जुताई से पहले डाल दीजिए ताकि जुताई करते टाइम पूरे खेत में मिल जाए, ताकि हमारी जो फसल हम लगाएं उसका जो पोषक तत्व है वो फसलें आराम से ले सकें।
2: जी, तो आप सर जानना चाहेंगे कि बीज उपचार कैसे हमारे किसान भाई बहन करें?
3: बीज उपचार जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है कोई भी फसल लगाने से पहले, तो जैसे हम एक फंजीसाइड से भी बीज उपचार करते हैं और इंसेक्टिसाइड से भी बीज उपचार करते हैं। फंजीसाइड का मतलब हो गया कि जो हम कवकनाशी का उपयोग करते हैं, जैसे हम थीरम का उपयोग करते हैं, तो थीरम की मात्रा जो होनी चाहिए वो 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम उपयोग करना चाहिए। और अगर थीरम नहीं मिल पा रहा है तो आप कैप्टान की आती है एक दवा, वो भी आप 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज इसका आप प्रयोग कर सकते हैं।
2: जी,
3: प्रयोग करने से पहले आप क्या करेंगे कि बीज को आप हल्का गीला करेंगे। अच्छा, बीज हल्का का गीला नहीं करेंगे आप, तो अगर आप 2.5 से 3 ग्राम अगर दवा डाल रहे हैं तो वो दवा पूरे बीज में अच्छे से मिल ही नहीं पाएगी। और जब अगर बीज हम हल्का गीला कर लिए रहेंगे तो 3 ग्राम दवा जो हमारी है वो बहुत अच्छे से पूरे बीज में मिल जाएगी। दूसरा है इंसेक्टिसाइड, अगर हम यूज करते हैं तो इमेडाक्लोरोपिड आता है 70WP के नाम से, तो इसका हम 4 ग्राम लगभग प्रति किलो सीड वैक्स के हिसाब से उपयोग करते हैं। और अगर हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए हम कुछ सावधानियाँ भी बरतेंगे, जैसे दवा की मात्रा जितना बताया गया है उतना ही प्रयोग करें, क्योंकि शाह जी आपने सुना होगा कि 2,4-D एक दवा आती है जो कि बीड के लिए आती है, खरपतवार के लिए। अगर उसी दवा का उपयोग हम 20 PPM से नीचे करते हैं तो वो दवा हमारी एक ग्रोथ रेगुलेटर के हिसाब से काम करती है, लेकिन अगर हम 20 PPM से ऊपर दवा का प्रयोग करेंगे तो वो हमारी खरपतवार नाशी के हिसाब से काम करेगी। तो जो दवा का मात्रा मैं आपको बताया हूँ अगर इसी मात्रा में उपयोग करेंगे तो दवा अच्छे से काम करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि उपचारित जो बीज है उसको बच्चों से दूर रखिए, बच्चों के साथ साथ पशुओं से भी दूर रखिए। और जो हमारे घर की खाद्य सामग्री है, जैसे कि आपका बीज जो उपचारित कर लिए हैं और भी बीज रखा है, आप ध्यान नहीं दे दोनों बीज मिल गया, और अगर आप खाने के लिए उसका उपयोग कर लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए आप एकदम से इसको कहीं अलग जगह रखें। और बीज उपचारित करने के बाद बीज को अच्छे से सुखा लें, छाये में, धूप में नहीं सुखाना है, छाये में सुखाना है, और छाये में सुखाने के बाद इसकी बुआई तुरंत करवा दें।
2: तो अवसर हो गया बीज उपचार एवं कैसे करें और कौन कौन सी दवा करें। कभी कभी देखा गया है कि बीज उपचार करते समय हमारे किसान भाई बहन कुछ जैविक खादों का उपयोग करते हैं, तो क्या ये सर सही है? मतलब
3: जैसे जो हम बीज उपचार अगर जैविक तरीके से करते हैं तो 5 ग्राम ट्राइकोगर्मा 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित करते हैं, और अगर कोई दवा नहीं मिल पा रही है तो हम पानी में 20% गौमूत्र मिला के 12 घंटे के लिए बीज को भिगो देंगे तो उससे भी बीज के जो इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड जनित बीमारी हैं ये दूर हो जाते हैं
2: जी। अब सर जानना चाहेंगे कि पौधशाला नर्सरी की तो तैयारी है वो कैसे हमारे किसान भाई बहन करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है पौधशाला जो है नर्सरी जो है वो डालना।
3: जी ये बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि नर्सरी, देखिए जैसे अगर नर्सरी देखा जाए तो टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गया, इन फसलों की नर्सरी तो किसान करता है, लेकिन अभी अपने गोंडा में देखा जाए या अगल बगल तो जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं इनका नर्सरी का प्रचलन बहुत कम है। तो अगर नर्सरी का प्रचलन कम है यानी किसान को जानकारी का अभाव है थोड़ा सा, अगर नर्सरी का उपयोग करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या है पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोई क्रॉप है आपकी, जैसे आप कद्दू या लौकी लगा रहे हैं, मान लीजिए कद्दू वर्गीय जो आती हैं, आपको ये लगाना है जनवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट तक लगाना, जनवरी के लास्ट से फरवरी के लास्ट तक, तो आप क्या करिए एक पोर्ट्रे आता है जी। जो कि आप किसी भी बीज की दुकान पर जाएंगे तो बहुत सस्ता 30-40 रुपए का आ जाएगा
2: जी।
3: तो लगभग एक पोर्ट्रे में 30 सीडलिंग तैयार हो जाएंगे यानी आपके 30 पौधे तैयार हो जाएंगे। तो उससे फ़ायदा आपको क्या रहेगा कि अगर आप पोर्ट्रे में तैयार करेंगे तो एक छायेदार कमरे में आप उसको जो फसल आपको लगाना है, जैसे हमें लगाना है 15 फरवरी को, तो हम 15 से 20 दिन पहले उस पौध को तैयार कर सकते हैं छायेदार कमरे में। या अगर हमें गर्मी में लगाना है कोई तो छायेदार कमरे में अगर लगाएंगे तो पौध को नुकसान भी नहीं होगा और पौध बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि हम अन्य किसानों से 20 दिन हम जल्दी अपना पौध तैयार कर रहे हैं। अगर हम अभी 20 दिन जल्दी कर रहे हैं तो हम मार्केट में भी 20 दिन जल्दी पहुंचेंगे उन किसानों से, तो इससे हमारा उत्पादन तो अच्छा होगा ही, हमें मार्केट में रेट बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगर सारे किसान मार्केट में एक साथ आ गए तो उससे क्या होगा कि हमें रेट अच्छा बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, तो हमारी लागत जो है ज़्यादा लग जाएगी और जो हमें पैसा आना चाहिए मार्केट से वो कम आएगा। तो नर्सरी के लिए क्या करें कि जो आपको पोर्ट्रे लेंगे उसमें तीन चीज़ मिलाना रहता है, एक कोकोपीट आता है और बर्मी कोलाइट और परलाइट, इनका अनुपात जो होता है 3:1:1 होना चाहिए जी। जैसे कि अगर जिस पात्र से आप इसको निकाल रहे हैं उस पात्र से 3 गुना ज़्यादा रहेगा आपका बर्लाइट और परमिकुलाइट से 3 गुना ज़्यादा आपका कोकोपीट रहेगा। ये बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं। कोकोपीट का मतलब ये होता है कि जो आप देखे होंगे कि जो ठेले पे ये नारियल बेचते हैं
2: जी।
3: तो इसी का जो छिलका रहता है उसी का हम मशीन से रिफाइन कर लेते हैं बहुत बारीक। तो इससे क्या होता है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है यानी जल जो रोकने की क्षमता होती है कोकोपीट में मिट्टी से कई गुना ज़्यादा होती है। तो अगर हम बहुत हल्की भी पानी का बौछार डाल देंगे उस पर या फुहारा डालेंगे हजारा से तो काफ़ी दिन तक हमारा अच्छा चलता रहेगा। उसके बाद लगाने के बाद जैसे ही 4-5 दिन बाद हमारे सीडलिंग आ जाएँ तो उसके बाद क्या करें आप लगभग 1-1.5 हफ्ते बाद 19-19-19 का एक स्प्रे आता है NPK का यानी नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का, मार्केट में 19-19 के नाम से स्प्रे आता है, तो उसको आप स्प्रे कर दें ताकि जो पोषक तत्व है वो भी हमारे नर्सरी को अच्छा मिलता रहे। और बीच में क्या करें लगभग अगर कोई दिक्कत आ रही फसलों पे जैसे नर्सरी पे कोई कीड़ा हल्का आ रहा है या नर्सरी को हमारे नुकसान पहुँचा रहा है तो उसके लिए आप क्या करें नीम ऑयल आता है जो कि बहुत सस्ता आता है, महंगा नहीं बिल्कुल, उसको 1000 से 1500 PPM पे स्प्रे करें। 1500 PPM का मतलब ये हुआ कि लगभग 1 से 1.5 ग्राम नीम ऑयल लें 1 लीटर पानी में और उसको जो छोटा सा स्प्रे आता है उससे पौध पे स्प्रे कर दें ताकि नर्सरी हमारी स्वस्थ रहे और पौधे भी अच्छे रहें ताकि उत्पादन अच्छा हो सके।
1: अभी तक आप सभी ने सुना कि हमारे इरफान शाह जी ने हमारे एक्सपर्ट से इतने सारे सवाल पूछे जिनका उन्होंने बखूबी जवाब भी दिया। अब मैं चाहूंगी कि क्यों ना एक शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक हो जाए यहाँ।

तदुम तदुम तद

0: डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260-981-976 9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा,
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं थर्सडे स्पेशल खेत खलिहान, और आज हमारे साथ में बतौर एक्सपर्ट हैं हमारे धर्मेंद्र सिंह जी। तो धर्मेंद्र सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कद्दू वर्गीय फसलों के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी है?
5: जी मैम, बिल्कुल। तो जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं, इनमें कई फसलें आती हैं, तो मैं फसलों के हिसाब से इसकी किस्में बता रहा हूँ। तो किसान भाई इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि उन्हें इसका बीज लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे हम लोग खीरे की फसल लगाते हैं, तो खीरे के लिए एक पूसा उदय के नाम से वैरायटी आती है, दूसरी है कल्याणपुर ग्रीन, तीसरा है पंत खीरा 1, पंत खीरा 2, पंत खीरा 3, एक आता है पूसा बरखा, जो कि वर्षा ऋतु के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। दूसरा हमारी फसल है पंपकिन यानी कद्दू, तो इसके लिए एक पूसा विश्वास के नाम से वैरायटी आती है, पूसा हाइब्रिड 1 आती है, काशी हरित आती है, जो कि एक काशी हरित वैरायटी हमारे यूपी में वाराणसी में IIBR एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है सब्जी विज्ञान का, वहाँ से निकाली गई है वैरायटी। और अगली वैरायटी है नरेंद्र अग्रिम। नरेंद्र अग्रिम हमारी जो विश्वविद्यालय है कुमारगंज में, नरेंद्र देव जी के नाम से, वहाँ से वैरायटी निकली है। फिर हम लौकी की फसल लगाते हैं, तो लौकी की प्रजातियाँ हैं ऐसी, पूसा नबीन, पंजाब कोमल, काशी गंगा, अर्का बहार और नरेंद्र लौकी 1। तो ये जो प्रजातियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रजातियाँ उत्पादन में भी बहुत अच्छी हैं और मार्केट के हिसाब से भी बहुत अच्छी हैं। अगली प्रजातियाँ बताएंगे करेले की। तो करेले की जो प्रजाति है पूसा 2 मौसमी, ये दोनों मौसम में लग जाती है, पूसा हाइब्रिड 1 और पूसा हाइब्रिड 2। कल्याणपुर 12 मासी, जो कि ये चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वैरायटी है, जो कि हमेशा लगती है। कल्याणपुर सोना, ये वैरायटी भी हमारी यूनिवर्सिटी की है। अर्का हरित हो गई। इसी हिसाब से हम लगाते हैं परवल, तो परवल की वैरायटी है राजेंद्र परवल 1। जैसे कि कुछ वैरायटियां हम ऐसी बता रहे हैं, किसान भाई हमारा फल तो तोड़ लेते हैं और मार्केट ले जाने में उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो ये राजेंद्र परवल जो वैरायटी है ये लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी दूरी अगर ले जाना है तो भी ये वैरायटी अच्छी रहती है। जी जी। दूसरी वैरायटी है काशी अलंकार, उसके बाद आती है नरेंद्र परवल 260, 307 और 604। ये मुख्य कुछ किस्में हैं जो हमने आपको बताई, किसान भाई इसको नोट कर लें ताकि उन्हें बीज लेने में कोई दिक्कत ना हो।
4: ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन मेरे जहन में एक और

0: सवाल है, कहिए तो आपसे पूछे।
1: जी बिल्कुल
0: जी, आपने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी लाभदायक फसलें और उसकी प्रजातियां बताई, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कई लोग हैं जो शुगर से मतलब ग्रसित हैं, तो हमारे घर में अगर हम गार्डनिंग करना चाहें तो उस दौरान हम किस तरह की किस्म का करेला लगाएं, और या फिर हमें कई दफ़ा होता है कि हमारे पसंद में आता है खीरा, या फिर हम बहुत लोग लेडीज ही हैं, चूँकि हम एक महिला हैं तो हम लोग डाइटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, तो ऐसे खीरे की कौन सी प्रजाति हो जो हम घर में गार्डनिंग के दौरान उगा सकते।
1: गार्डनिंग के दौरान जैसे मैं आपको बताया था, एक वैरायटी पूसा उदय
0: जी,
1: ये वैरायटी ओपन फील्ड में भी बहुत अच्छी हो जाती है, और अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में करना चाहे तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है। कल्याणपुर ग्रीन भी बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर इन वैरायटियों को लगाएंगे आप, चाहे किचन गार्डन में लगाएं और चाहे ओपन फील्ड में लगाएं, ये बहुत अच्छा ग्रो करती हैं।
0: और करेला,
1: करेले के लिए पूसा दो मौसमी आप लगा सकती हैं, और कल्याणपुर बारहमासी, जो कि अगर ये वैरायटी आप लगाएंगी तो ये हमेशा आपको फल देती रहेंगी।
0: ओके, अच्छा कई दफा होता है सर कि हम मतलब उगा लेते हैं घर में गार्डन में, फिर भी हमारी करेले जो होते हैं वो मतलब उग भी आते हैं, फल नहीं आते उसमें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: फलों के लिए दिक्कत ये है मैम कि जैसे हमने भी बताया था कि जो एक तो गर्मी की फसलें हो गई
0: जी,
1: दूसरी वर्षा ऋतु वाली फसलें हो गई हैं, तो इनमें क्या होता है कि अगर हम फसल जैसे जो जनवरी फरवरी में लगाना था हमको, अगर वो फसल हम मार्च में लगा रहे हैं, थोड़ा लेट कर दे रहे हैं, तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये कद्दू वर्गीय की खास विशेषता है कि अगर तापमान जितना बढ़ेगा उसका जो नर फूल होता है उनकी संख्या ज़्यादा आएगी, मादा फूल बहुत कम आते हैं, और अगर आते भी हैं तो उतने स्वस्थ नहीं रहते हैं, इससे उनमें पॉलिनेशन जो परागण होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए ये फूल हमारे टूट के आप वैसे ही निकल जाते हैं।
0: इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा अच्छा मौसम अगर हम माने कद्दू वर्गीय फसलों के लिए तो उसको गर्मी मान सकते हैं?
1: जी ऐसा नहीं है, दोनों मौसमों की फसलें हमारी बहुत अच्छी होती हैं, चाहे गर्मी की फसलें हों चाहे वर्षा ऋतु की फसलें हों। एक काम आप और कर सकते हैं, अगर फूल गिरने या ज़्यादा झड़े तो 0.2% यानी 0.2% बोरान का स्प्रे कर दें, तो उससे जो हमारे फूल हैं वो कम गिरते हैं।
0: अब एक नेक्स्ट वाला सवाल आपसे हम करेंगे कि पौधों की आपसी दूरी कितना रखनी चाहिए हमें पौधे लगाते वक्त?
1: मैम पौधों की दूरी जैसे हम दो प्रकार की वैरायटियां मार्केट में आती हैं, एक तो सेल्फ पॉलिनेटेड आती है और एक हाइब्रिड वैरायटी आती है। तो जो सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी आती हैं उनकी दूरी हम थोड़ी कम रखते हैं हाइब्रिड से, जैसे कि पौधे से पौधे की दूरी हम 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं या 75 सेंटीमीटर तक रखते हैं, और जो क्यारी की पंक्ति की दूरी होती है वो हम रखते हैं 2 मीटर या 2.5 मीटर, और जो हमारी हाइब्रिड होती है उसका हम 75 से 90 सेंटीमीटर तक पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वो हम 3 मीटर तक रखते हैं। अच्छा दूरी कम रखेंगे अगर पंक्ति से पंक्ति की तो लताएं आपस में उलझ के रह जाएंगी, जैसे पौधों को आप समझ लीजिए कि ह्यूमन, जैसे अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाए तो हम लोग को सफोकेशन होने लगता है, एकदम से वहाँ से उब जाते हैं, तो वैसे पौधों का भी है, अगर लताएं आपस में उलझ गईं तो एकदम से उनका उत्पादन घट जाता है, तो इसलिए अगर हम स्पेसिंग अच्छी रखेंगे तो उत्पादन भी अच्छा होगा और पौधों की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी।
0: मतलब ये नाराजगी खाली हम इंसानों में ही नहीं है, पौधों में भी पाई जाती है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, तो अभी हमको तो लग रहा है इरफान शाह जी के मन में भी अभी काफी सवाल हैं इन आज के मतलब कद्दू वर्गीय फसलों को लेके, क्योंकि उनकी शक्ल पे साफ साफ उनकी जिज्ञासा झलक रही है, तो अब बाकी के सवाल हमारे इरफान शाह जी ही पूछेंगे। इरफान शाह जी,
2: तो दोस्तों अब हम जानना चाहेंगे सर से अपने, क्योंकि खाद जो उर्वरक होती है बहुत जरूरी होता है, कोई भी फसल है अगर खाद हम डालेंगे तो उसका विकास होगा, उसका उत्पादन होगा, तो अब जानना चाहेंगे कि सर की जो उर्वरक है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और कब कब डालना चाहिए पौधों में?
1: जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है आपने पूछी है, ताकि किसान भाइयों उर्वरक का कभी कभी उपयोग ऐसे ही कर देते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जैसे हम जुताई करते हैं फसल की बुआई के दौरान ही, तो गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है वो 20 से 25 टन यानी 200 से 250 क्विंटल ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करें। दूसरा आपका है कि आप बर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। आपका जो NPK यानी नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास रहता है इसकी मात्रा होती है 80-50-50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो 80-50-50 का मतलब ये हुआ कि आप नाइट्रोजन की आधी मात्रा यानी 80 किलोग्राम है तो 40 किलोग्राम और पोटास और फास्फोरस का पूरी मात्रा यानी 50-50 किलोग्राम, यानी शुरुआती दौर में आपको 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम पोटास, 50 किलोग्राम फास्फोरस बुआई के दौरान दे देना है। उसके बाद जो बचा हुआ नाइट्रोजन हमारा आधा भाग है 40 किलोग्राम, उसको हमें दो डोजेस में बांट लेना है। और जो हमारा 25 से 30 दिन जब हो जाए तब हमें जो आधा हम अपना नाइट्रोजन रोक लिए थे 40 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम यूरिया हम वहाँ से दे दें। और जब 45 से 50 दिन हो जाए तो जो बाकी बची यूरिया थी वो हम दे दें। दूसरा यह है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे जिंक सल्फेट से आप दे सकते हैं 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बोरान की कमी होती है, जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पौधे होते हैं, जब पौधा बड़ा हो जाता है तो आप देखे होंगे कोई भी पौधा हो, जब पौधे की निचली पत्तियाँ जब पीली पड़ जाएँ काले दाग के साथ, तो कोई रोग नहीं लगा होता है पत्तियों में, आप ये मानिए कि उसमें नाइट्रोजन की कमी है। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं, चले जाते हैं जो बीज की दुकान है, खाद की दुकान है, वहाँ से दवा ले आते हैं, और वो दुकानदार भी ना जानता है ना बताता है, वो दवा बांध के दे देता है। तो किसान भाई दवा का उपयोग करते हैं जबकि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर नीचे की पत्तियाँ अगर पीली हैं तो आप समझिए नाइट्रोजन की कमी है, और अगर यही ऊपर की पत्तियाँ अगर पीली पड़ रही हैं तो बोरान की कमी होती है। तो इसीलिए आप खेत में बुआई के दौरान ही बोरेक्स जो आता है, बोरान आपका आता है, वो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल दें। और जब फसल में फूल या फल की कोई समस्या आए, तो जैसे फूल अगर आपका गिरने लगे या फल आपका जब फूल आ जाए फल बनने लगे, तो आप बोरान, कैल्शियम और मैग्नीशियम इन तीनों का एक घोल बनाइए 0.5% पे, और इनका स्प्रे कर दीजिए। यानी जो एक टंकी आपका स्प्रेयर आता है वो लगभग आपका आता है 15 लीटर का, तो अगर 15 लीटर का स्प्रेयर आपका आता है तो उसमें 75 ग्राम का घोल बनाइए, यानी 25 ग्राम बोरान लीजिए, 25 ग्राम आप लीजिए कैल्शियम और 25 ग्राम आप लीजिए मैग्नीशियम, इन तीनों का घोल बना के उस पर स्प्रे कर दीजिए, ताकि फ्रूटिंग जो क्वालिटी होगी, फल की जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी रहेगी और उत्पादन भी अच्छा रहेगा। कुछ समस्याएं ये भी आती हैं कि जब फूल आ जाता है तो फूल गिरने लगता है या झड़ जाता है, तो उसके लिए क्या करें, 0.2% यानी 0.2% बोरान का वो स्प्रे कर दें, या फिर 1919 का जो यूरिया आता है, एनपीके आता है 1919 का, रिसियो का आता है, मार्केट में मिलता है, किसी दुकान पे आप पा जाएंगे, उसका 1% के रूप में स्प्रे कर दें, ये कर सकते हैं किसान भाई।
2: सर अभी आपने कहा बोरान और नाइट्रोजन, तो सर अगर बोरान और नाइट्रोजन अगर हम ये दवा है जो छिड़काव खाद का कर रहे हैं, तो इस समय हमें किसान भाई किन किन बातों का ध्यान रखें?
1: किसान भाई ये ध्यान रखें कि जैसे अगर हम डीएपी दे रहे हैं तो डीएपी के साथ जिंक कभी ना दें। अगर डीएपी के साथ हम जिंक दे दिए तो वो खाद एकदम से बेकार हो गई जी। वो पौधों को नहीं लगेगी। दूसरा चीज़ ध्यान ये रखना है खाद देते टाइम किसानों को, कि जैसे मैंने कहा 80 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया मैंने कहा, तो जो हमारी यूरिया की बोरी आती है इसमें क्या होता है कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यानी अगर हम एक कुंटल यूरिया अगर हम मार्केट से खरीदे तो उसमें हम 46 किलोग्राम ही यूरिया पाएंगे। तो ये ना देखें कि 46 ग्राम यूरिया डाल दें। दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारा डीएपी होता है उसमें 46% फास्फोरस होता है और 18% यूरिया होता है, तो 18% यूरिया वहाँ से वो कवर कर ले रहा है और 46% यूरिया नाइट्रोजन से कवर कर ले रहा है। तो किसान भाई जब भी उपयोग करें तो ये देखते हुए उपयोग करें कि उन्होंने कितना खाद डाला है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा खाद डाल देंगे जैसे नाइट्रोजन
2: जी
1: अगर ज़्यादा डाल दे रहे हैं किसान, तो क्या होगा उसकी लताएँ बहुत बढ़ जाती हैं
2: जी,
1: और अगर लताएं बढ़ जाएंगी तो फ्रूटिंग उसमें कम होगा, खाली लता लता जैसे हम कैनोपी बोलते हैं
2: जी,
1: तो कैनोपी ही उसकी बढ़ जाएगी, बाकी उसमें फ्रूटिंग बहुत कम होगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखें कि 45 दिन के बाद या 50 दिन के बाद हमको यूरिया नहीं देना है
2: जी।
1: उसके बाद आप बोरान थोड़ा दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं या जिंक का स्प्रे कर सकते हैं, बाकी आपको यूरिया तो बिल्कुल नहीं देना है। और डीओपी की बात रही, डीएपी की, तो डीएपी हमें बुआई के टाइम ही देना चाहिए, क्योंकि डीएपी जड़ों का विकास अच्छा करती है। जो खादें बनाई गई हैं वो पौधे को देखते हुए बनाई गई हैं। जैसे सल्फर हमारा बना है पौधों को क्वालिटी बढ़ाता है, प्रोटीन क्वालिटी बढ़ाता है और जो उसकी जड़ें होती हैं उन्हें रोग प्रतिरोधी बनाता है। तो जो भी फर्टिलाइजर्स दें वो टाइमली दें, ये ना दें कि डीएपी बाद में दे दें, यूरिया पहले दे दें या यूरिया पहले दें डीएपी बाद में दें। तो इन चीज़ों का ध्यान किसान भाइयों को अवश्य रखना पड़ेगा।
2: अब तो ये खाद की बात हो गई, खाद प्रबंधन की बात, और खाद प्रबंधन के बाद हमारे किसान भाई बहन सिंचाई प्रबंधन की बात होती है। तो सिंचाई प्रबंधन में सर बात होती है ड्रिप यानी फुहारा सिंचाई, तो इनमें कौन सी जो है वो अच्छी सिंचाई है और कैसे करें, क्योंकि देखा गया है कि हम लपेटा विधि से सिंचाई करते हैं, जो लपेटा पाइप होता है उस विधि से सिंचाई करते हैं हमारे किसान भाई बहन, जिससे पानी की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरी बात क्या है, कभी कभी देखा गया है कि जो मेड़ है वो कट जाती है जब, तो ये ड्रिप सिंचाई से करना फसल के लिए कितना फ़ायदेमंद है हम जानना चाहेंगे सर आपसे।
1: जी बिल्कुल इरफान जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, तो इसको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी सिंचाई होती है एक तो नॉर्मली जो गांव में अभी किसान कर रहे हैं फ्लड विधि से,
2: जी लपेटा जिसे कहते हैं,
1: हाँ मतलब जैसे पाइप लाए और क्यारी में या पंक्ति में जो हमारे लगाए हैं फसलें उनमें रख दिए तो वो एकदम से फ्लड इरिगेशन उसका होता रहेगा। दूसरा क्या है, ड्रिप इरिगेशन हम कर सकते हैं, और तीसरा क्या करते हैं, हम स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं। तो जो हमारी पुरानी विधि है जैसे आप लपेटा बोल रहे हैं
2: जी बिल्कुल,
1: जो पाइप से करते हैं या फ्लड इरिगेशन करते हैं
2: जी,
1: तो उसमें समस्या क्या आती है कि अगर मचान विधि से कोई आदमी कद्दू वर्गीय फसलों की खेती किया है तब तो वो कर सकता है, लेकिन फिर भी उसका अगर हम पूरा खर्चा जोड़ेंगे तेल का या भूमि हमारी ऊँची नीची हुई तो उसकी समस्या आती है। दूसरी समस्या क्या आती है कि अगर हम फ्लड इरिगेशन कर दिए, चैनल हमारा कहीं टूट गया, जो क्यारी है टूट गई, तो पानी पूरे खेत में फैल जाएगा, तो उससे समस्या ये आएगी कि जो हमारे फल हैं या जो तने हैं वो सारे पानी में डूब जाएंगे, तो फल भी सड़ने लगता है और कई रोग हैं जैसे डाउनी मिल्ड्यू हैं आदि रोग हैं ये भी लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें, ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छा है, जैसे ड्रिप इरिगेशन को टपक सिंचाई कहते हैं। टपक सिंचाई के लिए पौधे को क्यारी या पंक्ति में एक लाइन से लगाएं। दूसरी क्या है, पौधे से टपक विधि की जो पाइप होती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर दूर लगाएं, और जो टपक सिंचाई का पानी का डिस्चार्ज होता है कि पानी कितना छोड़ेगा उससे 2 से 4 लीटर प्रति घंटा होना चाहिए। जब टपक सिंचाई आप लगवाएं हैं ड्रिप इरिगेशन, जो लगाने आए उनसे किसान भाई बोल दें कि हमें 2 से 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से डिस्चार्ज होना चाहिए। अच्छा टपक सिंचाई से क्या होता है, आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पानी की कमी होती जा रही है। शाह जी अभी मैं बताना चाहूँगा आपको किस्सा क्या हुआ कि अभी मेरी मुलाकात विश्वविद्यालय में ही एक जेपी मेहता सर हैं
2: जी,
1: जो कि प्रोटेक्टर का काम बड़ा अच्छा करते हैं
2: जी,
1: जो कि राजस्थान से आए थे। तो उन्होंने ये बताया कि राजस्थान में पानी की इतनी दिक्कत है कि आपसे क्या बताएं, फसलों के लिए पानी नहीं मिला, वहाँ पीने की दिक्कत है। तो वो क्या करते हैं कि जितना वो खेती जितने एरिया में करते हैं उतना एरिया ही वो पॉलीथीन का मल्टिंग वाली पॉलीथीन लगा के एक गड्ढा बना लेते हैं, उसमें पूरे बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं और उसी बरसात के पानी से वो अपनी 2 फसलें ले लेते हैं। लेकिन अपने यहाँ जहाँ देखा गया है कि जैसे गन्ने की फसल है जो मैं देख रहा हूँ अपने यहाँ, गन्ने की या धान की फसल है या कोई अन्य फसलें हैं, किसान भाई क्या करते हैं, पानी दिन भर मोटर रात भर मोटर चला देते हैं। उससे दिक्कत क्या होता है कि आपने चला तो जैसे आप ही हैं या हम ही हैं, मैंने पहले ही बताया कार्यक्रम में, मैं आपसे बताया था कि जैसे पौधों को मानो ही समझिए, जैसे हमें 2 रोटी की भूख है
2: जी बिल्कुल,
1: और हमारे सामने कोई 3 रोटी रख दे तो हम खा तो लेंगे कैसे भी, लेकिन या तो पलटी हो जाएगी या अन्य कोई दिक्कतें आ जाएंगी। तो वैसे हमारी फसलें भी हैं, उनमें क्या है कि अगर हमें जितने पानी की आवश्यकता फसलों को हैं वो उतना लेंगे, लेकिन हम लोग जैसे गांठी गांठी तक भर देते हैं पानी, पूरा बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो वो भी नुकसानदायक है। इसलिए ड्रिप इरिगेशन में 60 से 70% तक पानी की बचत हो जाती है
2: जी,
1: यानी जो हम फ्लड से कर रहे थे कि जहाँ हमारी फसल नहीं लगी थी वहाँ भी पानी हम दे रहे थे, लेकिन ड्रिप से क्या करते हैं कि पौधों के जड़ों के पास ही पानी देते हैं। इससे क्या होता है, एक फ़ायदा और भी है कि रोग कम लगते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुके हैं कि फल भी कम खराब होते हैं, क्योंकि अगर फल पानी में नहीं डूबेगा तो फल में सड़न नहीं पैदा होगी, नहीं मिट्टी के संपर्क में अगर फल है और अगर पानी लग गया तो नीचे से सड़ने उसमें सड़न पैदा हो जाती है। दूसरी है कि उपज में लगभग 20 से 30-40% तक बढ़ोतरी देखी गई है। ये कई रिसर्चों में निकल के आया है। और अगर हम ड्रिप विधि से अगर हम सिंचाई कर रहे हैं तो हम खाद को भी फर्टिगेशन के रूप में दे सकते हैं। और अगर स्प्रिंकलर की बात रही तो स्प्रिंकलर विधि में क्या करते हैं, उससे भी पानी की बचत होती है, लेकिन सबसे कम पानी की बचत होती है हमारी ड्रिप में। स्प्रिंकलर से क्या करते हैं कि जैसे ये एक एक मीटर का बीच बीच में पाइप लगा रहता है, उसको हम एक घंटे या दो घंटे के लिए खोल देते हैं तो पूरे खेत में, स्प्रिंकल का मतलब ये होगा कि वर्षा के रूप में जल मिल जाता है, लेकिन ड्रिप सिंचाई बहुत अच्छी मानी गई है।
2: जी, मतलब कहने का मतलब है कि पौधों के पास में नमी जो है वो बरकरार रहती है और पौधों को जितनी ज़रूरत है पानी उतना ही पौधा को पानी मिल जाता है। दूसरी बात क्या है कि लगातार हम लोग सिंचाई करते हैं तो पानी अगर बेवजह कर बर्बाद कर रहे हैं तो आने वाले समय में पानी का संकट बहुत हो सकता है, क्योंकि खेती के लिए पानी बहुत ज़रूरी है और सिंचाई प्रबंधन भी करना है किसान को। अभी आपने कहा कि राजस्थान में पानी की कमी है, ऐसे कई राज्य हैं जो जल संकट से जूझ रहे हैं, तो हमें फसल भी लेना है और सिंचाई भी करना है, तो इसका ख्याल हमें रखना है। हमारे किसान भाई बहन जो कार्यक्रम सुन रहे हैं खेत खलिहान, उनको इस विशेष बात को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, अगर सिंचाई हो रही है तो उसका जो रकबा है, रकबा के हिसाब से अगर हम सिंचाई कर रहे हैं तो पानी की जो बर्बादी है वो कम होगी और उत्पादन जो होगा बहुत अच्छा मिलेगा। और ड्रिप के लिए सरकार कई सारी योजनाएं भी शुरू की है, आप उद्यान जी बिल्कुल उद्यान विभाग से भी आप ले सकते हैं।
3: जी,
2: अब ये तो सर सिंचाई की बात हो गई। सिंचाई के बाद में क्या होता है कि पौधों में बहुत सारे रोग भी लगने लग जाते हैं। कभी कभी हम सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो कीड़े हैं, फूल वाले कीड़े हैं, जब उसमें फूल आ जाता है, सिंचाई होती है उसके बाद में पौधों में फूल आ जाता है, फल लग जाते हैं, तो उसमें देखा गया है कि कुछ जो फूल को खा जाते हैं, तो प्रमुख रोग कौन कौन से लगते हैं और उनका प्रबंधन जो है वो हमारे किसान भाई बहन कैसे करें और उससे कैसे बच सकें, हम जानना चाहेंगे सर आपसे।
1: जी बिल्कुल, जो कद्दू वर्गियों के जो प्रमुख फल हैं, जो प्रमुख फसलें हैं, उनके बारे में जो प्रमुख रोग हम बता रहे हैं आपको, जैसे एक डाउनी मिल्ड्यू लगता है जो कि कवक जनित रोग है, या उसे हम बोलते हैं फफूंद रोग बोलते हैं। तो डाउनी मिल्ड्यू यानी फफूंद रोग में क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं और भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और जो अगर जैसे कोई कद्दू की अलौकी की पत्ती अगर आप उठा के देखेंगे तो उसके निचली सतह पर बैंगनी या भूरे रंग का फफूंदनुमा लेप आपको दिखेगा। तो इससे आप ये समझ जाइए कि आपके खेत में डाउनी मिल्ड्यू आ चुका है। अच्छा, अभी आपने सिंचाई की बात की थी, तो ये डाउनी मिल्ड्यू का क्या है कि अगर मौसम ठंडा रहा या अगर पानी पत्तियों में लगा रहा तो ये रोग आने का खतरा और ज़्यादा होता है। तो इसके हम प्रबंधन के लिए क्या करें कि एक तो प्रतिरोधी किस्में लगाएं, जो कि बहुत सी प्रतिरोधी किस्में आती हैं वो लगाएं। दूसरा क्या करें, जल निकास व्यवस्था बहुत अच्छी रखें अपने खेत से कि खेत में जल भराव ना होने पाए, अधिक नमी ना रखें खेत में। और आखिरी में हम केमिकल का उपयोग जो करते हैं वो मैनकोजेब 75% WPP 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर हम स्प्रे करें। दूसरा हमारा जो रोग है वो पाउडरी मिल्ड्यू है, ये भी कवक जनित रोग है जो कि पत्तियों के ऊपरी सतह पर सफ़ेद या भूरे रंग का पाउडर जैसा धब्बा दिखाई देता है। जैसे जो किसान भाई देखते होंगे कि लौकी की पत्तियां हैं या कद्दू की पत्तियां हैं, खीरे की, जो कद्दू वर्गीय फसलों की पत्तियां हैं, उनमें जैसे पाउडर जैसा जम जाता है पत्तियों पे, तो वो पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग होता है उसका लक्षण है। जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है ये, तो उसके तने पर भी ये फैलता है और फल पे भी आप देखेंगे कि सफ़ेद जैसे पाउडर जैसा धब्बा पाया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें, सल्फर 80% WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे करें। तीसरा क्या हमारा है, मोजाइक रोग जो कि वायरस से होता है। इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जिन पौधों में वायरस लग जाए उन पौधों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए खेत से, और वायरस लगने के बाद कोई दवा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वायरस जनित जो रोग होते हैं वो अगर एक बार लग गए तो जाएंगे नहीं। उससे पहले जो उसका प्रबंधन है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें लक्षण क्या आते हैं, पत्तियों पर हल्के और गहरे रंग के चित्ते दिखाई देते हैं, पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है, और इसका आकार आप देखे होंगे तो जैसे पत्तियां बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं जैसे हम बोलते हैं, या दाने नुमा आकार पत्तियों पे आ जाते हैं, तो ये हो जाते हैं। ये जो रोग होता है हमारा मुंजेखो, ये एफिड यानी जो माहू होता है कीट बोलते हैं
2: जी,
1: या जो सफ़ेद मक्खी होता है फल का, इससे फैलती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इमिडा क्लोरोपिड 17.8% SL 0.3 ml, ये दवा किसान भाई नोट कर लें, इमिडा क्लोरोपिड 17.8% SL 0.3 ml प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे कर दें। दूसरा क्या करें, जैसे फूल आने से पहले ही किसान भाई इनमें ट्रैप लगा दें, जैसे येलो ट्रैप आता है, तो आप अगर दुकान पर मांगेंगे तो मिल जाएगा। और अगर किसान भाई वो भी नहीं करना चाहते हैं तो क्या करें, जैसे जो टीन होता है घर में पड़ रहा था, तेल का टीन आता है शाहजी
2: जी,
1: उसमें क्या करें, पीले रंग से उसको रंग दें
2: जी,
1: और उस पे जो कैस्टर यानी अरंडी का जो तेल आता है वो लगा दें कि चिपचिपा सा बन जाए
2: जी,
1: और एक हेक्टेयर खेत में कम से कम 25 से 30 जगह लगा दें
2: जी,
1: ये कम से कम अपनी फसल से 1-2 मीटर ऊंचा खड़ा कर, 1.5-2 मीटर ऊंचा खड़ा कर दें, तो जो ये मक्खियां हैं ये पीला रंग देके आकर्षित बहुत होती हैं
2: जी,
1: तो अगर आके हमारे ट्रैप पे बैठेंगे, उसी टीन पे अगर बैठ गई तो उसी पे चिपक जाएंगी। एक जो मक्खी होती है ये लगभग 3-4 हज़ार अंडा देती है एक बार में, और इसका लाइफ साइकिल 3 दिन होता है, तो अगर एक बार ये फसल पे आ गई तो बहुत नुकसान पहुंचाती है। दूसरा होता है डैम्पिंग ऑफ, तो डैम्पिंग ऑफ के लिए मैंने आपको पहले नर्सरी में बताया था कि अगर नर्सरी लगाएंगे, होता क्या है कि डैम्पिंग ऑफ में अगर हम पौधा लगा दिए हैं, पानी ज़्यादा पड़ेगा तो सड़ जाएगा, तो इसमें हम नर्सरी लगाएं, अगर कोई पौधा सड़ भी गया हमारा तो नर्सरी में वो तैयार पौधा है जो सीडलिंग हमारी है, तो उससे किसान का समय नहीं खराब जाएगा, ये हो गया। अब हम कुछ क्या नाम है जो कीड़े हैं उनके बारे में बात करना चाहेंगे
2: जी।
1: तो जो मुख्य कीड़ा है, सबसे मुख्य कीड़ा तो कद्दू और ये फैमिली का ये है रेड पम्पकिन बीटल, ये पत्तियों में क्या करता है, छेद कर देता है, और जो कोमल कोमल फूल आते हैं नए उनको खा जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, येल्लो स्टिक की ट्रैप लगाते हैं, तो आपको मैंने जैसे बताया पहले कि टीन पे पीला रंग रखे कैस्टर का तेल लगा दें, वो इस पे करें, और खेत की गहरी जुताई करें बुआई से पहले। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंट किस्में लगाएं। तीसरा में जो केमिकल का उपयोग करते हैं वो इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे कर दें। दूसरा क्या है, जो फ्रूट फ्लाई आपको बताया था कि जो फल मक्खी होती है जो वायरस फैलाती है, इसके लिए क्या करें, यह एक मक्खी होती है जिसका रंग पीला या मतलब भूरा होता है, देखे होंगे आप लोग खेतों में, किसान भाई देखते होंगे जी जी जी जी जी बिल्कुल, ये अमरूद में पपीते में फसलों में कई फसलों में लगती हैं। तो इसके कारण जो मादा मक्खी होती है ये फल के सतह पर अंडा दे देती है
2: जी।
1: तो वो क्या करते हैं, जो उससे लार्वा निकलता है यानी जो अंडा से बच्चा या जो कीड़ा निकलता है वो फल के गूदा में घुसते फल को खाकर सड़ा देता है, तो इससे हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करें, मेलाथियन 50 EC 2 ml प्रति लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें
2: जी।
1: या हम जैसे एक ट्रैप आता है हमारा मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप, ये ट्रैप का मतलब ये हुआ कि ये ट्रैप आता है एक सुगंधित आकर्षण पदार्थ इसमें होता है, जो ये मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप है जो नर मक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर नर मक्खी ही नहीं रहेंगे तो प्रजनन की क्रिया भी बहुत कम होगी, और अगर प्रजनन की क्रिया ही नहीं होगी तो मक्खियों की संख्या बहुत कम रह जाएगी। तो इसके लिए हम इसको बनाते कैसे हैं, एक बोतल ले लेंगे हम, उसमें हम 5 से 6 छेद कर देंगे कि मक्खी उसमें घुस सके, और मिथाइल यूजेनॉल का 0.1% ले लेंगे और मेलाथियन 50 EC 0.1% में ले लेंगे, और इसको हम पानी में मिलाकर 25 से 30 ट्रैप इसका हम अपने एक हेक्टर खेत में लगा देंगे। दूसरा क्या है, माहू यानी एफिड जो मैं बताया था, ये जैसे अगर कोई पत्तियां आप उठाएंगे ना तो ये निचली सतहों पर पाई जाती हैं, तो पत्तियों के निचली सतह पर पाई जाती हैं और ये पौधों का रस चूसती रहती हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए भी आप इमिडा क्लोरोपिड 17.8% SL 0.3 ml प्रति लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। इसमें आप येल्लो स्टिक की ट्रैप भी लगा सकते हैं, जो कि 20 से 25 या 30 ट्रैप तक आप अगर प्रति हेक्टेयर लगा देते हैं तो उसमें इन माहू का खतरा कम हो जाता है।
2: अब सर जानना चाहेंगे कि फूल गिरने की समस्या क्यों होती है और इसका उपाय क्या है। कभी कभी देखा गया है कि जो पौधे हैं उसमें में से फूल जो है वो गिर जाते हैं और हमारे किसान भाई के जो फसल हैं वो नष्ट हो जाता है, उत्पादन भी नहीं मिल पाता है, तो इसका निवारण कैसे करें और कैसे बच सकें?
1: जी, फूल या फल गिरने की जो समस्या होती है वो सबसे पहले होता है कि जो पॉलिनेशन होता है यानी परागण, उसमें नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, जैसे लौकी हो गया आपका, कद्दू हो गया, खीरा होगा, इन सब में तो मादा फूलों की संख्या कम होती है, ये भी एक समस्या है। अधिक तापमान या वर्षा, ये भी एक समस्या है। खाद और पानी का असंतुलन ना बनाएं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। कीटों का प्रकोप जो होता है, फल मक्खी अगर आ जाएं तो इनके लिए नीम ऑयल का स्प्रे करें, और जैसे मैंने आपको इसमें फर्टिलाइजर से बताया था कि फूल गिरने की समस्या अगर आप देखें या फल झड़ने की, तो 0.2% बोरान का स्प्रे कर दें।
2: आप जानना चाहेंगे कि सर खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि फसलों में देखा गया है कि खरपतवार जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे फसल जो है हमारी वो ग्रोथ नहीं हो पाती है और किसान भाई बहन को उत्पादन कम मिलता है, तो इसका निवारण हमारे किसान भाई बहन कैसे करें?
1: जी बिल्कुल, तो खेत की जब हम तैयारी करते हैं ना, तो उसी टाइम लगभग हम 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर दें, जो हम जून जुलाई में लगाते हैं, तो ये मई में अगर हम जुताई कर दें, एक महीने के लिए छोड़ दें खेत, तो इससे खरपतवार की समस्या बहुत कम रहती है। दूसरा क्या है कि अगर लताएं फैल गई हैं तो उससे फिर हम हाथ से ही खड़ निकालें, ज़्यादा अच्छा वो रहेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम मल्चिंग कर सकते हैं, यानी एक पतली पॉलीथीन से मल्चिंग सीट आती है, उससे कवर कर दें फील्ड को, उससे खरपतवार की समस्या बहुत कम रहती है। उसके बाद हम केमिकल्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे पेंडामिथिलीन का यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र का भी उपयोग करके खरपतवार की समस्या बहुत हद तक कम कर सकते हैं।
2: तो आप जानना चाहेंगे कि कद्दू वर्गीय की मिश्रित जो खेती है वो इंटरक्रॉपिंग हमारे किसान भाई बहन कैसे करें?
1: जी, इंटरक्रॉपिंग यानी मिश्रित खेती का मतलब ये होता है कि एक ही खेत में उसी समय दो या दो से अधिक फसलें एक साथ इस तरह लगाएं कि वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि हमें वे लाभ दें। जैसे अगर हम लता जमीन पर अगर खेती कर रहे हैं कद्दू वर्गीय की, तो भी हमें कर सकते हैं मिश्रित खेती, या मचान बीज से कर रहे हैं तो भी खेती कर सकते हैं। इसमें कुछ मिश्रित खेती के उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि मूंग हो गया, उड़द हो गया, अरहर, अगर इनकी खेती करेंगे तो खेत में ये हमारे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। दूसरा क्या है कि धनिया, मेथी या पालक हम कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि बेल जो इसकी लता होती है उसके फैलने से पहले ही इसकी कटाई हो जाती है, धनिया या मेथी या पालक की। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मक्का का उपयोग हम करते हैं, अगर मचान विद की तरह मक्का का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, जैसे लौकी होगा, करेला हो गया, इन फसलों में हम मक्के का उपयोग मचान विद से भी कर सकते हैं और हमें भुट्टा भी प्राप्त हो जाता है। अगला क्या है कि सूर्यमुखी या तिल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे सूर्यमुखी या तिल अगर हम बीच में या किनारे लगाएंगे तो इससे जो हमारी परागण या पॉलिनेशन की जो समस्या होती है, फूल गिर जाते थे, उसमें कुछ हद तक सुधार आएगा। जैसे कि जो सूर्यमुखी होती है, इसका जो फूल होता है पीले रंग का होता है, जिससे देख के मधुमक्खियाँ बहुत आकर्षित होती हैं, वो आएंगी सूर्यमुखी के पास, तो परागण क्या नाम है जो हमारी कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनमें भी करेंगी, तो ये बहुत लाभदायक रहेगा। कुछ मैं क्या नाम है इसके जो लाभ हैं वो आपको बताता हूँ। कम समय में लंबी अवधि वाली फसलें एक साथ लगाएं, मतलब एक फसल लगाएं कि जो हमें इंटरक्रॉपिंग के लिए लगाना है कद्दू वर्गी में, उसका जो अवधि है वो कम समय का रहे, ताकि हमें पहले कटाई हो जाए लता फैलने से पहले। दूसरा क्या है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ा देती हैं और उत्पादन में आय तो बढ़ी जाएगी, क्योंकि एक खेत में हम जैसे कद्दू वर्गीय फसल ले रहे हैं, अगर साथ में कोई फसल हम थोड़ा और ले लिए तो उससे हमारी आय बढ़ जाती है और खाली जगह का हम उपयोग बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो ये फ़ायदे हैं इंटरक्रॉपिंग के, मिश्रित खेती के। किसान भाई बिल्कुल मिश्रित खेती करें।
2: जी, आप जानना चाहेंगे कि इन फसलों की बाज़ार में बेहतर कीमत कैसे पाएं, क्योंकि हमारे किसान भाई बहन जो फसल उत्पादन करते हैं उसको बाज़ार में इनकी कीमत कैसे पाएं और ये कैसे पहुंचाएं, हम जानना चाहेंगे सर आपसे।
1: ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि पैदा तो हर किसान कर लेता है लेकिन उसकी कीमत नहीं मिल पाती है उसको अच्छी, तो उसके लिए क्या करें, जैसे कुछ अर्ली यानी जल्दी की वैरायटियां होती हैं और कुछ देर की वैरायटियां होती हैं, तो वो लगाएं कि हम मार्केट में अन्य किसानों से जल्दी पहुंचें या अन्य किसानों से देर में पहुंचें, तो उसका हमें उसके जो पैसा होता है प्रति किलो हिसाब से उसमें हमें अच्छा होता है। दूसरा क्या होता है कि आप सीजन में हम लगाएं। आप सीजन का मतलब ये हुआ कि जब सीजन ना रहे, बिना सीजनी वाली जो सब्जियाँ रहती हैं आप देखे होंगे मार्केट में शाहजी, उनका कीमत बहुत अच्छा रहता है। दूसरा क्या है कि जो काम हमारा वेंडर यानी जो काम जो बिचौलिया करता है वो काम हमको करना चाहिए, जैसे साफ़ सुथरा सब्जियां या ग्रेडिंग करना चाहिए। जैसे कद्दू लगा रहे हैं आप या लौकी लगा रहे हैं तो जो दाग धब्बे लौकियाँ उनको अलग कर दें, जो फ्रेश लौकियाँ उनको अलग कर दें, और उनको हम कहना ग्रेडिंग करके या साफ़ सुथरा करके उसका पैसा हमें थोड़ा अच्छा मिल सकता है। स्थानीय मंडी में ना बेचें, स्थानीय मंडी में बेचने के अलावा ये करें कि वो सीधे ग्राहक को बेचना चाहें, उससे हमें पैसा अच्छा मिलता है। क्योंकि अगर हम मंडी में गए हैं तो मंडी में थोक में हमें बेचना पड़ जाता है, 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो अगर हम बेच देंगे तो वही जो मंडी में बेचते हैं वो लोग 30-40 रुपये किलो शाम को बेचते हैं। तो ग्राहक अगर सीधे पहुँचेंगे और 10 के बजाय 20 में बेचेंगे तो किसान का दुगना फ़ायदा है। और तीसरा चीज़ क्या है कि थोड़ा थोड़ा कर कर बेचें। और हम क्या करेंगे कि हम अगर जैविक या देसी तरीके से यानी ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो उसकी उगाई गई फसलों का हमें अच्छा पैसा मिलता है। या और दूसरा क्या किसान भाई क्या करें, ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग का सहारा भी ले सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो सामान्य लौकी हमारी होती है, लौकी पे दे रहा हूँ कि अगर सामान्य लौकी है अगर वो 10 से 12 रुपए किलो बिक रही है, अगर वही हम ऑर्गेनिक बताकर बेचें या सर्टिफिकेट हमारे पास रहे ऑर्गेनिक का तो 25 से 30 रुपए किलो बिक सकती है। और अगर हम ऑफ सीजन लौकी बेच रहे हैं तो उसका कीमत हमें 50 से 60 रुपए किलो तक भी मिल सकता है। तो अगर किसान भाई ऐसा करेंगे तो उनका फ़ायदा ही फायदा रहेगा।
0: तो आज आप सभी ने जाना गौधुली स्पेशल में खेत खलिहान में कि कद्दू वर्गीय फसलों में कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए, कैसी हमारी फसलें होनी चाहिए, कौन सी प्रजातियां हमें यूज़ करनी चाहिए और कौन से मौसम में इनको उगाना चाहिए और किस प्रकार से इनको हम मार्केट तक ले जा सकते हैं और उचित लाभ पा सकते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट थे धर्मेंद्र सिंह जी और साथ ही में हमारे को होस्ट थे इरफान शाह जी। अब दीजिए हमें इजाज़त और नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे, बिल्कुल वही थर्सडे स्पेशल आपका गौधुली खेत खलिहान। तब तक के लिए नमस्कार।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM, और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861-976-9816-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72-34-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी।

सबन के भाई विश्वकर्मा दिवस के बड़ी बधाई। और आज के दिन इतना खास ही लिए है काहे कि आज विश्वकर्मा दिवस है। आज वो भगवान के हम सब पूजा करी थे जे हमें सबका एक दूसरे से जुड़े वाला जो संसाधन है वो देन। जी हाँ, और आप सबका बताई कि जब बात होती आसपास कोई भी ऐसा चीज़ के जो हमारे सबके सुविधा में प्रयोग होती ओकर आविष्कार विश्वकर्मा भगवान के आशीर्वाद से मिला है हमें सबका। तो चली आज उह दिवस के बारे में बात कर ली और भोजपुरिया शाम माँ गुंडा मसल मसाला के आप सभी के स्वागत है। और आरजबीना के संगे आप सब सुनत हो अपन कार्यक्रम 89.6 FM ई हगोंडा शहर के धड़कन के संग। और सबका पहले तो प्रणाम, राम राम, शुभ संध्या जे जहाँ जहाँ से हैं सबके भाई स्वागत है। और अब आप सबके का हाल है इतनी जल्दी से बताएं। हम तो बिल्कुल एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं और इंतज़ार करी थे कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हो। और आज के दिन खास है काहे कि आज हम बात करने वाली हैं उ देवता के जोने के बिना निर्माण शिल्प और सर्जन कल्पना भी नहीं कीन जा सकत है। हाँ, आज विश्वकर्मा पूजा दिवस है। भगवान विश्वकर्मा जका देवतन के दिव्य शिल्पकार और वास्तुकार मानल जात है। वैसे आप सबका बताई कि आज के दिन काहे खास है, काहे कि आज के दिन पूरे देश में खास तौर पे कारीगर, शिल्पकारन, इंजीनियर लोग, निर्माण क्षेत्र, कारखाना और मशीनरी से जुड़े लोगन के खातिर बहुत खास दिन है। भगवान विश्वकर्मा का जो उल्लेख है वो प्राचीन भारत के परंपरा और वैदिक साहित्य में मिलत है। उन्हें सृष्टि के निर्माण कौशल, वास्तु और शिल्पकार विद्या के जो पूरा लेखा जोखा है उका रखे के देवता माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन लोग अपन औजार, मशीन, वाहन और कामकाज में इस्तेमाल होए वाली सब चीज़न के पूजा करते हैं। ये पूजा केवल मशीन के पूजा नहीं होती, श्रम, हुनर और सृजन के सम्मान के पूजा होती। एक मकान बनावत है तो राजमिस्त्री चाहिए, मशीन चलत है तो एक ठो तकनीशियन चाहिए, लकड़ी का सुंदर काम होत है तो एगो बढ़ई के हुनर चाहिए, लोहा आकार पावत है तो लोहार के कला चाहिए। मतलब साफ है, दुनिया बनावे माँ हाथ के हुनर और दिमाग के ज्ञान दोनों के जरूरत पड़ती। अभी AI इतना तेज नहीं हुई गए है कि वो इनके सबके जगह ले लिए। AI के नाम पे हम सब बहुत ज़्यादा ये सोची थे कि दुनिया माँ इनके सबके कोनो सानी ना हुई, लेकिन AI का अभी ये नहीं पता है कि उका का करेगा चाहिए और का नहीं करेगा चाहिए। विश्वकर्मा पूजा हमें सबका ये संदेश दिए थे कि काम छोट और बड़ा नहीं होता, काम के प्रति ईमानदारी और हुनर ये बड़ा होता है। आज दुनिया बहुत तेजी से बदलत है, चाहे मशीन से लेके कंप्यूटर के बात करी, रोबोटिक्स के बात कर ली, इंजीनियरिंग के बात कर ली और आधुनिक तकनीक के बात कर ली, हर क्षेत्र और तकनीक में ज्ञान के भूमिका बढ़त जात है। ऐसे माँ विश्वकर्मा पूजा हमका 3 महत्वपूर्ण बात सिखावत है। पहली कि आपन काम के सम्मान करो, दूसर कि औजार और संसाधन के सही इस्तेमाल करो और उसका सम्मान करो, इनाए कि यूज़ करे के बाद में सामान का यहाँ बाहर कहूँ भी रख दो। तीसरी चीज़ यह है कि हुनर के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है, इनाए कि अगर आपके अंदर हुनर है तो ओकर आप दुरुपयोग करो, ठीक है। काहे कि मशीन चाहे कितना आधुनिक हो जाए ओकर सही इस्तेमाल करे वाला इंसान होत है। हुनर हाथ में हुई तो मेहनत पहचान बन जात है और मेहनत में ईमानदारी हुई तो काम पूजा बन जात है। एगो पौराणिक कथा भी है आज के दिन से जुड़ी। कहा था कि भगवान विश्वकर्मा देवतन के दिव्य शिल्पकार हैं। पौराणिक परंपरा में उनके द्वारा देवतन खातिर अनेक अद्भुत भवन, अस्त्र शस्त्र और दिव्य रचना संरचना बनाई गई। कथा परंपरा में स्वर्ण लंका के निर्माण का संबंध भी विश्वकर्मा से जोड़ा जाता है। कहा था कि जिन सोने के लंका ही वो विश्वकर्मा बनाए रहे। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा लंका का निर्माण जो है वो अद्भुत वास्तुशिल्प कला से कीन रहा। बाद में लंका रावण के अधिकार में आए गए, ये प्रसंग रामायण की कथा से जुड़ा है। इसी तरह इंद्रपुरी देवतन के भवन और उनके दिव्य स्थान एक रचना भी भगवान विश्वकर्मा के शिल्पकला द्वारा कीन गई।
इन्हीं कारण से भगवान विश्वकर्मा के नाम निर्माण वास्तु तकनीक और शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। और तो बात होइबे करी, लेकिन आज के दिन आज हम आप सबका बताए भी हैं कि कुछ और खास बात भी होने वाली है, लेकिन आप सबसे जुड़े के बाद दिल जोन है ना वो एकदम खुश हो जात है। तो चली कुछ नया पुरान भोजपुरी गाना के संगे आज के शाम की शुरुआत की जाए। आप सब बताइए हैं कि कैसन है फिलहाल के लिए ई गाना सुन के आज के शाम का रंगीन करें। तो सबका आज के दिन के बहुत सारी शुभकामना। 7 बजे से सबके फरमाइश के भोजपुरी गाना भी सुने का मिली, लेकिन सबसे पहले आप सभी का आज के जोन चर्चा होने वाली है ऊपर ध्यान दिए है, ठीक है। और कहे कि आप सबका पता है कि आज आपसे हम अयोध्या के एगो बहुत खास घूमे के स्थल के बारे में आप बात करे वाली हैं, जोन की है मोम के जोन संग्रहालय है जिका वैक्स म्यूजियम कहा जाता है, उसके बारे में बात हुई। लेकिन उससे पहले चली ई नया पुरान गाना के जोन सम्मेलन है का सुनी और बताएं ई गाना कैसन है।

वैसे इंसान का बनावे वाला देवता तो अलग है, लेकिन ये इंसान बहुत सारा चीज बनावत है और यही आशीर्वाद दिए के काम है अपने सबके विश्वकर्मा भगवान के। वैसे विश्वकर्मा भगवान के बात करे के बाद माँ आज विश्वकर्मे भगवान के देन एगो अद्भुत कला के बात करी वाली हैं जो उनकी आपे के पास यानी कि शहर अयोध्या में बसल है। अब वो कौन कला है, कौन आकृति है, ओकरे बारे में हम आप सबका सोशल मीडिया पर पहले ही बता चुके हैं। तब तक के लिए गाना सुनी और भगवान विश्वकर्मा का धन्यवाद दें कि आपका कोनो कला दिए हैं तो ओकर धन्यवाद।

0: बाबूजी, हेलो। हाँ बाबूजी,
1: लाइन में लागल बनी
0: बाबूजी, लाइन में लागल बनी।
1: चल जल्दी करे हो।

बिल्कुल 7 बजे के बाद से रोवा के फरमाइश जरूर पूरी हुई, लेकिन उससे पहले चलिए कुछ बात कर ली जाए आज के जो मुख्य मुद्दा है। अब कौन बात करे है ओकरे बारे में जाने के लिए पहले तो सब लोग अपन जो न अलर्टनेस है ओका बढ़ा लिए। अब अलर्ट होए के मतलब ये है कि अपन जानकारी बढ़ावे के लिए आपका ध्यान से चीज़ें का सुने पड़ी। जैसे कि सबसे पहले हम बताई कि दुनिया के पहला मोम से बना म्यूजियम जो उनकी रामायण पर आधारित है, और अगर पूरे क्षेत्रफल के बात करी तो अयोध्या में 9,850 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला है। ये पूर्णता एगो एयर कंडीशन म्यूजियम है जो उनकी 6 करोड़ रुपया के लागत से बना है। यहाँ श्री राम के संगे 50 प्रमुख पात्रन के जीवांत वैक्स प्रतिमा बनाई गई जो उनकी रामायण के पूरी कथा का जिसे लागत है कि आँखों मैया दिखात है, जिसे लागत है कि पूरी रामलीला पूरी सामने चलती। लेकिन सब जो मन कलाकार लोग हैं जोन भी पात्र हैं वो सब फ्रीज हो गए वहाँ कुछ देर के लिए। बहुत एक खूबसूरत अनुभव है, अगर आप जई हैं तो वहाँ से आपके आवे के मन ना कहीं। मुद्दा ये है कि आज आपसे बात होती है एगो खास जगह के बारे में जोन की आपके गोंडा से सटल अयोध्या क्षेत्र में पड़त है, यानी कि वैक्स म्यूजियम जोन की रामायण से पूरा प्रभावित हो के बनावा गया है। अब आपका एक बारे में बता दी कि दुनिया का पहला ऐसा म्यूजियम है जहाँ रामायण का दिखावा गया है। वैसे तो अयोध्या में बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो हमारे सबके इतिहास का उजागर करती, लेकिन ये भी एगो नई चीज़ है जो उनकी बने अभी 1 साल हुए का है। ये पूरा के पूरा जो म्यूजियम है ये त्रेता युग के पुनर्रचना के निहित है। एका देखे के बाद माँ आपका लागी कि आप त्रेता युग में आए गए हो। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर काशीराम कॉलोनी के सामने ये जो म्यूजियम है ये बना है। न केवल भक्तन के लिए ये आस्था का केंद्र है, बल्कि जो पर्यटक दूर दूर से चाहे भारत और भारत के बाहर से आवत हैं उनके सबके लिए भी देखे के एगो बढ़िया चीज़ है। अब ये सोचें कि आप कहूँ घूमे जाओ और आपका सिर्फ मंदिरे मंदिर देखे का मिले, तब तो मतलब आप सोचिए कि अरे इतनी दूर से आन कुछ नई चीज़ भी और देखे का मिले, ये कोशिश हमारे सबके क्षेत्र लोग क्षेत्र वाले लोग की ही नहीं। अब आपका एक बारे में और बताई कि जैसे कि अयोध्या में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो उनकी हमारे सबके प्रदेश के नाम बढ़ावती, चाहे वो दीपोत्सव हो, चाहे वो राम मंदिर हो, और चाहे वहाँ के हनुमानगढ़ी और राम के पौड़ी हो, और पासे में स्थित सूर्य कुंड, सब जगह अपन आकर्षक के केंद्र बनाए ही और आए वाले पर्यटकन के लिए एगो आकर्षण है। अगर हम बात करी तो हुआ के लोगन के लिए और आसपास के क्षेत्र के लोगन के लिए रोजगार है। भाई जहाँ ज़्यादा लोग आई हैं हुआ रोजगार के जो कहते ना मौका बढ़त है। अब आगे जाने कि एक बारे में और का खास चीज़ है हम बताई थे। ये 9,850 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला है और ये पूरा का पूरा एसी है। मन भाई ठंडा रही तबे तो वैक्स जोन है अपने स्थिर जगह पर रही। आपका पता है कि हाई टेम्परेचर के वजह से मोम पिघले लागत थी, अपन जो मूल रूप है वो छोड़ दिए थी। अब आपको बताई कि यहाँ 50 से ज़्यादा मुख्य पात्रन के जीवांत वैक्स प्रतिमा बनी है, चाहे वो हनुमान जी हुए, चाहे पूरा सीता राम और लक्ष्मण जी हुए, चाहे हुआ मतलब अलग अलग जब जाइए तो आपका लागी कि अरे का बात है। यहाँ एक साथ 100 लोग अंदर जा सकते हैं म्यूजियम में, और 100 लोग एक साथ एक जो अनुभव है ओका कह सकते हैं। दर्शक अंदर कदम रखिए ओकरे बाद है उन्हें सबका हुआ के जो महक है हुआ के खुशबू भी ऐसा बनाई गई जैसे लगी कि आप कोनो दूसर दुनिया में आए गए हो। हुआ मध्यम स्वर में राम धुन बजा कर थी जिसका सुने के बाद आ हा मंत्र मुग्ध हो जाता है पूरा शरीर। हर स्पीकर में धीमी आवाज में गाना बजत है, राम तारक मंत्र जो है वो बजा करत है, और सुने के बाद माँ वो क्षेत्र एकदम पावन हो जाता है। संगीत तो सुने के बाद माँ दिल खुश हो जाता है। अब म्यूजियम के निर्माण की बात करी तो ये म्यूजियम के निर्माण साउथ इंडियन वास्तु शैली के हिसाब से बना है। अब है आज आपके विश्वकर्मा दिवस तो हमके नहीं दिवस के बारे में बात तो होइक चाहिए और आसपास के कोई ऐसी नई चीज़ के बारे में भी बात होइक चाहिए जो उनकी भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से बनी है। जान लो अब आगे जानो कि 2 मंजिला
ये भवन जोन है, ये ग्राउंड फ्लोर पर रामलला के बाल रूप के पूरा तस्वीर दिखावत है, सीता स्वयंवर के घटना दिखावत है, जबकि जोन फर्स्ट फ्लोर है वहाँ वनवास, लंका दहन, राम रावण युद्ध के भव्य झलक दिखावत है। मतलब आप जाइबो तो वहाँ पूरी रामायण के अनुभव कह लेबो। ऐसे लगी कि कोई फ्रीज कह दी से और अभी एगो बटन दबी तो सब पात्र चले लगी हैं। और जो न वैक्स मॉडल है वो अलग अलग लाइटिंग के साथ है, ऐसे मालूम पड़ते जैसे लागत है कि एगो अलग अलग दृश्य है। मतलब पूरी भावना दिखत ह्यूमन। दर्शक लोग भगवान के मूर्ति के कपड़ा, बाल, मुस्कान, ये सब छू के हकीकत में देख सकते हैं। मतलब आपका छूए का भी मौका मिली। ठीक है, प्रवेश द्वार पर सबसे पहले भगवान गणेश जी के भव्य प्रतिमा है। भाई गणेश चतुर्थी चलती तो हमके भगवान के बारे में भी जान बताए दी कि कहे कि विघ्न हर्ता के नाम लेके ही कहा जाता है कि हिंदू धर्म ये परंपरा है कि भगवान गणेश जी के नाम लिए थे तो सारा विघ्न हर जाते, उसके बाद आप मन से अपने जोन काम करा चाहो कह सकते हो। और एक बाद रामलला के बाल स्वरूप मिली जो उनकी वैक्स के मूर्ति के रूप में है। वहाँ सेल्फी पॉइंट भी बना है, बच्चे बूढ़े सभी बालक राम के संगे फोटो खिंचा सकते हैं। मतलब जो उनकी आजकल के ट्रेंड है उनका पूरा फॉलो कीन गए हियाँ जाए के। ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर पर वनवास के दौरान सुंदर वन, सीता हरण, रावण वध के 3D लाइटिंग प्रभाव से सजी मूर्तियाँ भी हैं। हनुमान जी जो लंका दहन करते हैं ओकर भी मूर्ति हुआ उपलब्ध है। लाइटिंग देख के जान पड़ते कि मतलब आहा मजा आ जाता है। कुल 50 पात्रन जमन राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, रावण, विभीषण समेत सभी पात्र के जो चरित्र है वो शामिल है। सुरक्षा और सुविधा के भी बढ़िया सुविधा हुआ उपलब्ध है। और 22 डिग्री तक के तापमान जो है वहाँ मेंटेन रखा जाता है, वैक्स के जो किसी भी तरह के कोई नुकसान ना हुए। एक अलावा 24 घंटा आप सब हुआ निगरानी में रहा थो। 100 रुपया प्रवेश शुल्क है, अगर आप जाएं तो 100 रुपया आपके पास कैश या ऑनलाइन हो चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करी कि वैश्विक स्तर के बात करी तो म्यूजियम के निर्माण जो है केरल के प्रसिद्ध सुनील वैक्स म्यूजियम कंपनी के द्वारा कीन गए है। कंपनी के प्रमुख सुनील बतावत हैं कि ऐसे पहले वह महाराष्ट्र के लोनावाला माँ और केरल के तिरुवनंतपुरम माँ सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम बनाए रहे। मतलब ऐसने म्यूजियम वह पहले केरल माँ बनाएं, महाराष्ट्र माँ बनाएं और फिर नंबर आएगा अपने उत्तर प्रदेश के। तो ये बात के खुशी हमें सबका मनावे चाहिए कि हमने सबके क्षेत्र का चुना गवा इतना महान काम करे के लिए। अब अयोध्या के जो रामायण म्यूजियम है एकरे बारे में चर्चा आपके प्रदेश में ही नहीं आसपास के क्षेत्र में भी होए लाग है। बस आपका जानकारी थोड़ी ज़्यादा और होए चाहिए जोने आप भी अगर मौका मिले तो म्यूजियम जाए के ज़रूर घूमें। अब जैसे कि हम सब तो बगल में रही थे, जब मन कहे तब मुँह उठा के जा सकी थे, कहे कि बगल में रह कर कुछ तो फ़ायदा है, लेकिन यो नुकसान होते कि बगल वाले सोचे थे कि अरे कल चला जावा जाइए, अरे अगले महीना चला जावा, अभी तो भीड़ हुई। तो भाई अयोध्या में तो हर वक्त भीड़ रहा थी, लेकिन अपने बगल में बसी ये खूबसूरत जो जगह है यहाँ घूमे के तो भाई अनुभव हम सभी का करे चाहिए। ठीक है, एक अलावा अगर बात करी तो यहाँ पार्किंग भी है, पर्सनल पार्किंग है म्यूजियम के अलावा। एक स्टूडियो, काफ़ी हाउस, स्नैक्स जोन, इंटरनेट एरिया भी, मतलब इतना बढ़िया लगी कि आपका जाए बाद में लगी कि आप महाराष्ट्र में या केरल में गए हो, हुआ वाला म्यूजियम अनुभव कर दो। कहे कि आपका हुआ के तो तस्वीरें देखे मिली हैं, लेकिन अब आप भी गर्व से बता सकते हो कि हमारे यूपी में भी वैक्स म्यूजियम उपलब्ध है। तो चलिए एगो गीत सुना जाए और एंजॉय कीन जाए आज के दिन, और आगे कुछ ही देर में आपका आपके पसंद के गाना सुने का मिली। और अगर जानकारी बढ़िया लागे तो तनी मुस्कुराए दिया और चैट रूम में बताए दिए कि मजा आवा जान के कि नहीं। और आप अगर घूम चुका हो तो आप जरूर बताइए कि आपका हुआ जाए के बाद कैसा लगा। हम तो गए ना, हमें तो बड़ा मजा आवा, उसके बाद हम सोचें कि आप लोगों का भी बताए दी। फिलहाल चलिए आगे और एक गाना सुनाए के आज के शाम के रंगीन के दिन जाए।

तो चलिए सबसे पहला फरमाइश के ओर रुख किया जाए जून की। हमरे लिसनर रिंकी के फरमाइश है, रिंकी सुना चाह थी सरकारी दुल्हा जून गाना बड़ा बढ़िया है। और मतलब हम हर बार देखे थे कोई ना कोई आवत है जिका सुने को थे सरकारी दुल्हा। तो चलिए रवि गुड इवनिंग, धर्मेंद्र गुड इवनिंग, अरविंद गुड इवनिंग, जुगल जी गुड इवनिंग, आशु गुड इवनिंग, सबके भैया स्वागत है। सभी हरिचंद जी सबके स्वागत है। फिलहाल नौकरी की परेशानी सबके है तो ये सब गाना सुनने के बाद सबका अच्छा लागत है। तो चलिए टोकरी भर फार्म के जो उन प्रोडक्टिविटी हो देख लीन जाए ये गाना के संगे। तो सब सोए वाले जागे वाले इनका जगाए दी और आप सबके तैयारी हो जाए आपके पसंदीदा शो के पसंदीदा बात यानी कि भोजपुरी गाना के फरमाइश सुनने के टाइम आ चुका है। और आज चलिए देखा जाए के फरमाइश सुनने का मिलता है जे जहाँ जहाँ से फटाफट से अपन फरमाइश चैट रूम में या कॉल करके दे सकते हैं, अपन फरमाइश सुन सकते हैं।

तो धर्मेंद्र जी के गाना सुने के बाद मन खुश होगा, बड़ा बढ़िया गाना रहा। और अगला गाना है श्रीदेवी जी के फरमाइश के गुर की पतर की, बड़ा पुराना गाना है लेकिन सुने के बाद आपका नई वाली फीलिंग आई, कहे कि कुछ गाना ऐसा न होते जो कबो पुराना ना हो। तो फिलहाल श्रीदेवी की फरमाइश के ये गाना सुनी, गुर की रे पतर।

0: चलिए अगली फरमाइश के ओर। भाई आज सबके फरमाइश सुनने के मौका मिले वाला है और अगली फरमाइश है हमारे बहुत प्यारा श्रोता के जोने के नाम है रवि। और रवि सुना चाहते ए बाबूजी, बहुत प्यारा गाना है का सुनने के बाद दिल आपके सबके खुश हो जाए।
1: अरे ये कौन प्रतिभागी है जो घूंघट में बैठे?

तो चलिए अगला गाना की ओर। बड़ा प्यारा और मार्मिक गीत सुनने का मिला, और अगला गाना है अरविंद के फरमाइश के। चलिए देखा जाए अरविंद कौन गाना सुनना चाहते हैं। जैसन सुचले रहनी वैसन धनिया।

तो आज के दिन के हिसाब से गाना सुने के बाद अब गाना सुने का मिली अगला जोन की है फरमाइश के हमरे प्रीति जी के, फुलौरी बिना चटनी कैसन बनी। आहा, क्या बात है।

फिलहाल ये गाना सुने के बाद माँ सबका एकदम फुलौरी खाए के मन करे लागू हुई। वैसे फुलौरी हमारे यहाँ पकौड़े को बोलते हैं, और पकौड़ी तो खाए के सबके मन कहा था, और बिना पकौड़े के तो चटनी कोई अकेले खाए ना, फिलहाल हम समोसा के साथ खाए सके थे। फिलहाल ये गाना सुने के बाद सबके दिल झूम गवा, और अगला गाने के और रुख करे के मूड हो गवा हमार चला है कि अब बहुत सारी जो न फरमाइश है वो बजावे का है। तो चलिए सुनी प्यारा सा गाना आप सबन के संगे, सुने के बाद बताएं कैसे ये गाना कैसन है, काहे कि अब अंग्रेजी भी आएगा वह बीच में। तो चलिए ये प्यारा और सबके पसंद वाला गाना सुने के बाद आप बताएं कैसन लागत है। ये गाना है पूजा के फरमाइश के, और आप सबका पसंद आवत है तो तनी हमें जरूर बताई हैं।

का बात है, ये गाना सुनने के बाद तो सबके पैर में घुंघरू बंद गए हुई। अगला गाना सुनी है कुरकुरे फैमिली से, हमार पीवा चलावे डीजल गड़िया। वैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी आजकल आए गए ही चली हो, सुन लीजिए।

वैसे ऐसा कोनो बड़ा बात तो ये गाना बनाई है। फिलहाल कुरकुरे फैमिली का ऐसे अच्छा गाना हम सुनाए दी, और फिलहाल ये गाना सुनने के बाद हमें बहुत अच्छा तो नहीं लग कि इमन वह चीज़ बताई जाती है जो सबका पता है कि भाई डीजल गाड़ी तो कोई भी चलावत है। लाल साड़ी के साथ लाल ब्लाउज या ब्लैक ब्लाउज पहनेगी तो सबके जरूरत के इंसान हिसाब से मैंने बताया वाली कौन बात है। फिलहाल चलिए अगला गाना सुन ली जाए, कौन गाना है भाई, कौन सा गाना है, देखा जाए। ये गाना के फरमाइश किकर है, ये गाना के फरमाइश आशु जी के कोने दिशा लेके चला रे बटोहिया, बहुत प्यारा गाना जिका सुनने के बाद हमें लगा था कुरकुरे फैमिली भी खुश हुई जी, कुरकुरे खाई के कहे कि भोजपुरी और अवधी गाना सुने के पीछे पर्पस ये होता है कि हम सब कुरकुरे फैमिली जी पूछे थे फुलौरी का है, फिलहाल इन्हें डीजल गड़िया समझ में आवत है लेकिन फुलौरी नहीं समझ में आवत है, क्या बात है क्या बात है। एनीवे चला आगे गाना सुनत सुनत एंजॉय करा, और ये गाना तो भाई ज़रूरी है का सुन के मज़ा आ जाता है।

0: क्या बात है, ये गाना सुन के तो दिल खुश हो गया। वैसे तो आज की सारी फरमाइश अच्छी रही, चाहे कोई भी हो, हमें शुरू से लेके अंत तक एक एक फरमाइश सुनने के मजा आए गए। अब एगो आखिरी फरमाइश हमारे श्रोता के, जिन्हें के नाम है अमित। तो अमित सुना चाहते गाना बालम बालम, लेकिन हम नहीं जान पाए थे कि इन्हें ये गाना सुने के कौन काम है। ये तो फिलहाल लड़कियन की फरमाइश हुई थी, लेकिन यार लिरिक्स के बाद से अगर हम सब ध्यान ना दें, वैसे हर केहू का कोई भी गाना पसंद आ सके थे। चलिए सुना जाए कि ये गाना कौन है और आपका पसंद आवत है कि नहीं।
1: Thank you.

ये गाना सुने के बाद आप सबन का क्या बताई कि अब बारी है हमें आप लोगों से विदा लिए के, लेकिन हमारे सब श्रोता लोगन के लिए एक प्यारा सा भोजपुरी गाना हमारे तरफ से ई भाई उनके लिए है भाई, जे कर फरमाइश पूरी नहीं बच पाए, जिसन की अभी हमारे कुरकुरे वाली दीदी का गाना नहीं बच पावा, तो कुरकुरे वाली दीदी के लिए गाना है ई हमारे तरफ से वैसे सबहन के लिए। सुन के बताएं ये गाना आपका कितना पसंद आवा, आपके चैट रूम में हार्ट समय बताए दें ये गाना आपके हार्ट तक पहुंचा कि नहीं। तो हंसत रहा, मुस्कुरावत रहा और बजावत रहा अपन वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM, यह गोंडा शहर के धड़कन। आप कुछ बेहतरीन सुनत हैं तो बिल्कुल आरजे बीना के संगे अपन पसंदीदा कार्यक्रम गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला सुनत हैं। तो कल फिर मिली हैं, लेकिन कल हुई बात आपके अपने पसंदीदा हीरो हीरोइन और आपके पसंद वाली फिल्म के बारे में। आप ज़रूर तैयार करके आई हैं अपने खास फिल्म के बारे में, जो उन्हें का देख के आपके दिल गार्डन गार्डन हो गया। और काल के सवाल आपके पहले तैयार कर दी कि कौन ऐसा फिल्म रही जो उन सबसे पहली बार आप सब थिएटर में देखे हो। ऐसा तो कोई नहीं है जो अभी थिएटर नहीं गए, जे नहीं गए तो चलिए हम साथ में आ चल के मूवी दिखाए। फिलहाल अभी तो ये गाना सुने के बाद माँ आप बताइए कि गाना कैसा है।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9816 9817 981 9766। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: अरे सुना?
6: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हाइपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हाइपेटाइटिस ए, हाइपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
6: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके

आदाब एंड सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फरमाइशी में अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और गणेशोत्सव के चौथे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से। क्या हाल चाल है पब्लिक? जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत चांद। शो आपका गीत, आपके जज्बात आपके, और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। क्या हाल चाल है? मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है गणपत पप्पा के आते ही। पता नहीं क्यों मुझे, मतलब पता नहीं क्यों दोस्तों, मेरा गुस्सा, जिस गुस्से से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मतलब एक पर्सनल, मतलब एक हाँ सच में एक पर्सनल बात बता रही हूँ आप सबको, बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, नेक कंट्रोल हो रहा था, बहुत ट्राई किया था, लेकिन पप्पा ने आते ही पता नहीं क्यों मेरे गुस्से पे ऐसा, मतलब पता नहीं क्या हो गया दोस्तों, गुस्सा नहीं आ रहा मुझे, आ रहा है लेकिन उस लेवल का नहीं आ रहा जिस लेवल का आ रहा था। तो पप्पा लव यू सो मच। और सच में दोस्तों, हमारे यहाँ पप्पा जी को पहली बार लाया गया है, अभी तक हम मतलब पप्पा जी को नहीं लेके आते थे, लेकिन पहली बार आए हैं पप्पा। जिस हिसाब से पहली बार आए हैं उस हिसाब से पप्पा ने, मतलब लाइक सब कुछ अच्छा हो गया है दोस्तों, सच में सब कुछ अच्छा हो गया है। तो आई विश आप लोगों के साथ भी बहुत अच्छा सब कुछ हो। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आशा मिश्रा जी लखनऊ से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, प्रीति शुक्ला जी बहराई से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, और किरण आपका भी स्वागत है, राजेश कुमार जी मालवे नगर गोंडा से, अनुष्का श्रावस्ती से आवास विकास गोंडा से, रवि नागेश्वर धाकड़ इंडिया से आपका भी स्वागत है, श्याम नाम की पगली नी सुमित्रा जी मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा, सुरेश कुमार जी चौक से, बजीरानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, इम्तियाज अहमद जी गोंडा से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में। अब एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, उदालक शर्मा मनकापुर से आपका भी स्वागत है। आप जब दिखते हैं मुझे खुशी होती है कि हाँ अपने व्यस्त दिनों में ऐसे मतलब थोड़ा सा समय निकाल के आ जाते हैं, दिखा देते हैं कि आज सिंपल अभी मैं आ गया हूँ। सो अपनी फरमाइशी गीत को भी जरूर चैट बॉक्स में शेयर करिएगा। एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश दोस्तों, इंजॉय करेंगे आज की पहली फरमाइश, लेकिन उसके पहले कहना चाहूंगी कि इस मतलब इस खूबसूरत अवसर पर मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्लामा इकबाल की एक बहुत ही फेमस शायरी याद आ रही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। तो अल्लामा इकबाल ने, जैसे इकबाल साहब ने इस चमन की खूबसूरती का जिक्र किया है, ठीक वैसे ही ये गणेशोत्सव हमारे शहरों, हमारी गलियों, हमारे दिलों को खुशियों के रंगों से सजा देता है। बप्पा का यहाँ होना हर चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान ले आता है। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि बप्पा के जयकारों के साथ चलिए शुभारंभ करते हैं हमारी फरमाइशी की महफिल का और इंजॉय करते हैं पहली फरमाइश। आशा मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना, तो शायर है मैं तेरी शायरी, तो इंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा साजन पिक्चर का अलका याग्निक की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ हमारी आशा मिश्रा जी की फरमाइश जो की लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: आशिक है मैं तेरी आशिकी, हमें एंजॉय किया है अलका याग्निक की आवाज में। साजन पिक्चर का ये गाना आशु जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ दोस्तों, बिना किसी देरी के। और आप जानते हैं अगली फरमाइश किसकी है? जग्गू दादा को सुनना है एमपी से गाना, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। आहा, तो शागिर्द पिक्चर का ये गाना हम इंजॉय करेंगे सिर्फ और सिर्फ जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर जो कि है एमपी से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन,
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो शुभम यादव फ्रॉम लखनऊ। स्टे ट्यून्ड। और अरविंद मनकापुर से आपका भी

0: प्यार में क्या जानो रे, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा लता जी की आवाज में हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर जो की है एमपी से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रीति शुक्ला जी की बहराइच से। प्रीति शुक्ला जी को बहराइच से सुनना है गाना, दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा रियलिटी चेक करवाने वाला नगमा हमारी प्रीति जी की फरमाइश पे जो की है बहराइच से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मोहित मालवीय नगर गोंडा से आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड
1: पापा मम्मी के लिए।

0: तक है तू सितम कर ले, तेरी हसरत जहां तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहां तक है। बसा के शहर नया भूल बैठे हो जो हमारा घर, बसा के शहर नया भूल बैठे हो जो हमारा घर, हमें देखना है उनका वो आशियाना कहाँ तक है। सो एंजॉय करते हैं अब धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश और आवाज विकास गोंडा से धर्मेंद्र मोहन को सुनना है सोल्जर पिक्चर का गाना मेरा दिल जिगर से। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, बहुत ही खूबसूरत से पिक्चर का, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।
1: हाय
0: हाय
2: लगता है किसी का दिल जल रहा है।

0: हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही अतरंगी सा गाना हमारे धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पे जो की है आवाज विकास गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की, और राजेश सिंह जी को मालवीय नगर से सुनना है गाना गोरे हाथों पे ना जुल्म कर। सो एंजॉय करते हैं प्यार किए जा, प्यार किए जा पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में सिर्फ और सिर्फ हमारे मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। वाओ कितना बढ़िया पिक्चर का नाम है ना प्यार किए जा।
1: गोरे हाथों

0: इतना खूबसूरत गाना था मोहम्मद रफी जी की आवाज में, हमने एंजॉय किया। ये ओल्ड इज गोल्ड वाला सुनहरा सा बहुत ही प्यारा सा नगमा मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले धर्मेंद्र मोहन का आवाज विकास गोंडा से कहना है कि सिंपल जी नमस्ते, गोंडा मैसेज मसाला में आपका स्वागत है। सुना है आपके घर गणपति बप्पा आए हैं, तो मेरे लिए आशीर्वाद मांग लेना भूलना मत। तो जी हाँ धर्मेंद्र मोहन जी, आवाज विकास गोंडा से नमस्ते। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में गोंडा मैसेज मसाला का जो पार्ट है फरमाइशी की महफिल में है। आप कल भी मुझे बोल रहे थे कि स्वागत है आपका गोंडा मैसेज मसाला में, आप भी आप मुझे ये बोल रहे हैं स्वागत है आपका गोंडा मैसेज मसाला में। अरे भैया फरमाइशी की महफिल है, देखो ना कितनी प्यारी सी सुकून वाली, जज्बात वाली, एंटरटेनमेंट वाली। ओहो गौर फरमाइएगा धर्मेंद्र मोहन जी। और फिलहाल आपके लिए, आप सभी लिसनर्स के लिए, सबके लिए मैंने भगवान जी से आशीर्वाद मांग लिया है। लेकिन आपको पता है कि पॉइंट इज दिस नो कि 9 बजे से आरती शुरू हो जाती है। और दोस्तों 9 बजे से आरती शुरू होती है तो जब तक मैं घर जाती हूँ आरती वारती खत्म हो जाती है, सबको प्रसाद मिल जाता है, मेरे हिस्से का प्रसाद बचा के रखा जाता है, मैं जाती हूँ और आनंद लेती हूँ प्रसाद का, है ना, और मीठे मीठे भजनों का। लेकिन फिर भी मैं गणपत पप्पा से यहाँ से बैठे बैठे आपके लिए विशेष पक्का मांग लूंगी। से एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश अनुष्का की श्रावस्ती से, और अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना बादशाह का पानी पानी। से एंजॉय करते हैं जैकलिन फर्नांडिस का ये सुपर डुपर हिट तड़कता भड़कता सा नगमा, सिर्फ और सिर्फ हमारी तड़कती भड़कती से अनुष्का की फरमाइश पे, जो की श्रावस्ती से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: उसने मुझे छुआ भी नहीं,
0: अच्छा जी
1: ऐसा वैसा कुछ हुआ भी नहीं।
0: ओ रियली।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा।

ओहो मैं पानी पानी हो गई। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही अतरंगी सा गाना, हमारी बहुत ही अतरंगी सी अनुष्का जी की फरमाइश पे, जो की है श्रावस्ती से। पढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, आवाज विकास गोंडा से रवि की। और आवाज विकास गोंडा से रवि को सुनना है गाना हम तुम का। एंजॉय करते हैं अलका याग्निक बाबुल सुप्रियो की आवाज में ये हम तुम पिक्चर का टाइटल ट्रैक, सैफ अली खान रानी मुखर्जी का गाना, सिर्फ और सिर्फ हमारे रवि की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

वाओ, हमने एंजॉय की ये बहुत ही खूबसूरत सनंगमा आवाज विकास गोंडा से रवि की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना दुनिया हसीनों का मेला और मेले में ये दिल अकेला शायद। तो एंजॉय करते हैं गुप्त पिक्चर का ये गाना उदित नारायण और सुनीता राव की आवाज में मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। एंड दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉर्थ सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ। सो एंजॉय करते हैं मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से पेट पूजा कर लेना, फिर हमारी फरमाइश की महफिल में 9 बजे फिर से वापस आ जाना और एंटरटेनमेंट की बात शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश $8 अरब से बढ़कर $13.5 अरब कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: अप्रोच इन सेमिकॉन 2.0,
3: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
2: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक्ड बाय द मार्केट।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय UPI के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में UPI लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच UPI आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
1: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोड मैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
6: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
7: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
6: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
8: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1 lakh crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service.

तो हमने एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा और ये फरमाइश आई भी थी हमारे पास में निब्बर जी की तरफ से, जो कि हैरानी बाजार सुनार गली गोंडा से। और एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। कैसे हैं आप सब और क्या आप सभी ने पेट पूजा की? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में तो आई हुई थी श्याम नाम की पगली मीन सुमित्रा जी की, और उनको सुनना था गाना सुन गौरा तेरे मायके का हाल। अब ये इतना तरंगी सा वो भी मजेदार देसी डिवोशनल सॉन्ग हम एंजॉय करने जा रहे हैं। अगर सुमित्रा जी की फरमाइश पर तो थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक बनता ही है ना दोस्तों, सो चैट बॉक्स में मुझे हंसी मजाक जरूर दिखना चाहिए। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये गाना और आप डेफिनेटली सुन रहे रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं सुमित्रा जी की फरमाइश।

दोस्तों हमने एंजॉय किया ये पता नहीं मजेदार देसी अतरंगी सा डिवोशनल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ सुमित्रा जी की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों बाहरी गजल का वक्त आ रहा है और मैं ऐसे मतलब नज़में मुझे ना याद आए ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी अगर आरजे मनु को देख लूं साक्षात। उसके बाद पता नहीं क्यों आरजे मनु को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है इनसे बोलने को, बहुत कुछ है इनसे बातें करने को। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये बैठे रहे ना तो मैं इनसे दिन भर रात भर मैं इनसे बस बातें करती रहूं। सर आपको पता है क्या, सर ये ऐसे होता है तो ये ऐसे होता है तो ऐसे हो जाता है फिर ऐसे हो जाता है, और सर पता है आपको क्या ऐसे हो जाता है, लेकिन मतलब नॉन स्टॉप में बोलती रहती हूँ और बस शांत वो खाली मुझे सुनते रहते हैं। हाउ स्वीट ही इज नो, कितने बढ़िया लिसनर हैं ये। तो बस मैं कुछ कहना चाहूंगी अर्ज किया है दोस्तों कि नफरत का बाजार न बन, फूल खिला तलवार न बन, रिश्ता लिख मंजिल, रास्ता बन दीवार न बन। कुछ लोगों से बैर भी ले ले, दुनिया भर का यार न बन, अपना दर ही दार लगे, इतना दुनियादार न बन। सबकी अपनी सांसें हैं, सबका दावेदार न बन, कौन खरीदेगा तुझको, उर्दू का अखबार न बन, और मैं सच में अब उर्दू के अखबार बन चुकी हूँ दोस्तों। पूर्णता से एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है अरविंद की मन का पुर से, और अरविंद को मन का पुर से सुनना है गाना बंदा बन जा। तो गैरी संधु का ये गाना एंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ अरविंद की फरमाइश पर जो कि है मन का पुर से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: चलिए आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ। ये तो फरमाइश हमारे पास में आई भी थी अरविंद की मनकापुर से, बहुत ही खूबसूरत सी फरमाइश थी, गहरी संधु की आवाज़ थी और ये पंजाबी गाना था। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूँगी, अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा मुझे नाकाम होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हैं लोग, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हैं लोग, मैं खुद ही बदनाम हो जाऊंगा पहले नाम होने दो, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा पहले नाम होने दो। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है उदालक शर्मा की और नागेश्वर धाकड़ की, इन दोनों को सुनना है गाना पागल शायर। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, इन दोनों की फरमाइश, बस स्टे ट्यून्ड एवरीवन, नागेश्वर धाकड़ और उदालक शर्मा की फरमाइश, बस स्टे ट्यून्ड।
1: तू ख्वाब ना देखे कर, ख्वाबों में जाऊंगा

नॉट सो सिंपल अलविदा। सो कहना चाहूंगी कि वफाओं का लिबास ओढ़े कई गद्दार बैठे हैं, वफाओं का लिबास ओढ़े कई गद्दार बैठे हैं, सगे जो बन नहीं पाए लिए हथियार बैठे हैं। भली है ये नई ठोकर हकीकत रूबरू कर दी, जिसे अपना लहू समझा सभी मक्कार बैठे हैं। मुझे खामोश पाकर जश्न में डूबे हैं जो सारे, मुझे खामोश पाकर जश्न में डूबे हैं जो सारे, उन्हें जड़ से मिटाने को हम भी तैयार बैठे हैं। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और गुनगुनाते रहना, सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू बालों पर बालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून, मिलते हैं कल फिर से, एंड गणपति पप्पा मौर्य स्टे ट्यून, एवरीवन एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, और गणेश पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसी खुशियां बटोरते

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने

0: शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर्ड डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ओआरएस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 89.6 एफएम। यह है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। आज के इस कार्यक्रम में बहारे गजल में हम बात करते हैं उन दानिश्वरों की, उन कलमकारों की, जिनकी वजह से शायद साहित्य जीवित है, जो लिखते हैं, लोग गाते हैं और वो नगमे अमर हो जाते हैं। कुछ बहुत बड़े नाम और कुछ नाम ऐसे जो बड़े होने की तरफ चल चुके हैं। नीव कीट, जिनके बारे में हम करते हैं आपसे गुफ्तगू, करते हैं आपसे बातचीत। और आज जिस शायर को हम लेकर आए हैं, वो शायर अपनी शायरी के साथ साथ निजामत की दुनिया में, एंकरिंग की दुनिया में, मुशायरों में बड़ा मुनव्वर नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। आपने उनका नाम सुना होगा, इरशाद अंजुम, बहुत ही प्यारा नाम। हमारे साथ भाई अरविंद जी हैं मनकापुर से। जी हाँ, हेलो आज जी मनु सर, कैसे हैं आप? जी हाँ शुभ संध्या। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और जी प्रणाम आपको भी, नमस्कार आपको भी। और चलते हैं आज हम पहले इरशाद अंजुम की तरफ। वो लिखते हैं कि सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं। सोग मतलब पीड़ा, कष्ट। सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं हैं कि ठिकाने लग जाएं। इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाएं। हमसे कुछ लोग जो जिंदा न रखें रोशनियां, हमसे कुछ लोग जो जिंदा न रखें रोशनियां, रोशनी वाले चिराग अपने बुझाने लग जाएं। हमने इस उम्र में जो दर्द उठा रखे हैं। साहब ये बहुत ज़रूरी है साहित्यकार के लिए।

कि गम उसकी जिंदगी में हो। रफी साहब का है, रफी साहब की एक बहुत ही प्यारी सी गजल है कि गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। मतलब वो भी एक जरूरी पहलू है हमारी जिंदगी के लिए। उन्होंने कहा कि हमने इस उम्र में जो दर्द उठा रखे हैं, आप अगर सोचने बैठें तो जमाने लग जाए, फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ। अब देखिए बात, शायर कहां से अपनी बात कहता है। फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ, चंद जुगनू जो मेरे हाथ में आने लग जाए। मतलब कुछ जुगनू अगर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं सूरज के खिलाफ बोलने का हुनर जानता हूं। तूने इरशाद की उल्फत का भरम तोड़ा है। उल्फत मतलब मोहब्बत। तूने इरशाद की उल्फत का भरम तोड़ा है, जा तेरे पीछे कई और दीवाने लग जाए। उसने कहा मैं ये नहीं कहता कि मैं ही रहूं, मैं चाहता हूं कि आपके पीछे दीवानों की एक लंबी सी कतार रहे। कहीं से पंक्ति आती है कि अगर आप किसी को बद्दुआ दें और उसके बदले में वो आपको आशीर्वाद दे, तो समझ लीजिएगा कि उसका कद आपके कद से बहुत बड़ा है। और अगर अपशब्द के बदले अपशब्द मिल जाए, तो ये समझ जाइएगा कि जो आप हैं वही वो है। तरबियत का फर्क होता है साहब, इंसानियत का फर्क होता है। इंसान अपने आप को एक अलग से स्तर पर जाकर खड़ा होता है। कभी महसूस कीजिएगा इस बात को कि सामने वाले ने आपको अपशब्द कहे और आपने कहा ठीक है भैया, आप जो कह रहे हैं ठीक है, ईश्वर अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी यही दुआ है आपके लिए। उम्मीद है कि सामने वाले का सर कुछ देर के लिए झुक जाएगा। जी हाँ, गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है। तूने इरशाद की उल्फत का भरम तोड़ा है, जा जा तेरे पीछे कई और दीवाने लग जाए। जी हाँ, इरशाद साहब की इस गजल के बाद आइए आपको ले चलते हैं। आज शुरुआत करते हैं बहारे गजल की, बहुत ही पसंदीदा आप सभी के गायक हैं, गजलकार हैं राहत फतेह अली खान। तो आइए आज के बहारे गजल की शुरुआत करते हैं राहत फतेह अली खान की एक बहुत ही मकबूल गजल के साथ, जिसको आप सभी ने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, तो ये पहली गजल राहत फतेह अली खान की आवाज़ में आप सभी के लिए।

जी हाँ, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। और मतलब अगर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो ज़्यादा संवारने के प्रयास में ही चीज़ें बिगड़ती हैं। मतलब अगर आप किसी एक इंसान के बारे में ऐसा सोचो कि ये इंसान हमारे जीवन में रहे, बाकी कुछ रहे या ना रहे, तो अधिकतर ज़्यादातर ऐसा होता है कि वही छोड़ के जाता है। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, मुलाकात की आरज़ू लिए हुए बैठे थे, लेकिन उन्होंने तो हमको जी भर के देखा ही नहीं। बढ़ते हैं इरशाद अंजुम की तरफ। उन्होंने लिखा कि दर्द बढ़ता है तो लगता है दवा सब कुछ है। दर्द बढ़ता है तो लगता है दवा सब कुछ है, मैं उसे कैसे बताऊं वो मेरा सब कुछ है। मतलब कहना जरा मुश्किल होता है और अपने दिल की बात कहना तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि डर रहता है कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। दर्द बढ़ता है तो लगता है दवा दवा सब कुछ है, मैं उसे कैसे बताऊं वो मेरा सब कुछ है। ये अलग बात कहीं नाम ना आया उसका, ये अलग बात कहीं नाम ना आया उसका, मैंने जिस शख्स के बारे में लिखा सब कुछ है। दिल उसी शख्स से इकास लगा बैठा है, दिल उसी शख्स से इकास लगा बैठा है जिसके दामन में मोहब्बत के सिवा सब कुछ है। रात कोहराम मचाया था चरागों ने बहुत, रात कोहराम मचाया था चरागों ने बहुत, ये कोई बोल न पाया कि हुआ सब कुछ है। जी हाँ, अंधकार 10 वर्ष का हो, 1 सदी का हो या लाखों वर्षों का हो, उसे समाप्त करने के लिए प्रकाश की एक किरण ही काफी होती है। जो ये कहते हैं वही ये भी कहते हैं कि बिखर गए तो संवरने का हुनर जानते हैं, बिखर गए तो संवरने का हुनर जानते हैं, जो डूब जाएं उबरने का हुनर जानते हैं, बचाए रखिए जरा हमसे नजर, बचाए रखिए जरा हमसे नजर, वरना हम नजर से दिल में उतरने का हुनर जानते हैं। तो कुछ इंसान आंखों के रास्ते दिल में उतरता है और कोई कानों से दिल में उतरता है, और जो कान होता है ना वो हृदय के एकदम बीचों बीच में होता है। अब प्रश्न ये है कि ऐसा कहाँ संभव है कि कान हृदय के बीचों बीच हो। आप अगर इंग्लिश में लिखिए तो HEART, और हार्ट के बीचों बीच में ईयर है, मतलब साफ है, जो आपके कानों को अच्छा नहीं लग सकता वो आपके दिल को अच्छा नहीं लग सकता। तो इंसान आँखों से भी दिल में उतर सकता है और कान से तो और ज़्यादा, क्योंकि कान दिल के बीच में है। जी हाँ, हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी आवाज़ विकास से हैं, बहुत ही प्यारे श्रोता जी। सर जी गुड इवनिंग, आपको भी शुभ संध्या। बाहरी गज़ल में आपका स्वागत है, आपका भी स्वागत है साहब। और
मोहब्बत अधूरी रह गई तो क्या हुआ, उनकी यादें आज भी हमारी तन्हाई का सहारा है। क्या बात है। और भाई आपका धन्यवाद और आपका शुक्रिया, जी हमने कबूल किया। और आइए बढ़ते हैं एक प्यारी सी गज़ल की तरफ। और पर्दे पर हैं नाना पाटेकर के साथ ज़वीना टंडन। जरा गेस कीजिए आवाज़ का कि इन दोनों की जो आवाज़ है वो किसकी है। जी हाँ, देखते हैं कि भाई आप में से बिना गूगल किए हुए कौन से श्रोता हमको बताते हैं कि इस गज़ल में जो मेल और फीमेल ये दोनों गज़ल गायक कौन कौन से हैं। चैट बॉक्स में आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी बिना गूगल किए हुए। जरा बताइए, अंदाज़ा लगाइए और मुझे लगता है कि आपका अंदाज़ा सही होगा।

मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मतलब कवि ने गम को लेने से इनकार नहीं किया। ठीक है भाई, आप जो ला रहे हैं आपका स्वागत है। इसी बात को राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया, इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया, पैरों में जंजीरें डाली, हाथों में कशकोल दिया। कशकोल बोलते हैं भिक्षा पात्र को, कि दुनिया ये चाहती थी कि मैं भिखारी हो जाऊं,

तो इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया, पैरों में जंजीरें डाली, हाथों में कशकोल दिया। अब मौत आए, खुशियां आए, गम आए या तू आए। अब मौत आए, खुशियां आए, गम आए या तू आए। मैंने तो बस आहट पाई और दरवाजा खोल दिया। मतलब चाहे जो आए, जिंदगी में जो आ रहा है उसका स्वागत है और जो जा रहा है उसको विदाई है, शुभकामनाएं है। ठीक है भाई, इसी को तो शायरी कहते हैं। शायरी है क्या, जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। जो दिख रहा है लेकिन उसके अंदर जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। जो कह सका था वो कह चुका हूं, जो रह गया है वो शायरी है। ये शहर सारा तो रोशनी में खुला पड़ा है तो क्या लिखूं मैं। ये शहर सारा तो रोशनी में खुला पड़ा है तो क्या लिखूं मैं। वो दूर जंगल की झोपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी है। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं तो क्या अजब है। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं तो क्या अजब है। वो एक दरिया जो रास्ते में ही रह गया है वो शायरी है। शायरी में कभी कभी शायर वो कह ही नहीं पाता जो वो कहना चाहता है। और अगर आप गहराई में जाएंगे तो शायद उसका अर्थ समझ में आ पाएगा। किंतु गहराई में जाना शायद एक आम व्यक्ति के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और कवि के एहसास को अपने एहसास तक मिला लेना यह बहुत बड़ा हुनर है। मैंने दो पंक्तियां पढ़ी प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की और जिंदगी का बहुत बड़ा राज समझ में आ गया। उन्होंने लिखा कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था। मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। मतलब इतना प्यार दे दिया उसको कि वो नफरत कर ही नहीं पाया मुझसे। मित्रों, आप माने या ना माने लेकिन इस दुनिया में अगर नफरत का कोई जवाब है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। हम नफरत को नफरत से जीत ही नहीं सकते। आप मोहब्बत करनी शुरू कर दीजिए, यकीन मानिए लोग आपसे नफरत करना भूल जाएंगे। जी हाँ, अब बढ़ते हैं फिर एक प्यारी सी गजल की ओर। चंदन दास की बहुत ही सुदिल सी आवाज में ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए। सुनते रहिए और रेडियो गणेशकेट 9.6 FM, ये गोना ही नहीं अब तो बन चुकी है हमारे और आपके दिल की धड़कन। फिलहाल ये प्यारी सी गजल

जी हाँ मित्रों, तो अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी शनिवार को आपके ही प्यारे से कार्यक्रम बहारे गज़ल में ठीक 9:30 बजे। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये बन चुका है अब हमारे और आपके दिलों की धड़कन। इस प्यारे से नगमे के साथ अब चाहेंगे आप सुनमति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, पिया का घर। कितनी ख्वाहिशें, कितने अरमान, कितने एहसास, कितने सपने अपने अंदर समेटे होती है वो रात जब दो अजनबी पहली बार एक दूसरे के साथ अकेले होते हैं। कई दिनों के शोर शराबे, भीड़ भाड़, हंसी चुहल, रस्मों रिवाज, परंपराओं के बाद अब वक्त होता है एक दूसरे को समझने समझाने का, जिंदगी भर के सपने बुनने का। जितनी ख्वाहिशें उतनी ही घबराहट, जितने सपने उतने ही सवाल। क्या हालात होंगे उसके जिसके सारे सपने उसी रात कांच की तरह गिरे और छन से टूट जाए। ऐसा ही कुछ हुआ अभिषेक के साथ। छुई मुई सी सुहाग की सेज पर लाज से सिकुड़ी बैठी दुल्हन का घूंघट उठाते ही अभिषेक का दिल धक से रह गया। अरे ये तो वही है सोहम की, ये गलती कैसे हो गई उससे? अभिषेक की दीदी ने कृति की सूरत और सीरत की इतनी तारीफ की थी कि उसने कह दिया था, अगर आपको पसंद है तो मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है। शादी भी महीने भर के भीतर ही हो गई तो टेलीफोन पर बातें करने का सिलसिला भी नहीं चल पाया। वैसे भी लड़कियों के मामले में अभिषेक बहुत शर्मीला था। अभिषेक को पता था कि कृति उसके बचपन के दोस्त सोहम के साथ MBA कर रही थी, वहीं उनकी दोस्ती हुई, पर कृति और सोहम अलग अलग जाति के थे, इसीलिए कृति के घर वालों ने उसके प्यार की भनक लगते ही उसकी शादी की बात शुरू कर दी थी और कृति का कॉलेज छोड़ाकर उसे वापस घर बुला लिया था। सोहम और अभिषेक बचपन से ही साथ पढ़े। 12वीं के बाद अभिषेक इंजीनियरिंग करने चला गया और सोहम ने BBA ज्वाइन कर लिया था, पर उन दोनों के बीच बातों का सिलसिला कभी भी खत्म नहीं हुआ और जब भी मौका मिलता वो एक दूसरे से जरूर मिलते और इतने दिनों की सारी छूटी बातें शेयर करते। ऐसी ही एक मुलाकात में एक बार सोहम ने अभिषेक को कृति के बारे में बताया था और उसकी फोटो भी दिखाई थी। उस दिन तो सोहम यूं दीवाना हो रहा था कि उसने अभिषेक को बोलने का मौका ही नहीं दिया, अपनी ही सुनाता रहा और अपने ही ख्यालों में डूबा सा रहा। उसका बस चलता तो आसमान पे लिख देता अपने प्यार की दास्तां।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है पिया का घर। अब तक आपने सुना सोहम और अभिषेक बचपन के दोस्त थे। बड़े होकर उन्होंने अलग अलग कॉलेजों में दाखिला ले लिया, लेकिन फिर भी उनकी मुलाकातें होती रहीं। और ऐसी ही एक मुलाकात में सोहम ने अभिषेक को अपनी गर्लफ्रेंड कृति के बारे में बताया और उसकी फोटो भी दिखाई। अब अभिषेक की शादी हो गई थी और जब वो अपनी दुल्हन से पहली बार मिला तो धक रह गया। वो कोई और नहीं, कृति थी। अब आगे सोहम ने अभिषेक को ये भी बताया था कि कृति के घर वाले इस रिश्ते के पूरी तरह खिलाफ हैं और कृति ने भी मजबूरन अब उससे मिलना जुलना बंद कर दिया है। फिर एक दिन सोहम ने दूर से ही अभिषेक को कृति को दिखाया भी था, जो किसी काम से अपने पापा के साथ उस वक्त बाजार निकली हुई थी। फिर अचानक एक दिन सोहम ने बताया कि उसने बैंगलोर की कंपनी ज्वाइन कर ली है ताकि वो यहाँ से बहुत दूर जा सके और कृति को भूल सके, क्योंकि अब घर वालों के रिस्ट्रिक्शंस के बाद उनका मिलना पॉसिबल नहीं था। इधर अभिषेक की दीदी को अपनी सहेली की कजन बहुत पसंद आ गई थी, जो छुट्टियों में अपनी बहन के घर आई हुई थी, और आनन फानन में उसका भी चटमंगनी पट ब्याह हो गया। सोहम अभिषेक की शादी में नहीं आ सका, उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई थी। अपने खूबसूरत जीवन साथी की रंगीन कल्पना में अभिषेक कृति के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। उसे एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि उसकी होने वाली जीवन संगिनी का नाम भी तो कृति ही है। वैसे भी कृति का घर का नाम गुड़िया था और उसे सब गुड़िया गुड़िया कह के ही बुलाते थे, पर आज अचानक वो नाम इस मोड़ पर आकर यूं याद आएगा, ये तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप कृति? अब मेरा मतलब है, कुछ बोलने से पहले ही वो हकला गया। कृति ने उसी समय अपनी कपकपाती पलकें ऊपर उठाई तो उसे लगा जैसे कायनात एक पल को ठहर गई हो। कृति वाकई बहुत खूबसूरत थी, पर इससे पहले कि उसकी आंखें उन झील सी आंखों में डूबती, वो संभल गया। मेरा मतलब है, ये शादी आपकी मर्जी से हुई है ना? जी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप सोहम को जानती हैं? इस बार उसने सीधा सवाल किया तो कृति के चेहरे पर एक साथ कितने ही रंग आकर लौट गए। एक पल को उसके चेहरे से खुशी के, प्यार के सारे रंग गायब हो गए। हाँ, जानती हूँ, उसने बहुत ही धीमी और सधी हुई आवाज में कहा। आपने उससे शादी क्यों नहीं की? अभिषेक बोला,

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है पिया का घर। अब तक आपने सुना, जब शादी के बाद अभिषेक ने पहली बार अपनी दुल्हन को देखा तो वो अवाक रह गया। वो कोई और नहीं, उसके बेस्ट फ्रेंड सोहम की गर्लफ्रेंड थी। अभिषेक उससे साफ साफ सारी बातें जानना चाहता था कि आखिर उसने सोहम से शादी क्यों नहीं की, ऐसा क्या हुआ कि वो आज उसके साथ यहाँ पर मौजूद है। अब आगे कृति बोलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो कृति को बीच में ही टोककर अभिषेक फिर से बोला, आपकी जाति का नहीं था और आपके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, इस कारण मजबूरी। अभिषेक का स्वर थोड़ा ऊंचा हुआ तो कृति की घबराई नजरें दरवाजे की ओर उठ गईं, कहीं कोई बाहर खड़ा ना हो, और अभिषेक भी अपनी गलती समझकर थम गया। जी आपने ठीक समझा, पर मजबूरी में नहीं। कृति की बात पूरी होने से पहले ही अभिषेक का धैर्य जवाब दे गया, सोहम मेरे बचपन का दोस्त है, उसने आपके बारे में बताया था और एक बार दूर से दिखाया भी था। शादी के पहले आपको एक बार भी देख लेता तो इतनी बड़ी भूल नहीं होती। अभिषेक के स्वर में पश्चाताप छलक उठा तो कृति परेशान हो गई, शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। कृति बोली, नहीं। अभिषेक हल्के से चीख उठा, मैं दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं सोहम के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। पर अब हम क्या कर सकते हैं, कृति धीरे से बोली तो अचानक अभिषेक ने उसकी आंखों में झांका, सच बताना, आप सोहम को अभी भी प्यार करती हैं ना, उससे शादी करना चाहती हैं ना। सुनकर जैसे औंधे मुंह गिर पड़ी कृति, ये क्या कह रहे हैं आप, मेरे माता पिता ने मेरी शादी आपसे की है, अब मुझे ये सब बोलना क्या सोचना भी नहीं है। देखो कृति, ये पुराना जमाना नहीं है कि लड़की को जिस खूंटे से बांध दिया वो जिंदगी भर उसी से बंधी रहे, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। अब समय बदल गया है, तुम पढ़ी लिखी हो, मैं तुम्हें तलाक देकर सोहम से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अभिषेक ने जैसे निर्णय ले लिया था, पर कृति अभिषेक की आशा से उलट सख्त हो गई, कभी नहीं, अब ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करती हूँ और ये भी जानती हूँ कि वो हमेशा मेरा भला ही सोचेंगे, इसीलिए मैं उन्हें जरा भी दुख देने की बात सोच भी नहीं सकती।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है पिया का घर। अब तक आपने सुना कृति और अभिषेक की शादी हुई। शादी से पहले उन दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। शादी के दिन जब अभिषेक कृति से मिला तो उसने देखा कि वो तो उसके बेस्ट फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसने निर्णय लिया कि वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कृति की शादी सोहम से ही करवा देगा। पर कृति अडिग हो गई कि नहीं, ये शादी उसके माता पिता ने उसकी भलाई सोच के की है और इसीलिए यही शादी उसे मान्य है। अब आगे, अचानक अभिषेक को कभी सोहम से हुई बातचीत याद आ गई। सोहम की माँ भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी, पर सोहम ने कहा था अगर कृति तैयार हो जाए तो हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं और एक बार शादी हो जाएगी तो मम्मी भी उसे बहू मान ही लेगी। फिर मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, कहकर वो हंस दिया था। कितना अंतर था दोनों की विचारधारा में या शायद संस्कारों में। जहां कृति अपने माता पिता को दुख पहुंचाने की बात सोच भी नहीं सकती, वहां सोहम सिर्फ अपनी खुशी देख रहा था। अभिषेक कृति की साफ गोई से बहुत इंप्रेस हुआ। ठीक है, हम कल इस बारे में बात करेंगे, मैं अभी फिलहाल बहुत थक गया हूँ, तुम भी सो जाओ, कहकर अभिषेक वहीं पड़े दीवान पर फंसर गया और कृति चुपचाप पलंग पर लेट गई, जहां उसके सपनों की तरह फूल भी मुरझाने लगे थे। दूसरे दिन घर में सब लोग उन दोनों से चुहलबाजी करते रहे, पर किसी को असलियत की भनक भी नहीं थी। रात को कमरे में पहुंचते ही अभिषेक ने दीवान पर ही अपना तकिया रख लिया और बोला, कृति मुझे कुछ समय दो, तब तक बेहतर है कि हम इसी तरह से रहें और किसी से भी इस बारे में कोई बात ना करें। घर के सारे मेहमान विदा होते ही अभिषेक ने सबसे पहले सोहम को फोन किया। फोन उठाते ही सोहम ने चुटकी लेते हुए कहा, ओहो तुझे अपनी नई नवेली से इतनी जल्दी फुर्सत मिल गई कि तू अभी से मुझे फोन कर रहा है। हाँ, और ये भी तो बता, भाभी कैसी है, तेरे सपनों की चौखट में तो फिट बैठी ना? भाई डेटिंग के युग में तूने बिना देखे शादी कर ली, मानना पड़ेगा तुझे। वो बहुत खूबसूरत है सोहम, मेरी कल्पना से भी परे, अभिषेक की आवाज में संजीदगी थी जिसे महसूस करके सोहम बेचैन हो उठा। तो फिर क्या हुआ, तेरी आवाज में वो खनक क्यों नहीं है, क्या उसका कहीं इश्क विश्क? उसके बाद काट कर अभिषेक बोला, जानते हो सोहम, जब मैंने उसका घूंघट हटाया तो वो चेहरा कौन सा था? सोहम बोला, पहेली मत बुझा यार, साफ साफ बता। अब वो थोड़ा उकता गया था। कृति का, अभिषेक का स्वर बर्फ सा ठंडा था और सोहम का पांव जैसे अंगारे पर पड़ गया।

ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है पिया का घर। अब तक आपने सुना, शादी के बाद अभिषेक को पता चला कि उसकी दुल्हन कृति उसके बेस्ट फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड है। उसने निर्णय लिया कि पहले वो अपने दोस्त से बात करेगा, फिर ही अपने जीवन की शुरुआत करेगा। अब आगे ये क्या मजाक है? सोहम बोला। अभिषेक बोला, मजाक नहीं, यही सच्चाई है और मैंने तुमसे यही पूछने के लिए फोन किया है कि अब मैं आगे क्या करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सोहम, मेरा दिमाग खराब हो रखा है। मतलब? सोहम बोला, मतलब ये कि मैं उसके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं कर पा रहा हूं सोहम, अभिषेक ने झल्लाते हुए कहा। सोहम, तू कहे तो मैं उसे तलाक देकर उससे तेरी शादी करवा देता हूं। सोहम बोला, मैं तो पहले ही मंदिर में भी शादी करने को तैयार था, पर तू पहले कृति से तो पूछ ले। ठीक है, कहकर अभिषेक ने फोन रख दिया। रात में बिना किसी लाग लपेट के उसने कृति से सीधा क्वेश्चन किया, तुम सोहम से शादी करोगी? नहीं, उसने भी सीधा उत्तर दिया। क्यों? क्या तुम उसे प्यार नहीं करती? अभिषेक बोला, देखिए, हम अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को पसंद भी करते थे, पर ये दोस्ती प्यार में परवान चढ़ती इससे पहले ही मुझे घर वालों ने कॉलेज से वापस बुला लिया और मेरी शादी आपसे हो गई। कृति की बातों में सच्चाई साफ झलक रही थी। पर तुम क्या चाहती थी कृति? अभिषेक अब भी दुविधा में था। मेरे माता पिता का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं उनकी बेटी हूं और अगर मैं उन्हें धोखा दे सकती हूं तो फिर मैं किसी को भी धोखा दे सकती हूं। और फिर भी अगर आपको शक हो तो आप बेशक मुझे सजा दे सकते हैं, पर भगवान के वास्ते तलाक का नाम मत लीजिए। सौम्या की आंखों में आंसू भराए तो अभिषेक का मन भी पसीज गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तुम आराम से सो जाओ। रात भर वो उहापोह में रहा, पर सुबह उठते ही उसने निर्णय ले लिया था। कृति की आंखों में उसने सच्चाई को साफ साफ देखा था। नहा धोकर जब वो चाय लेकर आई तो अभिषेक उसे देखता ही रह गया। पीली साड़ी में जैसे साक्षात बसंत उतर आया था। चाय पीकर मैं तैयार होता हूँ, मंदिर चलना है, अभिषेक ने चाय पकड़ते हुए कहा। तो कृति आंखों में सवाल भर के उसकी तरफ देखने लगी। अभिषेक बोला, भगवान का आशीर्वाद लेकर ही तो हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा तो कृति का चेहरा खुशी और लाज से नहा उठा। अभिषेक और कृति दोनों को जीवन भर साथ रहने वाला अपना सच्चा प्यार हासिल हो गया था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी पिया का घर। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदें, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग, चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात। हो जाइए थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफ़र शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर, भारतीय सिनेमा का सबसे आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे आपको।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर, चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

0: नहीं कहो ये कोई।
1: हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी, और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मॉनसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

0: आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज़ बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।
1: ओ सजना

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेन ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया। सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है। पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी इन सुरों की भीनी सी खुशबू। जाने का वक्त तो है पर दिल यही कुछ छूट गया है।
1: जैसे भीग कर थम जाती है सावन की यह हसी बरसात, वैसे ही अब मोड़ पर आ पहुंची है सुरों की ये प्यारी सी रात। दिलों में समेट कर ले जा रहे हैं इन गीतों की गर्माहट, अलविदा करते हैं आज थाम कर यादों की हसीन सौगात। फिर लौट कर आएगी ये रिमझिम, फिर सजेगी ये महफिल, पुराने गानों के सहारे फिर आसान होगी हर राह और मंजिल। भूले बिसरे गीत के इस सफर को आज हम यहीं रोकते हैं। अगली बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 0

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ ही 24 घंटे

0: इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है सर्कुलर रोड आवास विकास कॉलोनी गोंडा।
0: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84 5844। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।